0: कभी सोचा है
1: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251 6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।
2: टाइम चेक, सुबह के 5 बज रहे हैं।
3: वेलकम टू RM2
4: रेडियो मस्ती।
3: नॉर्थ, साउथ,
4: 103.5,
3: ईस्ट, वेस्ट,
4: 96.4,
3: सेंटर,
4: 99.4।
3: RM2 Radio Musti.
4: Radio Musti.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2
3: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नई सुबह, ठंडी हवा और पुराने गीतों की खूबसूरत महफिल लेकर मैं आपके साथ आ चुकी हूं। इस समय मैं आपके साथ आप ही के स्टूडियो में हूं और फ्राइडे की मॉर्निंग 17 जुलाई, भाई क्या बात है, 5:05 हो चुके हैं और आपकी शुरुआत को करते हैं बहुत ही प्यारी सी खुशनुमा मॉर्निंग बनाते हैं। मैं हूँ आपके साथ पूनम, शुरू करते हैं राइज एंड शाइन। इन्जॉय कीजिएगा अपने पुराने गाने। अगर आपको भी कोई मैसेज भेजना है तो आप भेज सकते हैं 5499-1294 पर।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:16 हो चुके हैं दोस्तों, और आपके मैसेजेस से पता चल रहा है आप सब उठ भी चुके हैं और हमारा साथ भी दे रहे हैं। भाई क्या बात है, थैंक यू सो मच। आप सबको हम वेलकम करते हैं हमारे ही प्रोग्राम में, राइज एंड शाइन। कह सकते हैं कि ये हम दोनों का ही प्रोग्राम है और हम बहुत खुश होते हैं जब आप सबके मैसेजेस आते हैं। और अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप कर सकते हैं 5499124 पर। और बात करते हैं आज को थोड़ा सा, कहते हैं ना, मस्ती भरा बनाते हैं, क्योंकि शुरुआत हमसे हो रही है तो क्यों ना ऐसा कोई गाना चलाएं जिससे पूरे दिन की शुरुआत भी अच्छी हो जाए और आपकी नींद भी टूटे। क्योंकि हो सकता है थोड़ी थोड़ी सी नींद मुझे भी आ रही हो, पर अब तो तोड़नी पड़ेगी ना, कोई बात नहीं। आज का दिन थोड़ा सा स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज है वर्ल्ड इमोजी डे। क्या बात है, आपको पता है ना इमोजीज क्या होते हैं? कई लोगों को अभी भी नहीं पता होगा इमोजीज क्या होते हैं। इमोजीज ये होते हैं कि आपने कोई बात रखनी है, अपनी बात मैसेज पे कहनी है, तो वहां से एक स्माइली आ जाती है, मतलब एक चेहरा स्माइल करता कार्टून सा आ जाता है कि स्माइल करता हुआ, नाराज है तो ऐसा आ जाता है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए, तो इसी को कहते हैं इमोजी डे। तो आज है ये, इंटरनेशनल जस्टिस डे भी है, तो आज परिवार को और अगर आपको कोई मैसेज करना है तो आप एक इमोजी दे के भेज सकते हैं। और कोई ऐसे हैं जिनको इमोजीज कभी नहीं आते तो सीख लीजिए किसी से परिवार में, और नहीं आ रहा है तो फिर भी ट्राई करिए, आपके फ़ोन पर भी है, अवेलेबल है, व्हाट्सअप है, हमें भी इमोजी भेजिए क्योंकि हम चाहते हैं कि आज को मनाते हैं स्पेशल सुपर।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 5:28 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम राइज एंड शाइन के साथ। भाई सुबह सुबह प्यारी सी स्माइल के साथ हो, चाय के साथ हो या कॉफ़ी के साथ हो और अपने परिवार के साथ हो। अगर परिवार थोड़ा सा दूर है, कहीं आप किसी और कंट्री में हैं या कहीं ऐसी जगह में हैं जहाँ पे आपका परिवार साथ नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम तो साथ हैं आपके। इंजॉय कीजिए, हमें अपना परिवार मानिए क्योंकि हम आपके साथ हमेशा 24 आवर्स रहते हैं। तो ये पुराने गाने जो है ना, बहुत दिल को सुकून देते हैं। सुबह सुबह जब ये चल जाते हैं तो फिर दिल करता है बस ऐसे आराम से पूरी ज़िंदगी कट जाए। चलिए भाई, इंजॉय के साथ साथ हम 2-3 मैसेजेस भी लेते हैं। 2-3 नहीं, आज ज़्यादा ले लेंगे क्योंकि मैं सोच रही हूँ एक ही बार ले लेते हैं। अगर आपको भी कोई मैसेज करना होगा तो हम नेक्स्ट आवर के जो प्रोग्राम होगा उसके अंदर आपके मैसेजेस पढ़ेंगे। प्रमिला जी जो अपने हस्बैंड रंजीत जी के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं और अपने हस्बैंड को सिर्फ इतना कहना चाहती है कि बहुत ही अच्छे हो तुम, तुम्हारे साथ चाय पीना अच्छा लगता है। क्या बात है, थैंक यू सो मच। सरिता जी जो कि गुडलैंड से हैं, सबको बेस्ट विशेज दे रहे हैं और कह रहे हैं सबकी मॉर्निंग बहुत अच्छी हो। क्या बात है। धनवेश्वर जी अपनी पत्नी सुनीता जी के साथ जुड़ चुके हैं और चाय के साथ में और बिस्किट के साथ में कह रहे हैं भाई सबकी मॉर्निंग प्यारी प्यारी ऐसी खूबसूरत हो जाए। क्या बात है, सो नाइस, थैंक यू सो मच आप सबका। जैशन जी भी अपने परिवार के साथ जुड़े हुए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। सेतुल जी भी जुड़ी हुई हैं और अपने परिवार के साथ इन्जॉय कर रही हैं। नेक्स्ट गाना होगा अब्दुल जी और सायरा बानो जी के लिए और अब्दुल जी सिर्फ इतना कह रहे हैं सायरा बानो को, चलो भाई चाय तो बना रहे हो कुछ साथ में खिला भी देना। चलिए भाई, सायरा बानो जी आपका तो सुबह सुबह स्टार्ट करा दिया उन्होंने काम, तो कुछ बनाइए पकाइए अच्छा लगता है, आप भी खाइएगा। ललिता जीतन जी भी साथ दे रही हैं और कह रही हैं जॉगिंग कर रही हूँ और गानों को सुन रही हूँ, थैंक यू सो मच। जॉगिंग कीजिए, हमें भी थोड़ी सी ताकत दीजिए और हम भी घर जाने के बाद थोड़ा सा योगा वोगा या मेडिटेशन कुछ तो कर सकें। अगर आपको भी करना है तो ललिता जी से बोलो भाई थोड़ी सी ताकत सबको दे दीजिए। ललित जी साथ दे रहे हैं अपनी वाइफ के लिए, सिर्फ इतना कह रहे हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ एंड यू आर द बेस्ट एंड स्पेशल पर्सन इन माई लाइफ, तो मैं हमेशा कहता हूँ तुम मेरे साथ रहो। सो ब्यूटीफुल मैसेज, थैंक यू सो मच। राजन रघुपत जी जो कि लंदन से साथ दे रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, और राजन रघुपत जी आप हमेशा जानते हैं आपका मैसेज हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, थैंक यू सो मच आपके प्यार और मोहब्बत के लिए। दीपक जी साथ जुड़े हैं और स्पेशली हमारी आरजे वेदिता के लिए एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। भैया आएंगी थोड़ी देर बाद, आएंगी आपको मुलाकात होगी, और सभी आरजेस को कह रहे हैं भैया आप लोगों का काम तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो हमारे साथ रहिए। एक और प्यारा सा मैसेज लेते हैं कुमार देवी चरण जी का जो कि पेरेबियर से हैं और सभी स्टूडेंट्स को विश कर रहे हैं और कह रहे हैं तुम्हारी लाइफ बहुत सुंदर हो, सक्सेसफुल हो। इंजॉय कीजिए अपने पुराने गाने।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Masti.
1: 5:44 हो चुके हैं दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पूनम। नई सुबह है, नई मुस्कान और नए मौके आपका इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज आपकी राशि के लिए सितारों ने क्या प्यारा सा संदेश भेजा है। सबसे पहले शुरू करते हैं
2: एरीज मेष राशि।
1: आज अपने हर काम की शुरुआत पूरे जोश के साथ कीजिए, आपकी मेहनत लोगों का ध्यान खींच सकती है। अच्छा दिन आपका इंतजार कर रहा है। लकी कलर है रेड, लकी नंबर है 1।
2: टॉरस वृषभ राशि।
1: आज दिल खुश रखने की कोशिश कीजिए, किसी अपने से अच्छी बात मन को सुकून दे सकती है। मुस्कुराते रहिए, दिन आसान लगेगा। लकी कलर है ग्रीन, लकी नंबर है 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
1: आज कुछ नया सीखने का मौका मिल सकता है, अपनी बात पूरे कॉन्फिडेंस से रखिए। अच्छी खबर आपका मूड बना सकती है। लकी कलर है येलो, लकी नंबर है 5।
2: कैंसर कर्क राशि।
1: आज घर और परिवार से अच्छी एनर्जी मिलेगी, अपने दिल की बात कहने में बिल्कुल झिझकिए मत। खुशियां आपके आसपास आज पूरे दिन रहने वाली है। लकी कलर है व्हाइट, लकी नंबर है 2।
2: लियो सिंह राशि।
1: आज आपका अंदाज सबको पसंद आएगा, जो भी करेंगे पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा। तारीफ मिलने के पूरे पूरे ये चांसेस हैं। लकी कलर है गोल्डन, लकी नंबर है 9।
2: वर्गो कन्या राशि।
1: आज छोटी छोटी बातों में भी खुशी ढूंढिए, हर काम में आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं, दिन अच्छा बीतने वाला है। लकी कलर बनेगा स्काई ब्लू, लकी नंबर है 7।
2: लिब्रा तुला राशि।
1: आज रिश्तों में प्यार और अपनापन बढ़ेगा, किसी की मदद करने का मौका मिल सकता है। दिल से किया गया काम आपको खुशी देगा और आपके परिवार की सारी परेशानियों को खत्म करेगा। लकी कलर है पिंक, लकी नंबर है 4।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
1: आज अपने फैसलों पर भरोसा रखिए, नई शुरुआत के लिए अच्छा समय है। अपनी मेहनत पर पूरा ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए और आपकी मेहनत ही रंग ला सकती है। लकी कलर बनेगा मैरून, लकी नंबर है 8।
2: सजिटेरियस धनु राशि।
1: आज आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी सबके साथ बांटिए, नए रास्ते खुलते नजर आ सकते हैं। जोश बनाए रखिए, लकी कलर है पर्पल, लकी नंबर है 3।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
1: आज आपका फोकस आपकी ताकत बनेगा, काम पूरे होने की खुशी मिलेगी, दिन संतोष से भरा रहेगा। जो काम आप बहुत समय से लगे हुए थे करने में और हो नहीं रहा था, वो पूरे होने के चांसेस आज ही हैं। लकी कलर है ग्रे, लकी नंबर है 10।
2: एक्वेरियस कुंभ राशि।
1: आज आपके आइडियाज लोगों को पसंद आएंगे, खुद पर भरोसा रखिए, अच्छी शुरुआत आपको आगे ले जा सकती है। बहुत सारे आपको पीछे गिराने की कोशिश कर रहे थे, पर आप तो हैं कि आपने बोला नहीं, मैं ट्रेन में बैठ के आगे स्पीड पकड़ लूंगा। तो आपकी स्पीड बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है, आप चलते जाइए, बढ़ते जाइए। लकी कलर बनेगा ब्लू, लकी नंबर है 11।
2: पाइसेस मीन राशि।
1: आज मुस्कान आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी, अच्छे लोगों का साथ मिलेगा, हर पल को दिल से जिए। और लकी कलर बनेगा आपका सी ग्रीन, लकी नंबर है 12। तो आज के दिन खुश रहिए, आगे बढ़े और छोटी छोटी खुशियों में अपनों का साथ ढूंढिए, मुस्कुराते रहिए। ये था आपका आज का राशिफल, इंजॉय कीजिए आपके पूरे शो को, यानी कि आगे के गानों को।
0: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती। Wake up with the sun and the sound of fun.
3: RM2
0: Radio Musty.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Time check. सुबह के 6 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. विधिमा से. विधिमा आपको नमस्कार.
6: नमस्कार पूनम. सभी सुनने वालों को नमस्कार. क्यूपिप में सैकड़ों छात्रों ने स्कूलों में बुलिंग के खिलाफ मार्च निकाला. सेंट जोसेफ और लोरेट दे क्यूपिप के छात्र इस जागरूकता रैली में शामिल हुए. ये पहल उस घटना के बाद हुई जिसमें एक छात्र के साथ कक्षा में अभद्र व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. आरोपी छात्र निलंबित है जबकि पीड़ित को मनोवैज्ञानिक सहायता दी जा रही है. बिजनेसमैन संजीव रामदानी की यात्रा अनुमति पर फैसला 25 अगस्त को सुनाया जाएगा. उन्होंने अगस्त से दिसंबर 2026 तक यात्रा प्रतिबंध हटाने की मांग की है. रामदानी पर SBM के पूर्व CEO प्रेमचंद मंगर के साथ मिलकर ध्यानवर्तम लिमिटेड को 470 मिलियन रुपए की क्रेडिट लाइन दिलाने की कथित आपराधिक साजिश का आरोप है. मॉरिशस और अमरीका ने एक लॉजिस्टिक्स कॉपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे दोनों देशों की सेनाएं संयुक्त अभियानों और अभ्यासों के दौरान लॉजिस्टिक सहायता का आदान प्रदान कर सकेंगी. सरकार ने कहा कि इससे मॉरिशस को महत्वपूर्ण लाभ होंगे. वहीं इस समझौते पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट के जज इन चैम्बर्स ने खारिज कर दिया. अमरीकी उप सहायक सचिव सारा ट्रॉटमन ने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से मुलाकात कर व्यापार, निवेश और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की. बैठक में मॉरिशस के आर्टेमिस अकॉर्ड्स में संभावित शामिल होने और 6 से 9 दिसंबर तक मॉरिशस में होने वाले US अफ्रीका बिजनेस समिट की तैयारियों पर भी विचार विमर्श हुआ. यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के 20 वर्ष पूरे होने पर आप्रवासी घाट में स्मारक समारोह आयोजित किया गया. इस अवसर पर इसकी ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण और युवाओं तक इसका इतिहास पहुंचाने पर जोर दिया गया. आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड ने MBC के सहयोग से 20 शतायु व्यक्तियों की गवाहियों को रिकॉर्ड करने की परियोजना जारी रखने की भी घोषणा की. और विदेश में अमरीकी सेना ने ईरान के खिलाफ लगातार 6th रात हवाई हमले किए. US सेंट्रल कमांड के अनुसार इनका उद्देश्य ईरानी सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना था. और आखिर में चले जाते हैं स्थानीय मौसम का हाल. पश्चिम से पाए जा रहे अस्थिर बादलों के कारण स्थानीय मौसम प्रभावित हो रहा है. अगले 24 घंटों के लिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आज सुबह और दिन के दौरान बादल घिरे रहेंगे और पश्चिम तथा सेंट्रल प्रांतों पर बारिश होगी. कभी कभी सामान्य वर्षा हो सकती है. अधिकतम तापमान सेंट्रल प्रांतों पर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 25 से 27. रात के दौरान बारिश होती रहेगी, इसके बाद धीरे धीरे मौसम में सुधार आएगा. न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्रांतों पर 17 से 19, अन्य इलाकों पर 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. हवा उत्तर पश्चिम की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं. प्रवाल रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी. दक्षिण के समुद्र में नहीं जाने की सलाह.

0: की जाती हैं। सूर्योदय 6:45 और शाम 5:47 पर सूरज ढल जाएगा। तो मौसम के हाल के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: On NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
2: Wake up with the sun and the sound of fun.
1: RM2
2: Radio Musty.

0: to Radio Musti.
1: 6:08 हो चुके हैं भाई, प्यारी सी मॉर्निंग के लिए हम आप सबको कहेंगे गुड मॉर्निंग जो अभी भी उठे हैं और जो हमारे साथ 5 बजे से साथ दे रहे हैं भाई, उनकी तो बात ही क्या। आप लोगों को तो मुझे पता है कि बहुत सारे काम आपने कर लिए होंगे, आपने बोला होगा चलो चलो गाने चल रहे हैं तो साथ साथ किचन में सारे काम निपटा देते हैं और साथ में इंजॉय करते हैं गानों को। तो चलिए भाई हम भी ले लेते हैं आपके इतने प्यारे प्यारे से मैसेजेस जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय, और जिन्होंने मैसेज नहीं किया उनको भी हम थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू, आप हमारा साथ दे रहे हैं और कर रहे हैं अपने पुराने गाने। चलिए भाई, सोनम भोला जी साथ जुड़ी हुई हैं और सबके लिए एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज दिया है कि सुबह सुबह अगर अच्छी है और साथ में रेडियो मस्ती चल रही है तो फिर कोई और टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और क्या बात है। थैंक यू सो मच। साधना जी और मुकेश जी साथ दे रहे हैं लाल माटी से और वो भी इंजॉय कर रहे हैं। रेखा ननकू जी साथ दे रही हैं और इंजॉय कर रही हैं ये प्यारा सा प्रोग्राम। छाया देवी सुखी जो कि परिवार और फ्रेंड्स के लिए एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रही हैं, बिल्कुल हम चलाएंगे। जगमनी जी भी साथ दे रही हैं और प्यारे से जो भी जिसने भी छोटे छोटे से प्यारे से इमोजीज में दिल भेजे हैं मुझे, उन सब का थैंक यू दिल से। शीला जी साथ दे रही हैं और इंजॉय कर रही हैं। साथ में हमारे साथ डैरन, श्वेता, रविशा, प्रिशा, लुवेशा एंड अपाधु फैमिली जुड़ी हुई हैं रोशना से और इंजॉय कर रही हैं, कह रहे हैं राइज एंड शाइन चलता है तो हमें लगता है हमारी ज़िंदगी भी शाइन शाइन हो गई। थैंक यू सो मच आप सबके मैसेजेस का, ब्यूटीफुल मैसेजेस के साथ अपने गानों को इंजॉय कीजिए और जो भी काम है उनको करते रहिए।
0: Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
0: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: 6:25 हो चुके हैं. आप सुन रहे थे आशा भोसले और अनवर की आवाज़ में सोनी मेरी सोनी. क्या बात है भाई. कहते हैं ना, सनी देओल साहब ने और पूनम ढिलन ने जिस तरीके से इस पे काम किया था, क्या बात है. तो चलिए भाई, ये तो गानों की बात रही. अब हम आपको भी इतना ही कहते हैं, कल क्या हुआ उसे वहीं छोड़ दीजिए. आज नई सुबह है, नई शुरुआत है और नया मौका भी. तो मुस्कुराइए, खुद पर भरोसा रखिए और पूरे दिल से अपने दिन की शुरुआत कीजिए. इंजॉय कीजिए अपने गाने को. नेक्स्ट का सॉन्ग आएगा आशा भोसले की आवाज़ में शराबी मूवी से, उसके बाद आप जुड़ पाएंगे विस्तार से समाचारों के साथ.
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: सुबह के ठीक 6:30 हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। सबसे पहले आज की सुर्खियां। क्यूपिप में सैकड़ों छात्रों ने स्कूलों में बुलिंग के खिलाफ मार्च निकाला। सेंट जोसेफ और लोरेट दे क्यूपिप के छात्र इस जागरूकता रैली में शामिल हुए। ये पहल उस घटना के बाद हुई जिसमें एक छात्र के साथ कक्षा में अभद्र व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। बिजनेसमैन संजीव रामदानी की यात्रा अनुमति पर फैसला 25 अगस्त को सुनाया जाएगा। उन्होंने अगस्त से दिसंबर 2026 तक यात्रा प्रतिबंध हटाने की मांग की है। मॉरिशस और अमरीका ने एक लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे दोनों देशों की सेनाएं संयुक्त अभियानों और अभ्यासों के दौरान लॉजिस्टिक्स सहायता का आदान प्रदान कर सकेंगी। सरकार ने कहा कि इससे मॉरिशस को महत्वपूर्ण लाभ होंगे। अमरीकी उप सहायक सचिव सारा ट्राफ्टमैन ने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से मुलाकात कर व्यापार, निवेश और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। बैठक में मॉरिशस के अटेमिसाको में संभावित शामिल होने और 6 से 9 दिसंबर तक मॉरिशस में होने वाली यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट की तैयारियों पर भी विचार विमर्श हुआ। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के 20 वर्ष पूरे होने पर आप्रवासी घाट में स्मारक समारोह आयोजित किया गया। अवसर पर इसके ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण और युवाओं तक इसका इतिहास पहुंचाने पर जोर दिया गया। और विदेश में अमरीकी सेना ने ईरान के खिलाफ लगातार 6वीं रात हवाई हमले किए। यूएस सेंट्रल कमांड के अनुसार इनका उद्देश्य ईरानी सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना था। पेश अब समाचार विस्तार से। क्यूपिप की सड़कों पर कल सैकड़ों छात्र स्कूल में होने वाले उत्पीड़न यानी बुलिंग के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक साथ आए। सेंट जोसेफ और लोरेट दे क्यूपिप कॉलेज के छात्र एक साथ मार्च कर रहे थे। ये घटना एक महीने से कुछ अधिक समय पहले हुई थी जब एक कक्षा के अंदर एक छात्र के साथ दूसरे लड़के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया था। इस घटना का वीडियो बनाया गया और सोशल मीडिया पर साझा किया गया था। तब से आरोपी छात्र को निलंबित किया गया है और पीड़ित छात्र को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान की गई है। प्रणव बिहारी, अशिता रघु।
1: संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। युवाओं ने नारे लगाकर स्कूलों में होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और इसे रोकने की अपील की। इन छात्र छात्राओं का कहना है कि उत्पीड़न केवल शारीरिक या प्रत्यक्ष कृतियों तक सीमित नहीं है बल्कि इसके कई अन्य रूप भी हैं, जिन्हें पहचानना और रोकना जरूरी है। इस मार्च में कई अभिभावकों ने भी हिस्सा लिया क्योंकि उनका मानना है कि बच्चों की सुरक्षा और सम्मान की शुरुआत स्कूल के गेट से पहले ही हो जाती है। इस अभियान में मंत्री अजय गणेश और माइकल सिक्यूएन ने भी भाग लिया। सरकार ने इस वर्ष स्कूलों में उत्पीड़न की समस्या से अधिक गंभीरता से निपटने का संकल्प लिया है। इसके लिए बजट में बिजनेस 10 मिलियन रुपए की राशि आवंटित की गई है जिसका उपयोग इस समस्या के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने में किया जाएगा।
0: बिजनेसमैन संजीव रामदानी की यात्रा अनुमति के मामले में उन्हें 25 अगस्त को अपना फैसला पता चलेगा जिस दिन मजिस्ट्रेट शाहीन इंशिरा दोरियाओ अपना निर्णय सुनाएंगी। उनकी जमानत की शर्तों में संशोधन के अनुरोध पर बहस कल पोटली जिला अदालत में समाप्त हो गई। 2 जून को 2 फरवरी 2026 को मिली असफलता के बाद संजीव रामदानी ने अदालत में 5 यात्राएं करने के लिए एक नई याचिका दायर की थी। संजीव रामदानी अगस्त से दिसंबर 2026 की अवधि के लिए

0: पर लगी यात्रा प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रही हैं। लुविना सूफी, असिता रघु।
1: संजीव रामदानी के वकील और सीनियर काउंसिल एवे जुवाल ने अपने मुवक्किल के संवैधानिक अधिकारों का हवाला देते हुए विदेश यात्रा की अनुमति देने की मांग की है। उन्होंने विशेष रूप से संविधान की धारा 15 के तहत मूवमेंट गारंटीड की स्वतंत्रता का उल्लेख किया। वहीं फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील फयाद अरजम खान ने कहा कि इस यात्रा को उचित ठहराने के लिए कोई अत्यंत आवश्यक कारण मौजूद नहीं है। संजीव रामदानी अगस्त से दिसंबर 2026 के बीच दुबई, इटली, इंग्लैंड और मोरक्को सहित कई देशों की यात्रा करना चाहती हैं। उनका कहना है कि उनकी कंपनी ध्यानावर्तम लिमिटेड, जो महाजीवा रिजॉर्ट्स का प्रबंधन करती है, कि आर्थिक स्थिति और बकाया राशि की वसूली इन व्यावसायिक यात्राओं से जुड़ी है, जबकि कंपनी वर्तमान में स्वैच्छिक प्रशासन के अधीन है। व्यवसायी ने कहा कि दुबई में होने वाली अरबियन ट्रैवल मार्केट और लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट में भाग लेना उनके लिए आवश्यक है, ताकि वे साझेदारों और सहयोगियों से मुलाकात कर सकें। हालांकि एफसीसी का तर्क है कि इस तरह के कार्य कंपनी की व्यवसायिक टीम द्वारा किए जा सकते हैं और संजीव रामदानी की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। वहीं वकील एवे जुवाल ने दलील दी कि बेल एक्ट की धारा 16 में अत्यंत आवश्यक आवश्यकता जैसी कोई शर्त स्पष्ट रूप से शामिल नहीं है।
0: याद दिला दें कि संजीव रामदानी को आपराधिक साजिश के अस्थायी आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। उन पर स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मैनेजमेंट क्रेडिट फोरम के अध्यक्ष प्रेमचंद मंगर के साथ मिलकर ध्यानवर्तम लिमिटेड के पक्ष में 470 मिलियन रुपए की क्रेडिट लाइन जारी करने की सुविधा देने का आरोप है। ये कथित घटना 16 जुलाई 2014 की बताई जा रही है, जो पोर्टली स्थित SBM में हुई थी। गुरुवार 16 जुलाई को कुडन ऑल सेंटर में लॉन्च किया गया गोल एक्सेलरेटर प्रोग्राम का उद्देश्य अधिक से अधिक महिलाओं को ठेकेदारी और आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना है। प्रतिभागी इस पहल को अपने कौशल विकसित करने और अपनी परियोजनाओं को साकार करने के लिए एक वास्तविक अवसर के रूप में देखती हैं।
2: गोदाम में जेंडर इक्वालिटी और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा गैर सरकारी संगठन जूनियर अचीवमेंट मास्कागाई के बीच इस समझौते पर हुए हस्ताक्षर से आधिकारिक तौर पर गोल एक्सेलरेटर प्रोग्राम की लॉन्चिंग की गई। मकसद है 35 साल या उससे कम उम्र की महिलाओं में रोजगार पाने की क्षमताएं बेहतर करना और उन्हें ठेकेदारी के प्रति प्रोत्साहित करना। किम्बली अमिया कहती है, मेरा अपना कारोबार है, मैं बायो पैदावारें तैयार करती हूँ, अब मैं और आगे बढ़ने का रास्ता तलाश रही हूँ। एस्टेल जमा कहती हैं, मैंने होटल में 8 सालों से पेस्ट्रीज में काम किया है, अब मैं अपना कारोबार शुरू करना चाहती हूँ और अपनी तरह के नौजवानों के लिए उदाहरण बनना चाहती हूँ। जूनियर अचीवमेंट मास्कागाई की गोल कोच ओसियान फोंत कहती हैं, इस प्रोग्राम के तहत महिलाओं को कई महीनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, खासकर उनमें आत्मविश्वास पैदा किया जाएगा। अपने भाषण में उपप्रधान और जेंडर इक्वालिटी मंत्री आगियान नावामागी ने महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए जरूरी साधन उपलब्ध कराने के महत्व पर जोर दिया। गोल एक्सेलरेटर प्रोग्राम कमजोर वर्ग की युवा महिलाओं को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करेगा। वे कहती हैं, जनता में आधे से ज्यादा महिलाएं हैं और इनमें ज्यादातर घर पर रहने वाली महिलाएं हैं, जिनका योगदान आर्थिक आंकड़ों में तो नहीं दिखता, लेकिन जो पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहीं जूनियर अचीवमेंट मास्कागाई के अध्यक्ष रोशन रामोली के अनुसार, ये प्रोग्राम महिलाओं को अपना जीवन बदलने में मदद देगा। वे कहते हैं, कई महीनों का प्रशिक्षण होगा, इसके तहत मेंटर्स और विशेष पेशेवरों की मदद मिलेगी, दूसरे कारोबारों के साथ सहयोग कायम कराया जाएगा और नए कारोबार शुरू करने और बिक्री के लिए भी मदद उपलब्ध कराई जाएगी। याद रहे कि इस प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग 21 जुलाई से शुरू होगी।
0: मॉरिशस और अमेरिका ने एक लॉजिस्टिक्स कॉपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये संधि एक कानूनी ढांचा स्थापित करती है, जिससे मॉरिशस और अमेरिकी बल अभियानों, अभ्यासों या अन्य सहयोग गतिविधियों के दौरान लॉजिस्टिक्स सहायता का आदान प्रदान कर सकें। इस समझौते पर पोर्टली में पुलिस कमिश्नर रामप्रसाद सूरजपाली और ब्रिगेडियर जनरल पॉल फिलसेक द्वारा हस्ताक्षर किए गए। गृह मामलों की सचिव दोहिन फोंग वेंग पुहन ने इस बात पर जोर दिया कि मॉरिशस को अमरीका के साथ इस सहयोग से महत्वपूर्ण लाभ मिलेंगे। उन्होंने वकीलों संजीव तिलक

0: धारी और सचिन बुधू द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर इंजंक्शन की मांग पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि बुधवार को दायर की गई इंजंक्शन की इस याचिका को जज इन चैम्बर्स ने खारिज कर दिया है।
1: Quand nous faisons un exercice commun ou quand il y a une intervention de l'Amérique,
2: जब हम ऐसे सामूहिक गतिविधि करते हैं या जहां अमेरिका मॉरिशस को हस्तक्षेप करना पड़ता है जैसी आपदाओं की स्थिति में, इस समझौते की बदौलत जरूरी प्रणाली को कार्यरत किया जाता है जिससे हम सेवाएं प्रदान कर सके। इन सेवाओं में ईंधन, पानी, स्पेयर पार्ट्स इत्यादि की आपूर्ति शामिल है। सामूहिक हस्तक्षेपों में यदि अमरीका का अनुरोध हो तो मॉरिशस सभी सुविधा देगी जिससे खतरे की स्थिति में मॉरिशस को भी आवश्यक सहायता प्राप्त हो सके।
0: मॉरिशस और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करना कल पोर्ट लुई की ट्रेजरी बिल्डिंग में सारा ट्रॉटमैन की प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम के साथ शिष्टाचार भेंट के केंद्र में था। अफ्रीकी मामलों और व्यापारिक एवं आर्थिक मामलों के अमरीकी उप सहायक सचिव ने प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की, विशेष रूप से व्यापारिक आदान प्रदान, निवेश और व्यावसायिक साझेदारियों के विकास के माध्यम से। इन चर्चाओं के दौरान मॉरिशस के आर्टेमिसको में संभावित रूप से शामिल होने पर भी बात की गई, जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में शांतिपूर्ण सहयोग के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय ढांचा है। इसके अलावा ये आधिकारिक यात्रा यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट की तैयारियों का हिस्सा है जिसकी मेजबानी मॉरिशस आगामी 6 से 9 दिसंबर तक करेगा। सारा ट्रॉटमैन को सुनते हैं जिनसे बात की माधवी चाकौनाथ ने।
3: मॉरिशस और अमेरिका के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने पर इस मुलाकात में जोर दिया गया। अमेरिका की डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर अफ्रीकन अफेयर्स सारा ट्रॉटमैन और प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को और मजबूत बनाने सहित कई मुद्दों पर चर्चा की।
4: I am here on a commercial diplomacy trip, so here to convey that the United States sees many opportunities to partner with Mauritius, especially in the commercial and economic space. I hear from so many U.S. companies how eager they are to look at Mauritius as a destination for investment and operations. So I was here to discuss several possible deals and ways that we can move forward.
3: बैठक में अंतरिक्ष के सेक्टर से जुड़े आर्टेमिस समझौतों में मॉरिशस की भागीदारी पर भी चर्चा हुई।
4: We are very excited about the Artemis Accords. Very thankful that Mauritius has agreed to sign. We look forward to that tomorrow. We recently had Botswana and several other African countries sign as well. And look forward to our cooperation in the space sector. It's definitely an emerging area. And we see Mauritius as certainly a hub for technology and digitization.
3: सारा ट्रॉटमैन का ये आधिकारिक दौरा यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट की तैयारियों का भी हिस्सा है। ये शिखर सम्मेलन इस वर्ष 6 से 9 दिसंबर तक मॉरिशस में आयोजित किया जाएगा।
0: 16 जुलाई 2006 से 16 जुलाई 2026 आप्रवासी घाट यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने की अपनी 20वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस स्मृति स्थल पर कल गुरुवार 16 जुलाई को एक स्मारक समारोह आयोजित किया गया। समारोह में उपस्थित यूनेस्को में मॉरिशस की स्थायी प्रतिनिधि जैस्मिन टुलूज ने याद दिलाया कि यूनेस्को आप्रवासी घाट के संरक्षण और इसके आसपास के क्षेत्र के जिम्मेदार विकास में मॉरिशस का सहयोग कर रहा है। उन्होंने युवा पीढ़ियों तक इस स्थल के इतिहास को पहुंचाने के महत्व पर भी जोर दिया ताकि वे उस विरासत को समझ सके जिसका ये प्रतीक है। 1849 और 1910 के बीच एशिया और अफ्रीका के विभिन्न क्षेत्रों से आए 350,000 से अधिक आप्रवासियों ने आप्रवासी घाट से होकर प्रवेश किया था। आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के निदेशक वेद प्रकाश बंधन इस स्थल को समर्पित एक मौखिक इतिहास परियोजना के तहत 20 शतायु व्यक्तियों के अनुभव और गवाही को एकत्रित करना चाहते थे। हालांकि ये पहल योजना के अनुसार पूरी नहीं हो सकी, लेकिन एमबीसी के सहयोग से ये परियोजना जारी रहेगी। 20 शतायु व्यक्तियों की गवाहियों को रिकॉर्ड किया जाएगा। निदेशक का कहना है कि इस स्थल को विश्व धरोहर में शामिल होने से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मॉरिशस की पहचान और प्रतिष्ठा बढ़ी है। उनको सुनते हैं जिनसे बात की राजमीना सीतामणि ने।
5: 2006 में जब एस्क्रिप्शन होल मतलब कि आप्रवासी घाट के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट पर लाया गया था और इसके मतलब क्या होता है मॉरिशस देश में।

0: ये हमारे पूर्वज आए थे तो यहाँ पर कम से कम 500 हजार लोग आए थे, तब उनमें से बहुत ऐसे मतलब 75% लोगों के नाम, लोगों के नंबर सब रजिस्टर, जैसे कि हमने किया अभी आईडी है। तो ई कारण यूनेस्को रिकॉग्नाइज करेगा कि मॉरिशियस अप्रवासी का द्वारा ऐसा एक जगह बा पूरा दुनिया में कि यहीं पर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मजदूर लोग के रखल गए बा। ई कारण से यूनेस्को हमने के अप्रवासी घाट के एस्क्रिप्शन मतलब कि पूरा दुनिया में दुनिया को बतावेला कि मॉरिशियस देश में अप्रवासी घाट बा और वहाँ पर इतना आदमी आदरण जरा काम करे ऊ लेपोक के। तो इसी कारण यूनेस्को दिखलाए कर मतलब कि अप्रवासी घाट के लालिस ऑफिशियल में जितना पाथ्रीमुआन है तो के लालिस वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट जैसी बोली जा सर। एक मतलब है कि खाद दुनिया में जैसे कि जब भारत में तो ताजमहल बा, लाटू एफेल बा, ऐसे ऐसे करके सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड बोले था ना, तो ऐसे ऐसे करके दुनिया भर में बहुत से ऐसे स्थान बा जिसको लोग इतिहास से लोग वाले बा। अच्छा ये जब लालिस बात है बहुत से लोग अपन राशन खोजल सर ना, सब कोई के जाए पता करे कि हम कहाँ से आए, हमारे पूर्वज की है कब आ रहा, कौन कौन लिपोक में आ रहा, कौन बातों से आ रहा। तो ई सब हियाँ रखल बा, ई सब इंफॉर्मेशन वहाँ हियाँ बा। तो आज जब 20 साल से हम रिकॉर्डेड बा, आज 20वां साल है, तो हमने सोची सर आज निमन से मनावे की जैसा कोई कि 100 वर्ष हो गल बा। यूनेस्को बोलेगा कि हमने के ओरल हिस्ट्री मतलब इतिहास जो है आदमी के बोली से आदमी सुनावी, तो बोली से अपन सुनावी हो इतिहास सुनावी तो वह चाहे हमने कैप्चर करके रखे के। अब जैसे कोई बोला हम पियोनी कर रही लामे कर रही, तो औसन आदमी हमने खोज के लोग के इंटरव्यू करके रखे ला जा, ताकि आगे चलकर जो लोग आएंगे नया पीढ़ी के लोग यहाँ मीजे हमने के अप्रवासी घाट के मीजे में आयन सा, तो वो लोग सुने में सके अनुसार ध्यान देवे और सुनकर सके अनुसार जाने कि हमारा इतिहास कैसे रहल।
1: और विदेश की खबरों में अमरीकी सेना ने कहा कि उसने ईरान के खिलाफ लगातार 6ठी रात नए हवाई हमले किए, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर नियंत्रण को लेकर संघर्ष चल रहा है। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा कि इन हमलों का उद्देश्य ईरानी सैनिक क्षमताओं को और अधिक कमजोर करना था। इसके बाद सेना ने बताया कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की अपनी नाकेबंदी के हिस्से के रूप में एक जहाज पर भी कब्जा कर लिया है। और आखिर में चले जाते हैं स्थानीय मौसम का हाल। पश्चिम से पाए जा रहे हैं स्थिर बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज सुबह और दिन के दौरान बादल घिरे रहेंगे और देश के पश्चिम और सेंट्रल प्रांतों पर बारिश होगी, कभी कभी सामान्य बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्रांतों पर 22 से 24, अन्य इलाकों पर 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के दौरान बारिश होती रहेगी, इसके बाद धीरे धीरे मौसम में सुधार आएगा। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्रांतों पर 17 से 19, अन्य इलाकों पर 21 से 23 डिग्री सेल्सियस। हवा उत्तर पश्चिम की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दक्षिण के समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी, वो भी आज रात से। सूर्योदय 7:45 और आज शाम 5:47 पर सूरज ढल जाएगा। तो मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त हुए। हम कादेर कुन के सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय सुबह के 6:48 हुए हैं। थोड़ी देर में आप शोक समाचार सुन पाएंगी। लीजिए शोक समाचार सुनिए। इंग्लैंड में 76 साल के 76 years old के श्री ईश्वर दत्त बुस्तुन, जो दत्त नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और जो पहली बुस्तुन लेन लाफलोगा रहते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 10:15 इंग्लैंड से उठाकर इंग्लैंड की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे आपको

0: Boston. Savan Road, Nouvelle-France में तिरपन साल के 53 years old के श्री जामुन सिंह बासुदेल सिंह, जो धर्म नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 11:30 बजे उनके घर सावन रोड नूवेल-फ्रांस से उठाकर हामदेन लेन नूवेल-फ्रांस की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11:30। ऋषि दयानंद रोड मल्सिनिया सुरीनाम में 76 साल की 76 years old की श्रीमती अश्वंती जादू पैदायशी नाम कतवारू और जो अश्वंती नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 10 बजे उनके पति श्री दुलम जादू के घर ऋषि दयानंद रोड मल्सिनिया सुरीनाम से उठाकर सुयाक की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टूडे एट 10 AM। महात्मा गांधी रोड लालमाटी में 82 साल की 82 years old की श्रीमती चंपावती हरि पैदायशी नाम जीतन और जो कुसुम नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके रिश्तेदार सतीश हरि के घर महात्मा गांधी रोड लालमाटी से उठाकर लावोंचुआ की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। एवेन्यू कोरियोलिस कैट्रोबोन में 73 साल के 73 years old के श्री चंद्रगुप्त पुनित जो मुकेश नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके घर एवेन्यू कोरियोलिस का ट्रिबोन से उठाकर थ्रियानो की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। इंडिपेंडेंस स्ट्रीट लापे पीतो में 13 साल के 13 years old के हर्ष गुलुप जो हरीश नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 10 बजे उनके पिता श्री धीरज गुलुप के घर इंडिपेंडेंस स्ट्रीट लापे पीतों से उठाकर लेस्पेरांस पीतों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। एवेन्यू जैक्सन कैट्रोबोन में 69 साल की 69 years old की श्रीमती द्रुपदी भगवंती जो शारदा नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 12 बजे उनके घर एवेन्यू जैक्सन कैट्रोबोन से उठाकर गांधी पालमा की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे आफ्टरनून। नंबर 254 रुद्रगिनय रोज हिल में 68 साल के 68 years old के श्री वासुदेवन संगाली जो मामी जे एन नाम से भी जाने जाते थे और जो पहले कॉर्पोरल पुलिस कॉर्पोरल थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुपहर 3 बजे उनके घर नंबर 254 रुद्रगिनय रोज हिल से उठाकर सहमौतें की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। काशीनाथ रोड पुज दुफलाक में 71 साल की 71 years old की श्रीमती बिदावती आप्रो पैदायशी नाम चेलिया और जो शीला नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुपहर 3 बजे उनके घर काशीनाथ रोड पुज दुफलाक से उठाकर बुशों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। बिलर रोड नूवेल दे कुवैत में 77 साल के 77 years old के श्री मोहाबिर बिलर जो लोनो नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1 बजे उनकी पत्नी श्रीमती संगीता बिलर के घर बिलर रोड नूवेल दे कुवैत से उठाकर एक पाई की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। नंबर 6 एवेन्यू डेकॉन कैट्रोबोन में 82 साल के 82 years old के श्री सी राम सोनिया जो सी राम नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2 बजे उनकी पत्नी श्रीमती सोनिया साना के घर नंबर 6 एवेन्यू डेकॉन कैट्रोबोन से उठाकर फिनिक्स की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। शिवाला रोड ब्रह्मस्थान सेंट्रल फ्लैक में 71 साल की 71 years old की श्रीमती राजमावती लाल बहादुर पैदायशी नाम झब्बू और जो स्वस्ती नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके बेटे प्रवीर सिंह कुनल लाल बहादुर के घर शिवाला रोड ब्रह्मस्थान सेंट्रल फ्लैक से उठाकर ब्रह्मस्थान की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। रोड ब्रह्मस्थान में 87 साल के 87 years old के श्री अपना नास्ताली जो कृष्णा मासो नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2 बजे उनकी पत्नी श्रीमती हिमावती नास्ताली के घर रोड ब्रह्मस्थान से उठाकर मेजिन कॉन्डोमास की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: You News on NBC Play, NBC Radio.

बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मौसम थोड़ा सा ठंडा है तो अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और दिन को पूरे उत्साह के साथ आगे लीजिएगा। मैं थी आपके साथ पूनम, मेरी तरफ से तो बाय बाय, बट आपको साथ मिलने जा रहा है नीतू शाह का मॉर्निंग बीट में। एंजॉय कीजिएगा अपनी मॉर्निंग और अपना दिन।

0: पूनम जा रही है और नीतू भी आ गई है.
1: वेलकम टू RM2
2: रेडियो मस्ती.
1: नॉर्थ साउथ
2: 103.5
1: ईस्ट वेस्ट
2: 96.4
1: सेंटर
2: 99.4
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
0: Already 7 baj chuke hain.
3: Morning beat. A good beat for your morning show. James.
1: RM2 Radio Musti in the mix.
4: Jeez, everybody.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: Oh yes, no life without music and no love without music. Bhai, if music be the food of love, play on. ये किसी महाबुजुर्ग ने कहा था, द ग्रेट शेक्सपियर ने कहा था, अगर म्यूजिक हो लाइफ में ना तो बस वो जो एनर्जी है, वो जो ऊर्जा है, वो हमारे पूरी जिंदगी में भर जाते हैं. थैंक यू सो मच. 7:08. गुड मॉर्निंग एवरीवन. कैसे हैं आप? ठीक ठाक? नीतू का प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करे. फ्राइडे मॉर्निंग, यप्पी, सब इंतजार करते हैं भाई कब फ्राइडे आए, कब फ्राइडे आए, क्योंकि फ्राइडे आते ही वो जो मस्ती वाला मूड हो जाता है, वो एकदम उजागर हो जाता है. ओह माय गॉड, इतनी बड़े बड़े शब्द का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे. बस आपका स्वागत करेंगे ऑफ कोर्स ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, एंड ऑफ कोर्स हैप्पी फ्राइडे टू यू ऑल. और उम्मीद करती हूँ कि आज की ये सुबह आपके लिए ढेर सारी पॉजिटिव वाइब्स, फ्रेश एनर्जी एंड ब्यूटीफुल स्माइल्स लेकर आई होगी. तो चलिए एक गर्मा गर्म चाय या फिर कॉफी के साथ इस फ्राइडे मॉर्निंग को बनाते हैं एकदम प्रोडक्टिव एंड मेमोरेबल एज वेल, क्योंकि वीकेंड बस एक कदम दूर है.

0: नो, अभी बोलने का टाइम नहीं है, बल्कि अभी तो दिमाग की कसरत करनी बाकी है भाई. इट्स रिकों कु टाइम.
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
0: Yes, you just have to play with MBC और आपकी जीत हो सकती है, और जीतने पर आपको मिल सकता है एक टिकट टू द गोल्डन 90s एरा 2 फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य लाइव इन कॉन्सर्ट. ये भी होने वाला है सैटरडे 25th July 2026 रात 7:30 बजे एट SVICC Pi. और बाकी डिटेल्स बस थोड़ी देर में आपको ऑफकोर्स आपसे पूछेंगे एक सवाल, क्या पता आप लकी विनर बन जाएं. प्लीज अगर आपकी जीत ऑलरेडी हो चुकी है तो दूसरों को मौका दीजिए, है ना. तो चलिए एक सिंपल सवाल है, ध्यान से सुनिएगा एंड डू आंसर मी ऑन 9999 1294 पर. आप हमें बताएं सही जवाब क्या है. इफ यू आर 30 एंड आई एम 32, हु इज ओल्डर. ऐ क्या पूछ लिया नहीं तू. नहीं, ट्रिकी तो है लेकिन बहुत ही आसान है. इफ यू आर 30 एंड आई एम 32, हु इज ओल्डर. फटाफट सही जवाब सेकत नफ नफ दूज नफ कत.

If you are 30 and I'm 32, who is older? 5499-1294 पर क्या पता भाई अभिजीत को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए, उनके बेस्ट ऑफ बेस्ट सॉन्ग सुनने के लिए, एंजॉय करने के लिए आपको ये टिकट मिल जाए।

0: A good beat for your morning show. RM2.
1: Radio Musti.
2: If you are 30 and I'm 32, who is older? मेरे को पता था कि कई लोग फंसेंगे इसमें. आपको लगेगा 32, of course 32 is older than 30. लेकिन आप समझे नहीं ना, मैंने बोल दिया था ये जितना सिंपल दिखता है, it's quite catchy. If you are 30 and I'm 32, मैंने ये तो नहीं बोला कि I'm 32, मैंने बोला I'm 32, यानी कि 30 मैं भी हूँ. T double O. तो ऑफकोर्स डेफिनेटली

सेम एज के हैं, किसी ने कहा आप बोरे हो नीतू. थैंक यू सो मच, आपने साथ निभाया. एंड ऑफ कोर्स सही सिंग टू, दैट मेक्स देम बोथ 30, यानी कि दोनों सेम एज है. बस सुनने का जो फर्क था, ऑडियो, यानी कि आपको सुनना था आई एम 30, यू आर 32, तो बस यही सब सही जवाब कि दोनों सेम एज के हैं. और यहाँ पर सही जवाब देने वाले आपने फंसे इस कैची क्वेश्चन में, यानी कि हमारे लकी विनर है मीना, कंग्रेचुलेशंस आपको, कंग्रेचुलेशंस आपको. एंड आपकी जीत हुई, आपको मिल रहा है एक टिकट टू द गोल्डन एरा, यानी कि 90s एरा टू फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य लाइव इन कॉन्सर्ट सैटरडे 25 जुलाई को आज फ्रॉम 7:30 PM एट SVICC पाए, वे यू कैन स्टेप इनटू वर्ल्ड ऑफ नोस्टाल्जिया. उनके एवरग्रीन सदाबहार गाने होंगे एंड रिलीव द अनफॉरगेटेबल वॉइस दैट डिफाइन बॉलीवुड्स गोल्डन एरा. आप एंजॉय कर सकते हैं कैसे टाइमलेस मेलोडीज ऑफ इवनिंग, यानी कि जैसे कहते हैं उनके लेजेंडरी हिट्स, प्योर मैजिकल मैजिक होंगे. टिकट स्टार्ट्स एट ₹850 एंड अवेलेबल एट mochiket.mu एंड रेजो ओटायो. सो डोंट मिस दिस अनफॉरगेटेबल कॉन्सर्ट एक्सपीरियंस. फॉर रिजर्वेशन आप कॉल कर सकते हैं हॉटलाइन पर 8669999 4669999. सो वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस हम कहेंगे मीना, आपको आना है MBC अपने ID कार्ड के साथ. एंड ऑफ कोर्स 25 अप्रैल से पहले हाँ, और आप अपने टिकट कलेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच एंड ब्रावो.

0: Show. RM2.
1: Radio Musty.
2: चलिए आज किसका बर्थडे है, किसको सरप्राइज देंगे, उनसे बात करते हैं। हेलो, हेलो, नमस्ते जी। फटाफट, थैंक यू सो मच, आपका नंबर आया है यहाँ पर एक लकी ड्रॉ के बाद। हम आपसे एक सवाल तो नहीं पूछेंगे, एक अगर आपने सही सही से पकड़ लिया, एक टंग ट्विस्टर है तो आपकी जीत हो सकती है। आपका नंबर रेंडमली आया है तो प्लीज फटाफट आप बोलिए, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शो। अगर आपने सही तरीके से दो ही बार बोल दिए ना, तो आपको जवाब मिले, आपको सही सही जो गिफ्ट है वो आपको मिल जाएगा। सी शेल्स सी शेल्स बाय द सी शो, प्लीज बोलिए ना। हाँ, आपने क्या बोला, इतनी आपने धीमी आवाज में बोला है ना, प्लीज एक बार फिर। सी शेल्स सेशल्स, नहीं आपको सेशल्स नहीं भेजना चाहती हूँ मैं अभी, आपको वो टिकट नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, एक बार फिर जोर से, क्योंकि आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। सेशल्स सेशल्स बाय द सी शो, दो बार फटाफट। ओके, कोई बात नहीं, आपने सही सही बोला। आपका नाम क्या है येशनी? So it's a very good morning to you. I don't know अगर आपने पकड़ लिया कि हम आपसे कौन बात कर रही हैं। Do you know he's talking to you? जी, आप अभी रेडियो मस्ती पर है।
3: Yes.
2: Okay, तो आपको पता चल गया और हम आपसे खेल रहे हैं, आप हमारे जज्बातों से खेल रही थी। कोई बात नहीं, येश निमारिक है माई डियर फ्रेंड, आज आपका बर्थडे है ना?
3: Yes.
2: So wish you many many happy returns of the day. आपके पति की तरफ से आपकी भाभी ने मैसेज किया है कि प्लीज मेरी भाभी को विश कर दो लाइव, आज उनका बर्थडे है। सो अभी आप घर पर हैं, काम पर जा रहे हैं, कैसी हैं आप, कहाँ पर है वो? काम पर जा रहे हो, अभी आप ट्रांसपोर्ट में, बस में, गाड़ी में, कैसे, आर यू ड्राइविंग? नहीं,
3: नो, बस।
2: ओके, तो चलिए, आई रियली होप कि सभी लोग अभी जो बस में हैं आपको सुन रहे हैं, और हम आपको कहना चाहेंगे मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। एंड ये था लुलु हाइपर की तरफ से, सो वी आर डिलाइटेड टू सेलिब्रेट योर स्पेशल डे विद लव एंड लाफ्टर। येशनी, ये आपके लिए है माय डियर।
3: थैंक यू।

0: वो तो हम भी समझ गए भाई, लेकिन क्या करें अभी इट्स अबव द सरप्राइज, और जिससे बात करने चाहिए वो तो अभी वेट कर रही है, अगर बात ना करे तो वो भाग जाएगी। चलिए फटाफट करते हैं बात उनसे।
1: A good beat for your morning

0: हैप्पी बर्थडे टू यू यशनी मानिक ऑफ कोर्स एंड पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी खुशियां आपको आपके जीवन में आपके दामन हो में बस प्यार ही प्यार हो खुशियां हो. सो सेलिब्रेट योर बेस्ट डे विद योर डियर वंस. अपने दोस्तों के साथ अभी काम पर जा रही है. सो बों कुराश एंड लुलू हाइपरमार्केट की तरफ से आपको दिया जा रहा है एक वाउचर और आज नहीं तो कल तक आपको आ जाना चाहिए. एंड बस अपने आईडी लेकर आ जाइएगा और आप अब जो वाउचर है कलेक्ट कर सकते हैं एंड अपने बर्थडे को स्पेशल बना सकते हैं विद योर डियर वंस. ठीक है यशनी मानिक. थैंक यू सो मच एंड हंसते रहो भाई. हाँ हंसते रहो चिल आउट एंड बस मुस्कुराते रहो और अपने दिन को स्पेशल बनाते रहो. ठीक है थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय बाय बाय.
1: A good beat for your morning show. Morning Beat. RM2. Radio.

0: It's not Molang, it's pollution.
1: Sports Magazine is brought to you by Quality Decor, the floor expert.
2: Sports News.
3: Radio Musti in the mix.
0: Well, the much-awaited grand finale is बस दो कदम दूर है और ये जो World Cup FIFA 2026 वो भी समाप्त 104 matches. Oh my God, क्या क्या नहीं देखा हमने, हार जीत. इंग्लैंड की हार हो गई, दिल टूट गया, लेकिन हमने सुना है कि अभी जो वहाँ पर pollution है वो भी air pollution. अरविंद, क्या हो रहा है भाई? Good morning.
4: Good morning आपको. Good morning RM2 listeners. The latest from the sports world.
5: वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल के इंतजार में न्यूयॉर्क में वायु प्रदूषण एयर क्वालिटी हेल्थ अलर्ट जारी किया गया है. कनाडा के कई इलाकों में लगी आग से धुआं न्यूयॉर्क तक आ गया है और लोगों को घर से बाहर न जाने की सलाह दी जा रही है. स्पेन और अर्जेंटीना के बीच फाइनल न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में लगने वाला है. एक तो गर्मी बहुत है, अब धुआं, सांस लेना कठिन है. आज एयर क्वालिटी बेहतर होने की उम्मीद है और कल बारिश का अनुमान है. डर है कहीं फाइनल धुआं में न उड़ जाए. याद दिला दें, फाइनल परसों संडे रात्रि को 11 बजे लाइव एमबीसी स्पोर्ट्स 11 पर. इंग्लैंड के लिए अर्जेंटीना से मिली हार सदमे से कम नहीं है, हजम नहीं हो रही है. इंग्लैंड का डिफेंसिव रिट्रीट चर्चा का विषय बन गया है. खबर है इंग्लैंड के कई खिलाड़ी भी कोच टोमास टुखेल के टैक्टिक से नाराज हैं. टोमास टुखेल ने जवाब दिया, इट्स मे बी नॉट इन आवर डीएनए टू कंट्रोल द गेम एंड बॉल, यानी बॉल कंट्रोल नहीं कर पाए, हार गए. वेन रूनी ने यहां तक कहा कि हार मैनेजर के फैसले से हुई, अब क्या करें, हमेशा की तरह इंग्लैंड इतने करीब आकर सस्ते में आउट. स्पेन और अर्जेंटीना वाले फाइनल मैच से पहले कई खिलाड़ियों पर लाइमलाइट हैं, कई फोटो सामने आ रहे हैं. इनमें से एक में पता चला कि मेसी लामिन यामाल को बहुत पहले से जानता है. 2007 में मेसी 20 साल का था, लामिन यामाल 5 महीने का. मेसी लामिन यामाल को बाथटब में नहाते हुए नजर आया है. फोटोशूट बार्सिलोना के नू कैंप में हुआ था. लामिन यामाल के पेरेंट्स, उनके माँ बाप एक कॉम्पिटिशन जीत कर वहाँ आए थे अपने मुन्ने लामिन यामाल के साथ. कौन कहेगा कि 19 साल पहले जिस लामिन यामाल को मेसी ने गोद में लिया, उसे नहलाया था, वो लामाल उसके सामने होगा वर्ल्ड कप के फाइनल में. इंग्लैंड का खिलाड़ी जूड बेलिंगम से भी फाइनल में नहीं स्कोर कर पाया, पर मैच पूरा होने पर गुस्से में आकर अर्जेंटीना के सब्स्टिट्यूट बाको को कान के पीछे मारा. फीफा इस मामले पर तहकीकात कर रही है. कल ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए बेलिंगम को सस्पेंड भी किया जा सकता है. और क्रिकेट, इंग्लैंड ने कल टीम इंडिया को 4 विकेट से हराया. ये दूसरा वनडे मैच था इन दोनों के बीच. जो रूट 99 नॉट आउट. इंडिया के लिए विराट कोहली 65 और श्रेयस अय्यर 66 रन बनाकर आउट हुए 65-66. टोटल केवल 233. इंग्लैंड ने सीरीज लेवल किया है 1-1. सो वर्ल्ड कप जारी है, थर्ड प्लेस और फाइनल का इंतजार है. इस बीच मॉरिशस में भी युवा एवं खेल मंत्रालय की ओर से वर्ल्ड कप के संदर्भ में जो फुटबॉल

0: टूर्नामेंट आयोजित की गई थी अंडर 13, इसका फाइनल कल खेला जाएगा कुड्डो स्टेडियम में। तो हमारे यहाँ भी वर्ल्ड कप का फाइनल होगा ये कल कुड्डो में हमारे नवयुवकों के लिए। कौन जाने, इनमें से बहुत लोग बड़े होकर एक दिन असली वर्ल्ड कप में मॉरिशस के लिए खेले, देखते हैं। पर इंतजार है फॉर द बिग फाइनल जो न्यूयॉर्क में लगेगा, ये होगा अर्जेंटीना और स्पेन के बीच। कह रहे हैं वहां धुआं है, लेकिन मैच में आग ही आग होगा दो महारथियों के बीच। एक साथ देखेंगे एमबीसी 11 पर, डोंट मिस इट। हैव अ नाइस टाइम लिसनिंग रेडियो मस्ती, टेक केयर, बाय बाय।
1: थैंक यू सो मच अरविंद, एंड बस जो जीता वो सिकंदर।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेकोर, द फ्लो एक्सपर्ट।
3: कभी स्पाइसी कभी स्वीट, म्यूजिक लवर्स की हार्ट बीट।
4: टक टक बॉलीवुड।

0: Air freshener. Freshness. Anytime, anywhere.
1: Radio Masti.
2: North. South.
1: 103.5.
2: East. West.
1: 96.4.
2: Center.
1: 99.4.
3: RM2. Radio Masti.
1: Radio Masti.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Masti.
4: 8 baje hai. नमस्ते आवाजा भोजपुरी में समाचार सुने जा क्यूपी में कई छात्र स्कूल में बुलिंग के खिलाफ मार्च निकलने सेंट जोसेफ और क्यूपिप लोरेटो के छात्र ई जागरूकता रैली में शामिल हो रहलन ई पहल उ घटना के बाद होल जिमे एगो छात्र संगे कक्षा में अभद्र व्यवहार के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहल आरोपी छात्र निलंबित बाटे जबकि पीड़ित के मनोवैज्ञानिक सहायता देवल जाता बिजनेसमैन संजीव रामदानी के यात्रा अनुमति पर फैसला 25 अगस्त के सुनावल जाए उ अगस्त से दिसंबर 2026 ले यात्रा प्रतिबंध हटाए के मांग कर ले बाटे रामदानी पर एसबीएम के पूर्व सीईओ प्रेमचंद मंगल संगे मिल के ध्यानवर्तम लिमिटेड के 470 मिलियन रुपया के क्रेडिट लाइन दिलाए के कथित आपराधिक साजिश के आरोप बाटे मॉरिशस और अमरीका एगो लॉजिस्टिक्स कॉपोरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर ले बाटे जैसे दोनों देश की सेना संयुक्त अभियान और अभ्यास के दौरान लॉजिस्टिक्स सहायता के आदान प्रदान कर सकें जा सरकार बोलेलन कि इससे मॉरिशस के महत्वपूर्ण लाभ हुए वहीं इस समझौता पर रोक लगाए के मांग होला याचिका के सुप्रीम कोर्ट के जज इन चैम्बर्स खारिज कर दे रहे बाटे अमरीकी उप सहायक सचिव सारा ट्रॉटमन ने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम से मुलाकात कर व्यापार निवेश और द्विपक्षीय सहयोग के मजबूत करे पर चर्चा करलन बैठक में मॉरिशस के अर्टेमिसाकोस में संभावित शामिल हो के और 6-9 दिसंबर ले मॉरिशस में हुई होला यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट की तैयारी पर भी विचार विमर्श करल गल यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हो के 20 बरिस पूरा हो पर अप्रवासी घाट में स्मारक समारोह आयोजित करल गल ये अवसर पर एगो ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण और युवा लोग ले इतिहास पहुंचाए पर जोर देवल गल अप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड एमबीसी के सहयोग से 20 शतायु व्यक्ति की गवाही के रिकॉर्ड करेगी परियोजना जारी रखे की भी घोषणा करलन और दूसरे देश की खबर में अमरीकी सेना ईरान के खिलाफ लगातार 6 रात हवाई हमला कर लन यूएस सेंट्रल कमांड के अनुसार एक उद्देश्य ईरानी सैन्य क्षमता के कमजोर करे के रहल तो देश विदेश की खबर संगे भोजपुरी में समाचार समाप्त भल अपन ध्यान खातिर धन्यवाद नमस्ते
5: कभी सोचा है
6: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
5: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा
6: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना
5: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका
6: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
5: ओपन टू ऑल मॉरिशस बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
6: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक कॉन्फिडेंस एनर्जी और पर्सनालिटी
5: वीडियो हो सकता है हिंदी भोजपुरी तमिल तेलुगु गुजराती मराठी उर्दू या चाइनीज में
6: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
5: और आखिरी तारीख है 26th of July तो कैमरा ऑन कीजिए टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो
6: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज आपका स्टाइल
5: और आपका चांस
6: डोंट मिस इट
7: North, South, East or West. Tune into the very best. Radio Masti, your number one Bollywood station.

बात बोलो भैया भाई किसने कहा है कि घर पर गमट या फिर कसरत हो नहीं सकती है तनी कमरिया डुलाइए ना लेफ्ट राइट लेफ्ट

0: राइट, हाथ उठाइए और देखिए कितना मजा आता है। 8:09, क्या मौसम का भी ऐसा ही मिजाज है आज? चलिए एक साथ जानते हैं।
1: It's the weather broadcast with winners.
2: On est tous winners.
3: पश्चिम से पाई जा रही अस्थिर बादलों के कारण स्थानीय मौसम प्रभावित हो रहा है। अगले 24 घंटों के लिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आज सुबह और दिन के दौरान बादल घिरे रहेंगे और पश्चिम तथा सेंट्रल प्रांतों पर बारिश होगी, कभी कभी सामान्य वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्रांतों पर 22 से 24 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 25 से 27। रात के दौरान बारिश होती रहेगी, इसके बाद धीरे धीरे मौसम में सुधार आएगा। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्रांतों पर 17 से 19, अन्य इलाकों पर 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा उत्तर पश्चिम की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दक्षिण के समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 7:45 और शाम 5:47 पर सूरज ढल जाएगा।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
4: Cet hiver, du 10 au 23 juillet, retrouvez chez Winners tout ce qu'il vous faut pour profiter de la saison à petit prix. Parce que rien ne vaut de bons repas et de précieux moments en famille pour vous réchauffer pendant l'hiver. Tout vous attend chez Winners. Les 5 kilos de riz basmati Mahal 11-21 à 289,95 roupies et à l'achat d'un kilo de Kenko Fish Balls à 270 roupies, bénéficiez de 50 points WIV. Qualité, variété et petit prix, tout est réuni sous un même toit chez Winners. Cet hiver, faites le bon choix.
5: On est tous Winners.

0: व्हाट एन इंस्पायरिंग गाना है ना, चल आगे चल, बढ़ते आगे चलता चलला। 8:16 होने वाले हैं। थैंक यू सो मच। एंड वेल, जिंदगी किताब की तरह होती है ना। अगर आप सोचे तो एक पन्ना खराब हो जाए तो पूरी किताब बंद तो नहीं करती है, बस अगला पन्ना खोलिए, क्योंकि शायद वही आपके सबसे खूबसूरत कहानी लिखने वाला हो। व्हाट से ए वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल।
1: Morning beat, a good beat for your morning show. James,
2: RM2 Radio Musty in the mix.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: एक गाने के साथ एक सिंगर कहां से कहां पहुंच जाता है या जाती है. दैट्स मधुबंती बागची. ऑफ कोर्स तुम मेरे हुए ना सही. नहीं, ये गिफ्ट आपके नाम हो सकता है भाई. अगर आपकी जीत हुई, जस्ट हैव टू प्ले विद एमबीसी एंड विन अ टिकट टू द गोल्डन 90s एरा ऑफ टू फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन सैटरडे 25 जुलाई 2026 फ्रॉम 7:30 PM एट SBICC Pi. एक और फनी सवाल हो जाए नीतू. सवाल है, जवाब है, जवाब पे सवाल, सवाल पे जवाब. आप कंफ्यूजन मत जाइएगा, ध्यान

से सुनिएगा क्या है, हम क्या ढूंढ रहे हैं. 5499129 पर सही जवाब भेज दीजिएगा. क्या पता ये टिकट आपके नाम हो जाए और आप अभिजीत से मिल जाए. डेफिनेटली उनके जबरदस्त गाने तो आप सुनेंगे ही, एंजॉय करेंगे. सो टेल मी, व्हाट हैज फोर लेटर्स, समटाइम्स हैज नाइन, नेवर हैज फाइव. इकाहो यह प्रश्न, यानी कि क्वेश्चन हमने आपसे पूछा. व्हाट हैज फोर लेटर्स, समटाइम्स हैज नाइन, Never has five. इसको बुझाइए 5499129 पर. तब तक अभिजीत कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में गाने सुनते चले.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: कभी कभी हम लोग ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जो आपको लगता है ओ माई गॉड इट्स सो डिफिकल्ट. नहीं, लेकिन कभी कभी सवाल में ही जवाब होता है और कभी कभी जवाब में ही सवाल होता है. जिस तरह से हमने आपसे पूछा, आपको लगा कि ये क्या जवाब हो सकता है. What has four letters, sometimes has nine, never has five. भाई सही जवाब हम आपको बताएं. कई लोग फंस चुके थे इसमें, सोच रहे थे, किसी ने कहा ये नंबर, किसी ने कहा वो नंबर, कई जवाब मिले, लेकिन सही जवाब है देखो वॉट WHAT. It has four letters. Sometimes, आप गिन कर देखो, nine letters हैं and never में five letters है. ये तो ये सही जवाब. जी हाँ, what has four letters, sometimes has nine letters and never has five letters. अगर आप दिमाग के घोरे को दौड़ाएंगे थोड़ी देर के लिए तो आपको सही जवाब मिल जाएगा. वैसे अभी सही जवाब देने वाले हमारे लकी विनर हैं. कौन नीतू? आप हो मिस्टर विश्वराज सिबारन फ्रॉम बुले रोज फ्लैक. हे ब्रावो, कंग्रेचुलेशन, आपकी जीत हुई एंड आपको मिल रहा है एक टिकट टू द गोल्डन 90s एरा टू फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन Saturday 25th July 2026 of course raat 7:30 baje at SVICC Pai jahan par aap step in karenge into world of nostalgia. Aha, kaise kaise gaane unhone gaaye hain, kya awaaz hai, and relive the unforgettable voice that defined Bollywood's golden era. Aap enjoy kar sakte hain ek evening of timeless melodies, legendary hits and definitely pure magical magic, musical magic hoga. Tickets start at 850 rupees aur mochiket एंड रिजो टाइ पर डेफिनेटली अवेलेबल है. वेर यू कैन एन्जॉय, जैसे कि हमने कहा, उनकी टाइमलेस मेलोडीज. सो डोंट मिस दिस अनफॉरगेटेबल कॉन्सर्ट एक्सपीरियंस. फॉर रिजर्वेशन फटाफट कॉल कीजिए. हॉटलाइन नंबर है 4669999. सो हमारे लकी विनर है मिस्टर विश्वराज सिबरन. आपको आना है MBC अपने ID कार्ड के साथ एंड फिर आपको आपके टिकट मिल जाएंगे.

0: good beat for your morning show. Morning Beat, RM2.
1: Radio Musty.
2: It's the World Cup magazine on RM2 with Mighty.
3: FIFA World Cup 2026, the grand final. It's the clash of the titans. Argentina versus Spain. Live the excitement. Get all the updates of this grand final on Radio Musty. FIFA World Cup 2026, the grand final.
4: कोर्स ये जो मूवी है ना फुटबॉल की ये जो मूवी है इट्स अबाउट एंड दर्द तो होगा लेकिन मज़ा भी आने वाला है किसकी जीत होगी स्पेन अर्जेंटीना बस हम तो कहते हैं जो जीता वही सिकंदर भाई बार बार ये कहेंगे हमारी टीम तो हार गई कोई बात नहीं आपकी टीम तो हारेगी नहीं जीतेगी डेफिनेटली हम सब जीतेंगे इसमें वंस अगेन गुड मॉर्निंग अरविंद
5: वर्ल्ड कप स्पेशल मैगजीन थ्रिलिंग क्लाइमैक्स वर्ल्ड कप का फाइनल रेकनिंग वर्ल्ड चैंपियन वर्सेस यूरोपियन चैंपियन लामिन यमाल ट्रेनिंग मिस कर गया इंजुरी है या नहीं कुछ कंफर्म नहीं है लेफ्ट थाई इश्यू इधर विक्टर मुनोज कल्फ और मस्कुलर इंजुरी के कारण शायद नहीं खेल पाएगा येरेमी पिनो भी डाउटफुल है निको विलियम्स फुल फिट अर्जेंटीना के लिए कोई खास इंजुरी कंसर्न नहीं है कोई सस्पेंशन भी नहीं वैसे वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल के इंतजार में न्यूयॉर्क में एयर क्वालिटी हेल्थ अलर्ट जारी किया गया है कनाडा में कई इलाकों में लगी आग से ये स्थिति आई है धुआं न्यूयॉर्क में और लोगों को घर से बाहर न जाने की सलाह दी जा रही है स्पेन और अर्जेंटीना के बीच फाइनल न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में लगने वाला है एक तो गर्मी बहुत है ऊपर से धुआं सांस लेना कठिन है आज एयर क्वालिटी बेहतर होने की उम्मीद है और कल बारिश का अनुमान डर है कहीं फाइनल धुआं में न उड़ जाए याद दिला दें फाइनल परसों संडे रात्रि के 11 बजे लाइव एमबीसी 11 पर इसे इंग्लैंड के लिए अर्जेंटीना से मिली हार सदमे से कम नहीं है हजम नहीं हो पा रही है इंग्लैंड का डिफेंसिव रिट्रीट चर्चा का विषय है खबर है इंग्लैंड के कई खिलाड़ी कोच टोमास टुखेल के टैक्टिक्स से खुश नहीं है टोमास टुखेल ने जवाब दिया इट्स मे बी नॉट इन आवर डीएनए टू कंट्रोल द गेम एंड बॉल यानी बॉल कंट्रोल करना नहीं सीखा है डीएनए में नहीं है अजीब बात है वेन रूने ने यहां तक कहा कि हार मैनेजर के फैसले से हुई अब क्या करें हमेशा की तरह इंग्लैंड इतने करीब आकर सस्ते में आउट है वर्ल्ड कप में अभी और कुछ बातें होंगी इन सब पर आपको जानकारियां देते रहेंगे वेट एंड वॉच
2: इट वॉज द वर्ल्ड कप मैगजीन ऑन RM2 विद माइटी
3: FIFA World Cup 2026, the grand final. It's the clash of the titans. Argentina versus Spain. Live the excitement. Get all the updates of this grand final on Radio.

0: पूछना चाहिए कहाँ लगा, कैसे लगा भाई, कसके लगा।
1: A good beat for your morning show. RM2
2: Radio Musti.
3: Problème légère, les baguettes, les ali. Anchor Life, your heart, act now.

Alright, time for another Jacon Quar. इस बार जीतने पर हमारे जो lucky winner है उनको मिल सकता है an Ankle Life goodie bag worth 500 rupees, जिसमें एक box of Ankle Life 750 grams है, एक box of Ankle Life 300 grams and एक Ankle Life cup. Wow, क्या बात है. तो बस, hello दोस्तों, wishing you all once again a very good morning. एक छोटा सा सवाल हो जाए. Your heart beats, your heart works for you every single day, है ना? So आज, why not doing something good for your heart. देखो, जब तक दिल धक धक करता है तब तक हम जीवित है. अगर ये रुक गया तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम फज्जत हो जाती है भाई. सो आप अपने दिल का ख्याल रखिएगा. हाँ, लव इज इन एयर, लव इज इन द एयर, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन खान पान, जो आपकी लाइफ स्टाइल, इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए. सो कैसे हम अपने दिल का ख्याल, अपने हाथ का ख्याल रखिएगा? विद समथिंग वेरी सिंपल लाइक अ डेली ग्लास ऑफ मिल्क. और एंकल लाइफ इज अ गुड न्यूट्रिशियस मिल्क स्पेशली डिजाइन टू सपोर्ट एक जो बैलेंस लाइफ स्टाइल कहते हैं, विद एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर योर हार्ट्स वेलबींग. आज का सवाल क्या है नीतू? मैं आपसे पूछूंगी सही सही जवाब सहकात नफ नफ दूस नफ काट पर, हाँ या फिर नो से जवाब दीजिएगा. जी हाँ, यस ओ नो सही जवाब दीजिएगा प्लीज. वंस अगेन, जीत हो गई है आपकी तो दूसरों को मौका दीजिए. टेल मी, जो एंकल लाइफ है इट हैज अ लो ग्लिसेमिक इंडेक्स, इज इट ट्रू और फॉल्स? जो एंकल लाइफ है, ये जो दूध है, इट हैज अ लो ग्लिसेमिक इंडेक्स, ये सही जवाब है या फिर गलत? इज इट ट्रू और फॉल्स? बस यही आपको बताना है 5499-1294 पर. जिसकी जीत होगी इस गिफ्ट के जरिए उनको चुम्मा भी मिल जाएगा भाई.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: Definitely जो सही जवाब देगा उसको तो चुम्मा मिलेगा ही भाई, लेकिन गानों के जरिए. हाँ, आपको क्या लगा 5499294 पर सही जवाब क्या था? वैसे क्या पूछा था मैंने सवाल? हाँ नीतू, वो था कि जो एंकल लाइफ है इट हैज अ लो ग्लिसेमिक इंडेक्स. सही जवाब है ट्रू और फॉल्स? डेफिनेटली इट्स ट्रू. यस, जो एंकल लाइफ है इट हैज अ लो ग्लिसेमिक इंडेक्स, हेल्पिंग टू रिलीज एनर्जी धीरे धीरे, वो भी सुबह का टाइम. बहुत अच्छा चॉइस फॉर दोज हु आर माइंडफुल ऑफ देयर शुगर लेवल्स. देखो भाई, दिल अगर एकदम साफ होनी तो चाहिए ही. हाँ, लेकिन अगर दिल अच्छा है, दिल साफ है, दिल स्वस्थ है, हेल्दी है, तो डेफिनेटली आप अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना सकती हैं. सो टू स्टार्ट योर डे स्टे एक्टिव, हैव बैलेंस्ड मील्स, मेक एंकल लाइफ योर डेली पार्टनर इन केयरिंग फॉर योर हार्ट. और हाँ, इफ यू हैव एनी हेल्थ कंसर्न्स प्लीज स्पीक टू योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स फॉर एडवाइस, क्योंकि एंकल लाइफ योर हार्ट, एक्ट नाउ. एंड कंग्रेचुलेशंस कहना चाहेंगे आपको काहे नीतू, हमारे लकी विनर है मिस्टर महेंद ऑफ कैथबोन. सो ब्रावो, कंग्रेचुलेशंस, आपकी जीत हुई और आपको मिलता है एक एंकल लाइफ गुडी बैग वर्थ 500 रुपीज, जिसमें एक बॉक्स ऑफ एंकल लाइफ 750 ग्राम्स, एक बॉक्स ऑफ एंकल लाइफ 300 ग्राम्स, एक एंकल लाइफ कप जो आपको कलेक्ट करना होगा एट MBC, माने कि आपको अपने ID लेकर आना होगा, फिर आप अपने जो गिफ्ट हैं गुडी बैग हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं. ब्रावो.
3: Problème laitier, les baguettes laitier, les capaves moi, les capaves toi, les capaves nous tous. Protège tu laitier Zodi, pour qu'il dîme, tu pas à risque un ban problème laitier. Allô, enjoy your life avec Enke Life, parce qu'il s'abondit les Enke Life là, et n'a stérol végétaux qui activement combattent mauvais cholestérol. En plus de te ban activité physique et que mange équilibré, sans oublier te bondit les Enke Life, mais là, te pébran soin tu laitier. Enke Life, your heart, act now. Veuillez consulter votre professionnel de santé si besoin.

0: ऑलराइडी 8:56 बस हमारे जाने का टाइम आ गया है. मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट मंडे यानी कि 5 to 7 AM के बीच इन ऑफ कोर्स राइज एंड शाइन. हमारे बाद प्यारी से नीलमणि आपके साथ रहेंगी. टेक केयर, हैव अ नाइस वीकेंड अहेड. बाय बाय.
1: बड़ी ताजा खबर है कि तुम खूबसूरत.
0: दिस इज फॉर यू लवली पीपल आउट देयर.

0: समाचारों को लेकर विधिमा आ चुकी है। विधिमा आपका स्वागत है।
1: नमस्कार सुमी, सभी को नमस्कार। क्यूपिप में कल सेंट जोसेफ अलोरेटो कॉलेज के सैकड़ों छात्रों ने स्कूल में हुए उत्पीड़न यानी बुलिंग के खिलाफ मार्च निकाला। ये विरोध प्रदर्शन एक महीने पहले कक्षा में हुई उस घटना के बाद हो रहा है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। आरोपी छात्र को निलंबित कर दिया गया है और पीड़ित को मनोवैज्ञानिक सहायता दी जा रही है। व्यापारी संजीव रामदानी पर SBM में 470 मिलियन रुपए की क्रेडिट लाइन जारी कराने में कथित आपराधिक साजिश का मामला चल रहा है। इस संबंध में उन्होंने विदेश यात्रा के लिए जमानत की शर्तों में ढील देने की याचिका दायर की है। पोटली जिला अदालत में बहस पूरी हो चुकी है और मजिस्ट्रेट शाहीन इंशिरा दोहियाऊ 25 अगस्त को अपना निर्णय सुनाएंगी। आप्रवासी घाट ने यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने की अपनी 20वीं वर्षगांठ मनाई। इस अवसर पर आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के निदेशक वेद प्रकाश बंधन ने बताया कि ये दर्जा मिलने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मॉरिशस की प्रतिष्ठा बढ़ी है। साथ ही संस्थान MBC के सहयोग से 20 शतायु व्यक्तियों के अनुभवों को मौखिक इतिहास परियोजना के तहत रिकॉर्ड करेगा। मॉरिशस और अमेरिका ने सैन्य अभियानों और अभ्यास के दौरान लॉजिस्टिक्स सपोर्ट साझा करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई इंजंक्शन याचिका को जज ने खारिज कर दिया है, जिसके बाद गृह सचिव दोहिन फोंग वेन पुरन ने इसे मॉरिशस के लिए बेहद फायदेमंद बताया है। और विदेश में कनाडा भर में 800 से अधिक जंगल की आग लगी हुई है, जिसके कारण वायु गुणवत्ता की चेतावनी अब दक्षिण में कई अमरीकी राज्यों तक फैल गई है। यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स कार्यक्रम द्वारा मिशिगन और मिनेसोटा के उत्तरी राज्यों के बड़े हिस्सों में वायु गुणवत्ता को खतरनाक माना गया है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
0: गुड मॉर्निंग, 9:60 है और दिन कब से ब्यूटीफुली शुरू हो गया आपके RM2 रेडियो मस्ती के साथ। अभी चल रहा है यो मस्ती मॉर्निंग शो विद Nilmani। तो आपके मैसेजेस, डेडिकेशंस, हॉरोस्कोप और टिप्स भरपूर मात्रा में मिलने वाली है, तो यहीं पर यू स्टे कनेक्टेड एंड स्टे सेफ। अगर आप अभी ड्राइव कर रहे हो, ड्राइव सेफ विद योर RM2 रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: दिल में स्पेशल विशेस है, दिन खास है और मौका भी. आज है विदिशा बीचू का जन्मदिन, वो हो गई है 4 साल की. और हैप्पी बर्थडे, बेस्ट विशेस आपकी मम्मा जेना, पापा वेद, दादी शोभना, दादा राज, चाचा विराज, नानी वानेसा, नाना अजय, मौसी केशनी, नानी तिमी, बीचू फैमिली की तरफ से. एंड लकीली आपको पता है उनका फेवरेट गाना हमारे अगले गाने से मैच करती है, लेकिन इससे पहले बर्थडे सॉन्ग तो बनता है ना.

Yes, और भी birthdays हैं, आप हैं आकाश और आज आपके 25th birthday है and आपके पिताजी की तरफ से best wishes, stay blessed, मम्मी की तरफ से भी and फारिक की तरफ से भी happy birthday to you, पूरी RM2 team की तरफ से।

0: कभी सोचा है
1: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251 6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।

0: और मेरे यहाँ ये सभी टाइम और चला है जुनू की आज ग्रहों की चाल क्या संकेत दे रही है, किस बात पर ध्यान देना चाहिए और क्या रहेगा आज का लकी कलर नंबर, तो चलिए जानते हैं।
1: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
2: Aries मेष राशि।
0: आज आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्यक्षेत्र में मेहनत के उचित फल मिलने के योग है, परिवार के साथ हम मधुर समय बिताने का अवसर भी मिलेगा, किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में लेने से आपको बचना है, बी कॉशियस व्हेन टेकिंग एनी डिसीजन। लकी कलर आज आपका है रेड और नंबर है 9।
2: टॉरस वृषभ राशि।
0: आज धन संबंधित यानी कि पैसों के मामलों में सावधानी रखना उचित रहेगा, पुराने मित्रों से मुलाकात या बातचीत आपके मूड को बेहतर बना सकती हैं, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और रेस्ट कीजिए जितना हो सके। लकी कलर आपका है ग्रीन और नंबर है 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
0: आज नए अवसर आपके द्वार पर दस्तक दे सकते हैं, अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखें, बी नाइस क्योंकि इससे आपके रिलेशनशिप्स और भी मजबूत हो जाएंगे, यात्रा के योग भी बन सकते हैं। लकी कलर आपका है येलो और नंबर है 5।
2: कैंसर कर्क राशि।
0: परिवार का सहयोग आज आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा, भावनाओं में बहकर कोई भी फैसला ना ले, धैर्य और समझदारी से काम लेने पर सफलता मिलने वाली है। लकी कलर आपका है व्हाइट और नंबर है 2।
2: लियो सिंह राशि।
0: आज आपकी एनर्जी लोगों को बहुत पसंद आएगा, काम में प्रगति के नए रास्ते खुल सकते हैं, अहंकार यानी कि ईगो से दूर रहकर सबके साथ घुल मिल कर रहिए। लकी कलर आपका है गोल्डन और नंबर है 1।
2: वर्गो कन्या राशि।
0: आज योजना बनाकर काम करने से लाभ होगा, अधूरे कार्य पूरे होने के योग्य है, स्वास्थ्य और भोजन का विशेष ध्यान रखें। लकी कलर आपका है स्काई ब्लू और नंबर है 7।
2: लिब्रा तुला राशि।
0: आज संतुलन और समझदारी आपको हर परिस्थिति में सफल बनाएगी, जीवन साथी या परिवार के साथ मधुर पल बिताने का अवसर मिलेगा, खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें। लकी कलर आपका है पिंक और नंबर है 6।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
0: आज आपकी मेहनत रंग लाएगी, किसी पुराने विवाद का समाधान मिल सकता है, गुस्से पर नियंत्रण रखें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। लकी कलर आपका है मरून और नंबर है 8।
2: सजिटेरियस धनु राशि।
0: आज ज्ञान और अनुभव से लाभ मिलेगा, किसी बुजुर्ग की सलाह के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। लकी कलर आपका है पर्पल और नंबर है 3।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: आज जिम्मेदारियां थोड़ा बढ़ सकती है लेकिन आप उन्हें सफलता से पूरा करेंगे, आर्थिक स्थिति में सुधार के योग है, धैर्य बनाए रखें। लकी कलर आपका है ब्राउन और नंबर है 4।
2: एक्वेरियस कुंभ राशि।
0: आज रचनात्मक विचार आपको नए अवसर दिला सकते हैं, मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना आपके लिए लाभदायक रहेगा। लकी कलर आपका है ब्लू और नंबर है 11।
2: पाइसेस मीन राशि।
0: आज आपका मन शांत रहेगा और कार्यों में सफलता मिलेगी, किसी जरूरतमंद की सहायता करने का अवसर भी मिल सकता है, सो बी नाइस। लकी कलर आपका है समुद्री हरा और नंबर है 12।
1: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
0: What's on your mind and दिल में क्या है बोलो बोलो. Well, आपने बोल दिया messages के जरिए. Big hello to all those who connected है हमारे साथ. RM2 Radio Musty पर it's Nelmani and आप है जना जी. गाना मांग रहे हैं अपनी बेटी रीमा, जेनिता, आशीष, तांशिनी, सिल्विया, यूवी, कृषि, सीव, सरन फैमिली जो फ्लैक रहते हैं. एंड आप है केविन, आज आपके बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है. ओ आप है सिस्टर आंशी एंड आज आपके बेस्ट फ्रेंड केविन का बर्थडे है और आप उसे विश कर रहे हैं हैप्पी बर्थडे. वाकवा से वी हैव विश्वनी धोमन जी एंड आज आपकी सहेली नीला जी का बर्थडे है. बेस्ट विशेज फ्रॉम ऑल फैमिलीज एंड ऑल फ्रेंड्स जो कि इंग्लैंड में है. एंड वी हैव हमारी बड़ी जो हर रोज हमारे साथ कनेक्टेड हो जाते हैं. आप है यालेश के नाम से. हेलो, आप विश कर रहे हैं सभी को हैप्पी फ्राइडे. एंड आप है सुया बिहारी जी और आप सबको विश कर रहे हैं हैप्पी फ्राइडे और सारे स्टूडेंट्स को जो सेलिब्रेट कर रहे हैं हॉलीडे को. एंड आपके चार ग्रैंड चिल्ड्रन रिद्धि, सोनाक्षी, अवनी, लवली वंश के लिए आप गाना डेडिकेट करना चाहते हैं तो हो जाए आप सभी के नाम गाना. ऐसे ही स्टे कनेक्टेड टू आरएम2 रेडियो मस्ती.
2: रेडियो मस्ती सुनते रहो.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Good morning. सुबह के 10 बजे है. चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. आपसे विधिमान नमस्कार.
6: नमस्कार नीलमणि, सभी को नमस्कार. क्यूपिक में कल सेंट जोसेफ अलोरेटो कॉलेज के सैकड़ों छात्रों ने स्कूल में हुए बुलिंग के खिलाफ मार्च निकाला. ये विरोध प्रदर्शन एक महीने पहले कक्षा में हुई उस घटना के बाद हो रहा है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. आरोपी छात्र को निलंबित कर दिया गया है और पीड़ित को मनोवैज्ञानिक सहायता दी जा रही है. व्यापारी संजीव रामदानी पर SBM में 470 मिलियन रुपए की क्रेडिट लाइन जारी कराने में कथित आपराधिक साजिश का मामला चल रहा है. इस संबंध में उन्होंने विदेश यात्रा के लिए जमानत की शर्तों में ढील देने की याचिका दायर की थी. पोटली जिला अदालत में बहस पूरी हो चुकी है और मजिस्ट्रेट दोहयाहू 25 अगस्त को अपना निर्णय सुनाएंगी. आप्रवासी घाट ने यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने की अपनी 20वीं वर्षगांठ मनाई.

0: अवसर पर अप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के निदेशक वेद प्रकाश बंधन ने बताया कि ये दर्जा मिलने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मॉरिशस की प्रतिष्ठा बढ़ी है। साथ ही संस्थान MBC के सहयोग से 20 शतायु व्यक्तियों के अनुभवों को मौखिक इतिहास परियोजना के तहत रिकॉर्ड करेगा। और विदेश में मध्य टेक्सास में आई बाढ़ में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई है। ये वही क्षेत्र है जहां पिछली गर्मियों में अचानक आई बाढ़ के कारण 130 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। सैन एंटोनियो में राष्ट्रीय मौसम सेवा ने बताया कि कई दिनों तक हुई मूसलाधार बारिश के बाद ग्वादलूप रिवर से बड़ी और घातक बाढ़ आने की आशंका है, जिससे पूरे क्षेत्र में भारी तबाही मच सकती है। पिछले साल की अचानक आई बाढ़ की शुरुआत भी इसी नदी से हुई थी। गुरुवार की सुबह आपातकालीन अधिकारियों ने क्षेत्र के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। SSO रोड ईलो कॉन्स्टेबल में 74 साल की 74 years old की श्रीमती राजिनी रामलोल, जो सांता नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे उनके बेटे शिव नारायण रामलोल के घर SSO रोड ईलो कॉन्स्टेबल से उठाकर कॉन्स्टेबल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। नंबर 6 एवेन्यू डी कॉन्काट्रोबोन में 82 साल के 82 years old के श्री श्री राम सोनिया, जो श्रीराम नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनकी पत्नी श्रीमती सोनिया साना के घर नंबर 6 एवेन्यू डी कॉन्काट्रोबोन से उठाकर अलीब्रियन कास्टेल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। टेम्पल रोड बेलवी मोरेल में 56 साल के 56 years old के श्री राजेश महावीर सिंह, जो माकलून नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 3 बजे उनके घर टेम्पल रोड बेलवी मोरेल से उठाकर लावांचुआ की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: On NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: 10:08 मिनट हुए हैं और आप वापस जुड़ गए हैं जी RM2 रेडियो मस्ती विद नलमणि, जहां पर हो रहा है यो मस्ती मॉर्निंग शो। वैसे आपको पता है आज है वर्ल्ड इमोजी डे। एंड इमोजी सिर्फ छोटे छोटे आइकन्स नहीं है, बल्कि आज के ज़माने की एक नई भाषा बन चुके हैं। एक हैप्पी वाला इमोजी खुशी दिखा देता है, एक हॉट इमोजी प्यार, और एक लाफिंग इमोजी किसी भी बात को और भी मज़ेदार बना देता है। सो आज वर्ल्ड इमोजी डे पर सोचिए कि अगर आपका आज का मूड सिर्फ एक इमोजी से बताना होता तो वो कौन सा होता, हमें ज़रूर बताइएगा। 5499-1294 पर मैसेजेस की लाइन एनी टाइम ओपन है खास आपके लिए। सो डोंट हेजिटेट टू सेंड अस योर मैसेजेस एंड ऐसे ही कीप वाइबिंग टू योर RM2 रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: हमारे यारों के लिए था कॉकटेल का गाना नया वर्षन. वैसे आप में से कितनों ने देख लिया मूवी? इन्हें रिव्यूज आपको कैसा लगा? पौरवान से ज्यादा बेहतर था या नहीं? मैसेजेस के जरिए डू शेयर विद अस. वीना जी जुड़ गई है और वो मांग रही है योद्धा मूवी से गाना अपने लवली हबी के लिए. साथ में उन्हें वो को आज भी विश कर रही है तो ढूंढ के चिल्लाएंगे जरूर. रवि के लिए विशाल मिश्रा की आवाज में खोज जाते हैं और म्यूजिकली दिल को भी हैप्पी करते हैं.
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.

0: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
1: कपड़े महंगे होना जरूरी नहीं, उनका फिट अच्छा होना चाहिए। जो आउटफिट आपके बॉडी टाइप पर सूट करें और जिसमें आप कॉन्फिडेंट महसूस करें, वही है आपका बेस्ट फैशन स्टेटमेंट। और हाँ, सिंपल घड़ी या फिर क्लासी एक्सेसरीज भी आपके पूरे लुक को और भी एलिगेंट बना सकती हैं। तो याद रखिए कि फैशन ट्रेंड के साथ बदलता है, लेकिन कॉन्फिडेंस जो है वो कभी भी आउट ऑफ स्टाइल नहीं होता।
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स।
2: RM2
3: Radio Musty.
2: Feel the Musty.

0: 92 रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2 Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: हम किस गली जा रहे हैं? हम शो की सही गली में ही जा रहे हैं। आजकल लोग ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं कि ज्यादा फास्ट फूड कंज्यूम नहीं करना है, पर फिर भी जब भी छोटी सी भूख लगे, दिन भर की भूख को चिप्स और चॉकलेट से नहीं बल्कि फ्रूट्स, मखाना या फिर मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स से शांत कीजिए। छोटी छोटी हेल्थी चॉइसेस आपकी एनर्जी और हेल्थ दोनों को बेहतर बना सकती हैं। सो मेक द गुड चॉइस एंड साथ में कीप हाइड्रेटिंग योरसेल्फ, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। एक ही पल का जीना है, उसे हेल्दीली जीते हैं साथ में आपके आरएम2 रेडियो मस्ती पर।
0: वेलकम टू आरएम2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musty.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musty.
1: Radio Musty.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the musty.
3: Din ki 11 baje hai. चलिए सुनते संक्षिप्त समाचार एक बार फिर आपसे विधिमान नमस्कार
4: नमस्कार नीलमणि सभी सुनने वालों को नमस्कार मॉरिशस और अमेरिका ने सैन्य अभियानों और अभ्यास के दौरान लॉजिस्टिक सपोर्ट साझा करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं इस समझौते को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई इंजंक्शन याचिका को जज ने खारिज कर दिया है जिसके बाद गृह सचिव दोहिन फोंग वेनपोन ने इसे मॉरिशस के लिए बेहद फायदेमंद बताया है व्यापारी संजीव रामदानी पर SBM में 470 मिलियन रुपए की क्रेडिट लाइन जारी कराने में कथित आपराधिक साजिश का मामला चल रहा है इस संबंध में उन्होंने विदेश यात्रा के लिए जमानत की शर्तों में ढील देने की याचिका दायर की है पोटी जिला अदालत में बहस पूरी हो चुकी है और 25 अगस्त को मजिस्ट्रेट अपना निर्णय सुनाएंगी आप्रवासी घाट ने यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने की अपनी 20वीं वर्षगांठ मनाई अवसर पर आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के निदेशक ने बताया कि ये दर्जा मिलने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मॉरिशस की प्रतिष्ठा बढ़ी है साथ ही संस्थान MBC के सहयोग से 20 शतायु व्यक्तियों के अनुभवों को मौखिक इतिहास परियोजना के तहत रिकॉर्ड करेगा और विदेश में यूके के कुछ हिस्सों में

0: में अबलू की स्थिति को चलते हुए लगभग दो सप्ताह होने वाले हैं। दक्षिणी इंग्लैंड के स्थानों पर लगातार 13 दिनों तक हीट वेव के मानदंड से ऊपर तापमान दर्ज किया गया है। गुरुवार को मेरीफील्ड में तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के साथ यूके ने लगातार 12 दिनों तक 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक का तापमान देखा है, जो 2006 के बाद से इस तरह का सबसे लंबा दौर है। इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। रारोद पेंदिघोष में 61 साल के 61 ईयर्स ओल्ड के श्री सूरज शिवशंकर, जो सत्यम नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 3 बजे उनके भाई अनिल शिवशंकर के घर रारोद पेंदिघोष से उठाकर पीतों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है।
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: जी हाँ, मस्ती मॉर्निंग के तीसरे और आखिरी आवर में फिर से वेलकम है आपका। आज इमोजी डे के साथ साथ हम मना रहे हैं इंटरनेशनल फगन डे। आप सोच रहे होंगे कि फगन क्या है यार। फगन एक खूबसूरत शब्द है जिसका मतलब है किसी दूसरे की सफलता देखकर दिल से खुश होना बिना किसी जलन या फिर ईर्ष्या के। आज किसी की तारीफ कीजिए, उनके अचीवमेंट सेलिब्रेट कीजिए और दिल खोल कर उनके लिए खुश हो जाए, क्योंकि दूसरों की खुशी में खुश होना भी एक बहुत बड़ी खूबी है। तो पॉजिटिविटी को फैलाते हैं, वापस चलते हैं मॉर्निंग को मस्त बनाने के लिए विद अनदर सॉन्ग आपके ही आरएमजू रेडियो मस्ती पर।
3: कभी स्पाइसी कभी स्वीट, म्यूजिक लवर्स की हार्ट बीट,
4: टक टक बॉलीवुड।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: हर कदम आपके साथ ही चलेंगे आर एम टू वीडियो मस्ती पर. रोनी द बेस्ट सॉन्ग्स आपके लिए लेकर आ रही है नलमनी. साथ में एक टिप भी है, अगर मुमकिन हो तो हर 2-3 घंटे में सिर्फ 5 मिनट के लिए मोबाइल स्क्रीन से नजर हटाइए. यस, बस 5 मिनट के लिए स्क्रीन टाइम ऑफ. इससे आंखों को आराम मिलेगा, स्ट्रेस कम होगा और कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा. तो छोटे से ब्रेक के बाद वी विल बी बैक विद द गुड म्यूजिक. आप यही पर कनेक्टेड रहना आर एम टू वीडियो मस्ती पर.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगा, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
3: Cet hiver, du 10 au 23 juillet, retrouvez chez Winners tout ce qu'il vous faut pour profiter de la saison à petit prix. Parce que rien ne vaut de bons repas et de précieux moments en famille pour vous réchauffer pendant l'hiver. Tout vous attend chez Winners. Les 250 g de café granulé Winners à 139,95 € et les 3 kg de lessive en poudre machine ou main Détos à 149,95 €. Qualité, variété et petit prix, tout est réuni sous un même toit chez Winners. Cet hiver, faites le bon choix.
4: On est tous Winners.
0: RM2
1: Radio Mustache.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: वैसे जरूरी से याद आया कि जरूरी कहना तो सुनना पड़ता है अगर आपके लिए वो टिप्स लाभदायक हो। यस, अनदर टिप है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो है स्टेइंग पॉजिटिव। हर सुबह खुद से एक पॉजिटिव वाइब जरूर कहिएगा, जैसे कि आज का दिन मेरे लिए नए मौके लेकर आएगा। पॉजिटिव सोच से दिन आफ्टरनून से बेहतर गुजरता है और मन भी हल्का रहता है। तो हैप्पी पॉजिटिव वाली वाइब के साथ ही आगे बढ़ते हैं अनदर सॉन्ग की तरफ। इस बार श्रेया घोषाल की आवाज में आपके लिए खास।

0: कभी सोचा है
1: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका

0: स्टाइल
1: और आपका चांस,
0: डोंट मिस इट।
2: कभी स्पाइसी कभी स्वीट, म्यूजिक लवर्स की हार्ट बीट।
3: टक टक बॉलीवुड।

And yes, it's your M2 Radio Masti साथ आपका हमारा extended होगा next hour में. Yes, फिर से वापस आने वाली हूँ मैं निलमणि आपके ही retro rhythm में, जहाँ पर retro hits के साथ आपको करेंगे entertain. So see you.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: दिन के 12 बजे हैं। चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार एक बार फिर आपसे विधिमान नमस्कार।
6: नमस्कार निर्मणि, सभी सुनने वालों को नमस्कार। मॉरिशस टेलीकॉम की रिब्रांडिंग प्रक्रिया चल रही है, अब से माइटी ब्रांड की मुख्य पहचान होगी और यही ब्रांड नाम आपके बिल्स और टेलीफोन ऑपरेटर की सभी शाखाओं पर दिखाई देगा। पाए में ऑल माइटी समिट के अवसर पर मॉरिशस टेलीकॉम के CEO विमल गंगादी ने डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित एक बड़े रणनीतिक बदलाव की नींव रखी। मॉरिशस और अमरीका में ने सैन्य अभियानों और अभ्यास के दौरान लॉजिस्टिक सपोर्ट साझा करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई इंजंक्शन याचिका को जज ने खारिज कर दिया है, जिसके बाद गृह सचिव ने इसे मॉरिशस के लिए बेहद फायदेमंद बताया है। बिजनेसमैन संजीव रामदानी पर SBM में 470 मिलियन रुपए की क्रेडिट लाइन जारी कराने में कथित आपराधिक साजिश का मामला चल रहा है। इस संबंध में उन्होंने विदेश यात्रा के लिए जमानत की शर्तों में ढील देने की याचिका दायर की है। पोटली जिला अदालत में बहस पूरी हो चुकी है और 25 अगस्त को मैजिस्ट्रेट अपना निर्णय सुनाएंगी। आप्रवासी घाट ने यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने की अपनी 20वीं सालगिरह मनाई। इस अवसर पर आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के निदेशक वेद प्रकाश बंधन ने बताया कि ये दर्जा मिलने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मॉरिशस की प्रतिष्ठा बढ़ी है। साथ ही संस्थान MBC के सहयोग से 20 शतायु व्यक्तियों के अनुभवों को मौखिक इतिहास पर योजना के तहत रिकॉर्ड करेगा। और विदेश में पूर्वी युगांडा में स्कूली छात्रों को ले जा रही एक बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से कम 20 स्कूली बच्चों और एक वयस्क की मौत हो गई है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार ये हाल के वर्षों में बच्चों से जुड़ी देश की सबसे घातक सड़क दुर्घटनाओं में से एक है। इस दुर्घटना में स्कूल के कर्मचारियों सहित दर्जनों अन्य लोग घायल हो गए हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ ही 12 बजे के संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में शोक समाचार। SSR रोड इलो कॉन्डियाबल में 74 साल की 74 years old की श्रीमती रजनी रामलोल, जो सांता नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुपहर 3 बजे उनके बेटे

0: हट्टी सीयू नारायण रामलोल के घर एस एस ओ रोड ईलो कौंसियाबल से उठाकर वहीं की शमशान भूमि दी जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। नंबर 6 एवेन्यू दे कॉन्काट्रोबोन में 82 साल के 82 years old के श्री श्री राम सोनिया जो श्री राम नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2 बजे उनकी पत्नी श्रीमती सोनिया सोना के घर नंबर 6 एवेन्यू दे कॉन्काट्रोबोन से उठाकर आलिब्रियों कास्तेल की शमशान भूमि दी जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। रॉयल रोड प्लेन दे रोश में 61 साल के 61 years old के श्री सूरज शिवशंकर जो सत्यम नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर 3 बजे उनके भाई अनिल शिवशंकर के घर रॉयल रोड प्लेन दे रोश से उठाकर पीतों की शमशान भूमि दी जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। ला शापेल मोहा पेटिट रिवियर में 67 साल के 67 years old के श्री जयराम लक्सिमो जो जय लाबुची कोंकोड नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर 3 बजे ला शापेल मोहा पेटिट रिवियर से उठाकर सेमोते मोरोश की शमशान भूमि दी जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। B03 NHDC ला क्वाजी वाली दे प्रेत में 67 साल के 67 years old के जनाब मूसा अली बिकन जो मूसा नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज दिन के 2:30 बजे उनके घर B03 NHDC ला क्वाजी वाली दे प्रेत से उठाकर रिश्ते का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2:30। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Retro Rhythm.
3: RM2, Radio Musty.

0: रेट्रो रिदम।
1: हाय, मेहरबानी तो हम पे हुई है जो इन खूबसूरत खजानों के पास एक्सेस अभी भी है। अरे, मैं गानों की बात कर रही थी, वो असली खजाने से कम थोड़ी है। बॉलीवुड के गोल्डन एरा में राजेश खन्ना की अदाएं, अमिताभ बच्चन का एटीट्यूड, ऋषि कपूर का रोमांस और श्रीदेवी जी की चमक के साथ हाय लंबा सफर रहा। आज भी मेमोरीज एंग्रेव्ड है दिमाग में। तो आगे बढ़ते हैं और एक हिट रेट्रो सॉन्ग के साथ आशा जी की आवाज़ में।

मारा घोड़ी निकली आगे, कर गई घोड़े को वो जाते जाते आंख मटक्का, देख छलांगे घोड़ी की मैं रह गया हक्का बक्का। वाड़ी पांच सौ की घोड़ी मार गई, पांच सौ की घोड़ी मार गई, 1000 का

0: रेट्रो की दुनिया में पूरी तरह से हम इमर्स्ड हो गए हैं। इन 80s और 90s की बात हो और श्रीदेवी जी का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। मिस्ट इंडिया, चांदनी, लम्हे, हर मूवी में उन्होंने अपनी अलग पहचान छोड़ी है। वैसे आप हमें बताइए कि आपको उनका कौन सा लुक सबसे ज्यादा पसंद है। 5499-1294 पर आपके मैसेजेस का इंतजार है, डेडिकेशंस भी हम चलाने वाले हैं, आपके फेवरेट गाने, तो हमें मैसेज करना ना भूले। Do not hesitate and stay tuned with your RM2 Radio Masti.
1: Retro Rhythm.
2: RM2 Radio Masti.

0: Retro Rhythm.
1: And yes, it's your Retro Rhythm, and आपके लिए best of the best है retro गाने के साथ आ रहे हैं every time. And अभी it's time to read आपके जो प्यार प्यार messages आए हैं. We have a Nouvelle France से वीना जी जो गाना मांग रहे हैं अपने प्यारे husband के लिए. And we have Lalita जी जो connected है और वो wish कर रहे हैं happy school holidays अपने सारे students को जो कि पोर्ट लुइस स्कूल में पढ़ते हैं. एंड शातो विनागर से वी हैव ज्योति जी जो नेक्स्ट गाना मांग रही है आशनी रेखा सुरेखा मैडम फैमिली के लिए. एंड जना जी भी साथ दे रही है वो गाना मांग रही है प्यारा सा अपनी बेटियों के लिए जनेता शेषतांशिनी सिल्विया युविक ऋषि सिरन फैमिली के लिए. विश्वानी धोमन जी भी साथ दे रही है वाकवा से. और कश्मीर की कली इशारों इशारों में दिल लेने वाली ये गीत अपनी बहन के लिए इंदिरा के लिए मांग रही है. शारदा के लिए भी सहेली नीला प्रतिभा शोभा गीता के लिए. एंड वी ऑल्सो हैव आप है फिया जी आकाशदीप मूवी का गाना हो जाए प्लीज. आप ट्रियो लेके रहने वाले हैं बंधु फैमिली के लिए आप चलाना चाहते हैं गाना. एंड कुंगुमा से वी हैव बिहारी जी एंड वो

अपने स्टूडेंट्स को भी विश कर रहे हैं हैप्पी हॉलीडेज और अपने चार ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए रिद्धि सोनाक्षी अवनी एंड लवली वंश के लिए गाना मांग रहे हैं। अनुषा जी भी कनेक्टेड है, साथ दे रही है, तो ऐसे ही यू स्टे कनेक्टेड टू RM2 रेडियो मस्ती। आपके जो गीत है हम ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे और आपके लिए चलाएंगे जरूर।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
3: 103.5,
2: East, West,
3: 96.4,
2: Center,
3: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: Good afternoon, it's 1 p.m. सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे सुमेरा नमस्कार
5: नमस्कार रादा मुर्शिद टेलीकॉम की रीब्रांडिंग की जा रही है अब से आपके बिल पर माइटी होगा आज ऑल माइटी समिट का दूसरा दिन है मुर्शिद टेलीकॉम के सीईओ विमल गंगादी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटलाइजेशन के आधार पर एक नई रणनीति की बुनियाद का ऐलान किया है मागाजीवा रिसोर्ट्स के सीईओ संजीव रामदानी अपने होटल के कारोबार और गतिविधियों के सिलसिले में विदेश जाना चाहते हैं वो दुबई इटली इंग्लैंड और मोरक्को जाने की इच्छा रखते हैं लेकिन फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन एतराज जता रहा है कल पोटली अदालत में संजीव रामदानी ने जमानत पर अपनी रिहाई की शर्तों में बदलाव लाने की मांग की इस मामले में अगले 25 अगस्त को मैजिस्ट्रेट शाहीन दोहियाऊ अपना फैसला सुनाएंगी लिखने या पढ़ने से पहले एक बच्चा पहले बात करता है वो कुछ आवाज़ें करता है कुछ अल्फाज बोलता है और हाथों से संचार करता है ये हर बच्चे के लिए एक अहम चरण है जो अक्सर मुश्किलों से भरा रहता है दुनिया के बाकी देशों की तरह मॉरीशस में भी बच्चे को बात करने में परेशानियां हो रही हैं वो देर से संचार करने लग रहा है वजहें अनेक हैं उनमें से एक टेक्नोलॉजी है बच्चे को बहुत जल्द मोबाइल फ़ोन या टैबलेट दिया जा रहा है जो उनके विकास में मुश्किलें पैदा कर रहा है विदेश में पूरी भारत में जगन्नाथ रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु भाग ले रहे हैं वहां जोरदार बारिश हो रही है जिससे दो लोग जान से भी गए हैं 100 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं खराब मौसम के बावजूद श्री जगन्नाथ श्री बालाभद्र और देवी सुभद्रा के रथ गुंडीचा मंदिर तक ले जाए जा रहे हैं और युगांडा के पूर्व में एक शैक्षिक यात्रा के दौरान एक बस दुर्घटना हुई कम से कम 20 छात्रों की मौत हुई है दूसरे दर्जन बच्चे जख्मी बताए जाते हैं तो अभी के लिए बस इतना ही शोक समाचार सुनिए B03 NHTC La Croisée Vallée des Prêtres में 67 साल के 67 years old जनाब मूसा अली बिकन जनाब मूसा अली बिकन जो मूसा के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे इंतकाल कर गए हैं जनाजा आज ढाई बजे इनके घर B03 NHDC La Croisée Vallée des Prêtres से उठाकर दफनाने के लिए रिश्ते का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा फ्यूनरल टुडे एट 2:30 PM शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है
6: Your news on NBC Play. NBC Play

0: MBCRadio.tv. MBCRadio.tv. Retro Rhythm.
1: RM2. Radio Musti.

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें,

0: Retro Rhythm.
1: रेट्रो रिदम के आखिरी आओ में वेलकम बैक. फ्राइडे का दिन है, फंडे सुबह से ऑनगोइंग है और वाइब्स फिर से वापस लेकर आ रहे हैं. वो क्या है ना कि लंच के बाद स्लीपी फील होता है, नैप तो आपने कर लिया होगा, अभी जगाने का टाइम है. तो चलिए वापस रेट्रो की म्यूजिकल दुनिया में, इस बार किशोर कुमार जी की आवाज में.
2: कभी स्पाइसी कभी स्वीट, म्यूजिक लवर्स की हार्ट बीट.
3: टक टक बॉलीवुड.

नाम लिख लिया, बिन पूछे ये काम

0: रेट्रो रिदम। एक बजकर 20 मिनट हुए हैं, अभी के लिए हो जाए आपके लिए रेट्रो पहेली। वो कौन सी चीज है जो नहीं बोलता है, गाता भी नहीं है, लेकिन उसके बिना पुरानी फिल्मों के गाने सुन भी नहीं सकते। वो कौन सी चीज है, वो बोलता नहीं है, गाता भी नहीं है, लेकिन उसके बिना पुरानी फिल्मों के गाने सुन भी नहीं सकते। तो वो कौन सी चीज है, सोचिए और हमें बताइए 5499124 पर।
1: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेट्रो रिदम।
1: वैसे रेट्रो पहेली बुझाने सामने कोई नहीं आया, इतना कठिन था सवाल। वो क्या चीज है जो बोलता नहीं है, गाता भी नहीं है, लेकिन उसके बिना पुराने फिल्मों के गाने भी नहीं सुन सकती? जवाब कैसेट है यार। अरे अभी मैसेज भेजा आपने, नॉट फेयर, जवाब दे दिया था मैंने। एनीवेज, रेट्रो वाइब्स पूरी तरह से ऑनगोइंग है आपके लिए। आप बस वाइब को बरकरार रखिए अपने डांस स्टेप्स के साथ, जहां से भी आप हमें सुन रहे हो। कीप स्माइलिंग विद योर आरएमजू वीडियो मस्ती।
2: कभी स्पाइसी कभी स्वीट, म्यूजिक लवर्स की हार्ट बीट।
3: टक टक बॉलीवुड।

1:40 हुए हैं उषा जी की आवाज से टेम्पो को और बढ़ाते हैं आपके रेट्रो रिदम पर। यस, यही बीट है, यही टेम्पो है।

0: रेट्रो रिदम।
1: गाने में किशोर जी बोलती है, बीवी मायके चली गई, अब मैं भी चलती हूँ। होप यू हैड अ ग्रेट आफ्टरनून। वाइब्स को और मजबूत बनाने के लिए बॉम्बे टॉकीज़ शो कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू। स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ ग्रेट फ्राइडे व्हाइल लिसनिंग टू योर आरएमजू रेडियो मस्ती।

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: दोपहर के 2 बजे हैं. जी सुनते हैं संक्षिप्त समाचार एक बार फिर आपसे सुमेरा नमस्कार.
6: नमस्कार. आदाब. लिखने या पढ़ने से पहले एक बच्चा पहले बात करता है, वो कुछ आवाजें करता है, कुछ अल्फाज बोलता है और हाथों से संचार भी करता है. ये हर बच्चे के लिए एक अहम चरण होता है जो अक्सर मुश्किलों से भरा रहता है. दुनिया के बाकी देशों की तरह मॉरिशस में भी बच्चे को बात करने में परेशानियां हो रही हैं. वो देर से संचार करने लगते हैं. वजहें अनेक हैं, उनमें से एक टेक्नोलॉजी है. बच्चों को बहुत जल्द मोबाइल फ़ोन या टैबलेट दिया जा रहा है जो उनके विकास में मुश्किलें पैदा कर रहे हैं. महाजीवा रिजॉर्ट्स के सीईओ संजीव रामदानी अपने होटल के कारोबार और गतिविधियों के सिलसिले में विदेश जाना चाहते हैं. वो दुबई, इटली, इंग्लैंड और मोरक्को जाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन एतराज जता रहा है. कल पोटली अदालत में संजीव रामदानी ने जमानत पर अपनी रिहाई की शर्तों में बदलाव की मांग की. इस मामले में अगले 25 अगस्त को मैजिस्ट्रेट शाहीन दोहियाऊ अपना फैसला सुनाएंगी. मॉरिशस टेलीकॉम की रिब्रांडिंग की जा रही है. अब से आपके बिल पर माइटी होगा. आज ऑल माइटी समिट का दूसरा दिन है. मॉरिशस टेलीकॉम के सीईओ विमल गंगादी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटलाइजेशन के आधार पर एक नई रणनीति की बुनियाद का ऐलान किया है. विदेश में युगांडा के पूर्व में एक शैक्षिक यात्रा के दौरान एक बस दुर्घटना हुई और कम अज कम 20 छात्रों की मौत हुई. दूसरे दर्जन बच्चे जख्मी बताए जाते हैं. पूरी भारत में जगन्नाथ रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु भाग ले रहे हैं. वहां जोरदार बारिश हो रही है जिससे 2 लोग जान से गए हैं, 100 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं. खराब मौसम के बावजूद श्री जगन्नाथ, श्री बाला भद्र और देवी सुभद्रा के रथ गुंडीचा मंदिर तक ले जाए जा रहे हैं. तो अभी के लिए बस इतना ही. इजाजत दीजिए. नमस्कार और आदाब.
0: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
1: More music in the mix.
0: Aaj Azadi hai.
7: Bombay Talkies.
0: Radio Musti.
4: Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून. यस, आज की ये दोपहर हम आपके लिए बनाने वाले हैं खास और लेकर आए हैं आपके लिए बॉम्बे टॉकीज. मैं हूं परी आपके साथ और अभी से लेकर दो घंटों तक हम सेलिब्रेट करने वाले हैं एक ऐसी एक्ट्रेस जिनकी स्माइल मिलियन डॉलर है, जिनकी एलिगेंस टाइमलेस है और जिनके डांस मूव सबको झूमने पर मजबूर करते हैं. यस, इट्स कैटरीना कैफ स्पेशल राइट हियर ऑन आरएम2 रेडियो मस्ती. साथ रहेगा आपका और मेरा टिल 4 पीएम.

0: Bombay Talkies.
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: सो वेल फ्रेंड्स, 16th जुलाई 1983 को हांगकांग में इनका जन्म हुआ. कैटरीना कैफ ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार होंगी. लैंग्वेज बैरियर था और नए देश का चैलेंज भी था, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी. हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ उन्होंने एक नया मुकाम हासिल किया, और आज भी जब कैटरीना कैफ का नाम आता है तो लगता है कि बस उनका नाम ही काफ़ी है.

0: Bombay Talkies.
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: तो वेल दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कटरीना कैफ के बारे में और बचपन से ही उनका जो चाइल्डहुड है वो काफ़ी यूनिक रहा। उन्होंने सिर्फ एक कंट्री में नहीं बल्कि हांगकांग, चाइना, जापान, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और लंदन जैसे देशों में अपना बचपन गुजारा और शायद इसी वजह से उनकी पर्सनालिटी इतनी ग्रेसफुल और इतनी कॉन्फिडेंट नजर आती है। बॉलीवुड में एंट्री हुई उनकी बूम फिल्म के साथ और बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन कटरीना कैफ ने हिम्मत नहीं हारी और शायद यही क्वालिटी उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। कहते हैं ना दोस्तों, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो क्रिटिसिज्म को एक्सक्यूज नहीं मोटिवेशन बना देते हैं, और ऐसा ही कुछ किया कटरीना कैफ ने।

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: सो वेल फ्रेंड्स, बता दें आपको कि एक वक्त ऐसा भी था जब कैटरीना को हिंदी बोलने में काफ़ी दिक्कत होती थी। कई लोगों ने कहा कि वो बॉलीवुड में ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी, लेकिन उन्होंने लैंग्वेज सीखी, एक्टिंग पर काम किया और हर फिल्म के साथ खुद को बेटर बनाया। और फिर आई वो फिल्म जिसने सब कुछ बदल दिया। यस, हम बात कर रहे हैं फिल्म नमस्ते लंदन की, जहां पर अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की केमिस्ट्री को इतना पसंद किया गया कि ऑडियंस ने उन्हें ब्लॉकबस्टर जोड़ी बना दिया। साथ ही आपको बता दें दैट कैटरीना और अक्षय कुमार ने एक साथ नमस्ते लंदन, वेलकम, सिंग इज किंग, दे दनादन, तीस मार खान और सूर्यवंशी जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं।

0: 2 रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2 Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं दैट कैटरीना कैफ को फोटोग्राफी का भी काफी शौक है। फ्री टाइम मिलते ही वो ट्रैवलिंग और नेचर एंजॉय करना पसंद करती है। और एक और बात जो उनके कोस्टार्स हमेशा कहते हैं दैट कैटरीना इज वन ऑफ द मोस्ट डिसिप्लिन्ड एक्ट्रेसेस ऑफ बॉलीवुड। टाइम पर आना, पूरी प्रिपरेशन के साथ शूट पर पहुंचना और हर सीन में अपना 100% देना, यही उनकी पहचान है। तो चलिए, अभी के लिए तो हम बात करने वाले हैं उनकी कुछ और पर्सनल प्रोफेशनल डिटेल्स के बारे में। कहीं मत जाइए, अभी के लिए हो जाए एक और ब्यूटीफुल ट्रैक आप सभी के लिए।

0: Mikey's Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तो वेल फ्रेंड्स, थोड़ी ही देर में हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर, उसके बाद लौट कर आएंगे, क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारी ब्यूटीफुल कैटरीना कैफ को, जिन्होंने कल सेलिब्रेट किया है उनका बर्थडे. सो कहीं मत जाइए, स्टे कनेक्टेड आर एन टू रेडियो मस्ती के साथ.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik, gel air freshener. Freshness, anytime, anywhere.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: Check your time, it's exactly 3 p.m. I sunte samachar Sumaira Akbar Ali ke saath. Namaskar aur adab.
6: नमस्कार रादाब. मुर्शस में अमेरिकी दूतावास आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है. बागातर में मुख्य ढांचे स्थापित किए जा चुके हैं. इस परियोजना की लागत $300 मिलियन यानी 14 बिलियन रुपए की है. गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और अमेरिका की डेप्यूटी सब सेक्रेटरी सारा ट्राउटमैन ने आज सुबह स्थल का दौरा किया ताकि कार्यों के विकास का जायजा लिया जा सके. उन्होंने मुर्शस और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने की दोबारा पुष्टि की है. एनवायरमेंट एंड लैंड यूज अपील ट्राइब्यूनल के सामने गैर सरकारी संगठन एकोसुड द्वारा ले बुशों डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की स्मार्ट सिटी परियोजना के परमिट के खिलाफ मुकदमा जारी है. 15 जुलाई को स्थलों का दौरा भी किया गया ताकि इस परियोजना की असल चुनौतियां जाना जा सके. इस 17 जुलाई को ले बुशों ग्राम परिषद के अध्यक्ष कैदरस वालाइडू की सुनवाई रही. मगाजीवा रिजॉर्ट्स के सीईओ संजीव रामदानी अपने होटल के कारोबार और गतिविधियों के सिलसिले में विदेश जाना चाहते हैं. वो दुबई, इटली, इंग्लैंड और मोरक्को जाने की इच्छा रखते हैं लेकिन फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन एतराज जता रहा है. कल पूर्वी अदालत में संजीव रामदानी ने जमानत पर अपनी रिहाई की शर्तों में बदलाव की मांग की. इस मामले में अगले 25 अगस्त को मैजिस्ट्रेट दोहयाऊ अपना फैसला सुनाएंगी. विदेश में युगांडा के पूर्व में एक शैक्षिक यात्रा के दौरान एक बस दुर्घटना हुई. कम से कम 20 छात्रों की मौत हुई, दूसरे दर्जन बच्चे जख्मी हुए हैं. और लगातार छठी रात के दौरान अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमले किए हैं. अब नए हॉर्मूज पर नियंत्रण पाने के लिए जंग की दोबारा शुरुआत हुई है. अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने कहा कि हमलों ने ईरान की सैन्य ताकतों को कमजोर किया है. तो अभी के लिए बस इतना ही. शोक समाचार सुनिए. क्लियर फोन नंबर एक वाकुआ में 87 साल की 87 years old श्रीमती गौरी भगवान पैदाइशी नाम जीता जो श्रीमती के नाम से ज्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है. अर्थी कल एक बजे इनके बेटे राजन भगवान के घर क्लियर फोन नंबर एक वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM. सीवेन चिनियर रोड गुडलैंड में 82 साल की 82 years old कुमारी फुलमत मुकुन जो बिदवंती के नाम से ज्यादा जानी जाती थीं की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी कल सुबह साढ़े दस बजे इनके घर सीवेन चिनियर रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआ

0: ऊश की शमशान भूमि ली जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 10:30 AM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: More music in the mix.
3: Aaj Azadi hai.
4: Bombay Talkies.
5: Radio Musti.
6: Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: वेल फ्रेंड्स, आपका हम वार्म वेलकम करते हैं एक बार फिर. आपके लिए हम कुछ खास सॉन्ग्स लेकर आए हैं. कटरीना कैफ के बारे में बात कर रहे हैं तो उन्हीं के कुछ प्यारे गाने. मैं हूं परी आपके साथ टिल 4 PM राइट हियर ऑन RM2 रेडियो मस्ती.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तो वेल फ्रेंड्स, कैटरीना कैफ के बारे में हम बात करते हैं और उनकी सिंपलिसिटी, चाहे वो रेड कार्पेट हो या फिर कोई इंटरव्यू, उनके काम नेचर और ग्रेसफुल पर्सनालिटी को हमेशा ही फैंस पसंद करते हैं और स्पेशली उनकी जो सिंपलिसिटी है वो लोगों का दिल जीत लेती है। जब डांस की बात आती है तो कैटरीना का नाम टॉप परफॉर्मेंस में ज़रूर आता है। अगला गाना उनके करियर का सबसे आइकॉनिक डांस नंबर है और ये गाना तो शायद आपको याद ही होगा। वेल, इट्स टाइम फॉर शीला की जवानी एंड ये गाना All the fans of Katrina Kaif.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: वेल फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कटरीना कैफ के बारे में बात कर रहे हैं और ये तो हम जानते हैं कि काफी फिल्मों में वो नजर आई, बीट, वेलकम, रेस, अजब प्रेम की गजब कहानी, न्यूयॉर्क, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक था टाइगर, धूम 3, बैंग बैंग, टाइगर जिंदा है, सूर्यवंशी या फिर मेरी क्रिसमस, हर फिल्म में उन्होंने एक नए अंदाज के साथ खुद को प्रेजेंट किया और हर एक टाइम उन्होंने अपने

0: Oldies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: चलिए दोस्तों, अब कुछ पर्सनल डिटेल्स की ओर हम बढ़ते हैं। ये तो हम जानते हैं कि कुछ लव स्टोरीज धीरे धीरे दिल में जगह बना लेती है, और ऐसी ही एक लव स्टोरी है कैटरीना कैफ और विकी कौशल की, जहां पर विकी तो उनके फैन हुआ करते थे और एक दिन वो भी आया जहां पर कैटरीना उनकी वाइफ बन गई। सो इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इस गाने के बाद।

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तो वेल फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं हम कैटरीना कैफ और विकी कौशल के रिश्ते के बारे में. सो दोनों ने अपनी रिलेशनशिप को काफ़ी प्राइवेट रखा. जब तक शादी की तस्वीरें सामने नहीं आई, फैंस ने उन पर खूब प्यार बरसाया. और ये तो है कि लोग जानना चाहते थे कि क्या ये सच में पॉसिबल है कि एक फ़ैन अपनी फेवरेट एक्ट्रेस के साथ शादी कर ले. लेकिन सच में ऐसा ही कुछ हुआ विकी कौशल और कैटरीना कैफ के साथ. एंड अब तो हम कह सकते हैं दैट कैटरीना इज़ लिविंग हर बेस्ट मोमेंट, जहाँ पर एक का लवली वाइफ और एक ब्यूटीफुल मदर का किरदार वो निभा रही है. प्राउड मदर ऑफ विहान कौशल, यस, उन्होंने वेलकम किया है अपने बेबी बॉय को और कहती हैं कि बस उनके साथ टाइम बिताना ये उनके बेस्ट मोमेंट्स में से एक है. सभी के लिए एक और गाना लौट कर आएंगे इस गाने के बाद.

0: the setting sun like a pearl upon the ocean. Come and feel me, come on, heal me.
1: Bombay Talkies,
2: Radio Musti.
3: Radio Musti.
4: तो वेल फ्रेंड्स, आज के इस स्पेशल शो में हमने सेलिब्रेट किया कैटरीना कैफ की जर्नी को, उनके अनफॉरगेटेबल सॉन्ग्स, ब्लॉकबस्टर फिल्म्स और उनकी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी को। तो यहाँ पर ऐसी ही बातें और भी होंगी। ऑल यू हैव टू डू इज स्टे कनेक्टेड आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ। अभी के लिए इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय। मुलाकात

0: चकियो टाइम स्टूडियो की घड़ी में एग्जैक्टली 4 बज रहे हैं। ये सुनते हैं समाचार सुमेरा अकबर अली के साथ। नमस्कार और आदाब।
1: नमस्कार और आदाब। आवासीय संकट ना सिर्फ विकासशील देशों के लिए एक मसला है बल्कि ये 21वीं सदी में सबसे बड़ी इंसानी हकीकतों में से एक है। भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में एक उच्च सतह वाली बैठक के दौरान इस मुद्दे पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि छोटे विकासशील टापू देशों के लिए नया अर्बन एजेंडा न सिर्फ एक दस्तावेज है बल्कि जीवन है। मंत्री शकील मोहम्मद ने याद दिलाया कि मॉरिशस ने अपने साहिली इलाकों की हिफाजत करने के लिए एक राष्ट्रीय विकास नीति अपनाई ताकि पर्यावरण का भी संरक्षण हो। उन्होंने दोबारा पुष्टि की कि इस सरकार की प्राथमिकता आवास है। मॉरिशस में अमेरिकी दूतावास आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है। बागातेल में मुख्य ढांचे स्थापित किए जा चुके हैं। इस परियोजना की लागत $300 मिलियन यानी 14 बिलियन रुपए है। गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और अमेरिका की डेप्यूटी सब सेक्रेटरी सारा ट्राउटमैन ने आज सुबह स्थल का दौरा किया ताकि कार्यों के विकास का जायजा लिया जा सके। उन्होंने मॉरिशस और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने की दोबारा पुष्टि की है। एनवायरमेंट एंड लैंड यूज अपील ट्राइब्यूनल के सामने गैर सरकारी संगठन इकोसूड द्वारा लुबुशों डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की स्मार्ट सिटी परियोजना के परमिट के खिलाफ मुकदमा जारी है। 15 जुलाई को स्थलों का दौरा भी किया गया ताकि इस परियोजना की असल चुनौतियां जानी जा सकें। इस 17 जुलाई को लुबुशों ग्राम परिषद के अध्यक्ष कैद्रेस वालाइडों की सुनवाई रही। विदेश में लगातार छठी रात के दौरान अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमले किए। आबनाए हुरमूज पर नियंत्रण पाने के लिए जंग की दोबारा शुरुआत हुई है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने कहा कि हमलों ने ईरान की सैन्य ताकतों को कमजोर कर दिया है। और ग्रेट ब्रिटेन में एंडी बर्नम लेबर पार्टी के नए नेता बन गए हैं। सोमवार को वो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभालने लगेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। शोक समाचार सुनिए। रॉयल रोड रोशनिया में 87 साल के 87 years old श्री चुनुलाल होरदान जो रामदत्त के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 11 बजे इनकी पत्नी ज्ञानती होरदान के घर रॉयल रोड रोशनिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गौंगुप की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। शोक में दुबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: Raftar Vibes, Filmy Rides,
4: RM2.

0: Friday Mashup. 4 to 6 on Radio Musti.
1: RM2, Radio Musti, your number one Bollywood radio station.
2: वेल गाइस, चेक योर टाइम, स्टूडियो की घड़ी में 4:07 हो चुके हैं। हेलो गाइस, माय रेडियो मस्ती फैमिली, विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड आफ्टरनून। नमस्कार और गिनिशा का प्रणाम। सो हैप्पी फ्राइडे टू ऑल ऑफ यू। और वैसे क्या हाल है दोस्तों, मैं हूँ गिनिशा जो साथ देने आ गई हूँ रात के 7 तक। और शुरू हो चुका है सबसे बड़ा धमाकेदार शो आपका फ्राइडे मैशअप विद मी ऑन आवर टू रेडियो मस्ती। बाहर बारिश हो रही है, रोड थोड़ी सी स्लिपरी है, ट्रैफिक भी स्लो होने लगा है। तो जो भी ड्राइवर्स हमारे साथ रोड पर है, ड्राइव सेफली, हेडलाइट्स ऑन कर लीजिए, सीट बेल्ट ऑन और स्पीड थोड़ी कंट्रोल में रखो, ठीक है। और टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि आपका सफर को सुपर एनर्जेटिक बनाने के लिए बिल्कुल रेडियो मस्ती लेकर आया है नॉनस्टॉप ब्लॉकबस्टर मैशअप म्यूजिक फॉर यू। ओल्ड हो या न्यू हो, बॉलीवुड हो या पार्टी बीट्स, सब कुछ एक ही स्टेशन पर। और ये है आपका रेडियो मस्ती। तो वॉल्यूम को फुल ऑन करो, मूड को कूल करो और हम तो कहेंगे कि एंजॉय करो हमारे साथ, रेडी हो जाओ बैक टू बैक पावर बैक फ्राइडे मैशअप के लिए। सो दिस इज रेडियो मस्ती, जहां म्यूजिक कभी नहीं रुकती है। सो लेट्स किक ऑफ दिस ब्यूटीफुल फ्राइडे आफ्टरनून, लेट्स किक ऑफ एंड किक स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल वीकेंड साथ में। सो वेलकम ऑन बोर्ड माय डियर।

0: कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।

0: तो चलिए जी, टाइम तो बीता चला जा रहा है और फिलहाल के लिए हम तो बस इतना पूछना चाहेंगे हमारे लवली पीपल, क्या सीन है? फ्राइडे आ गया है, वीकेंड नॉक नॉक कर रहा है और रेडियो मस्ती लेकर आ गया है द अल्टीमेट फ्राइडे मैशअप फॉर यू। और वैसे ही निशा जब भी आती है खाली हाथ नहीं आती, आई हैव गॉट योर वाउचर, यस, वन मोर टिकट टू वॉच द कॉन्सर्ट लाइव ऑफ अभिजीत भाट्टाचार्य इन मॉरिशस। सो राइट नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट प्ले विद एमबीसी एंड विन एंड सेंड अ चांस टू विन अ टिकट, जहां पे आपको मिल सकता है द गोल्डन 90s एरा 2 फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य का जो लाइव कॉन्सर्ट है, होने वाला है 25 जुलाई 2024 मॉरिशस में, शाम के 7:30 बजे शुरू हो जाएगा एट SVICC@Pai। जी हाँ दोस्तों, यू कैन स्टेप इनटू द वर्ल्ड ऑफ नॉस्टैल्जिया, आप दोबारा जी सकते हैं ऐसे ही अनफॉरगेटेबल वॉइस दैट डिफाइन बॉलीवुड जो गोल्डन एरा होता है। एंजॉय दैट इवनिंग ऑफ टाइमलेस मेलोडीज, लेजेंडरी हिट्स एंड प्योर म्यूजिकल मैजिक। टिकट्स अगर खरीदना हो तो प्राइस शुरू होता है आज फ्रॉम 850 रुपीज एंड दे आर अवेलेबल एट moticket.mun@reseauautayou। सो इट्स एन ओकेजन नॉट टू मिस एंड हम तो बोल सकते हैं ये जो कॉन्सर्ट है काफी अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होने वाला है। फॉर रिजर्वेशन वी हैव अ हॉटलाइन जहां पे आप फोन कर सकते हैं, इट्स 466-9999-466-9999। बट अगर आप जीतना चाहोगे राइट नाउ राइट अवे वन टिकट फॉर फ्री ऑन RM2 रेडियो मस्ती, व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट पार्टिसिपेट इन द गेम, गिव मी द राइट आंसर एंड बी माई लकी विनर। पूछेंगे एक सवाल जो बहुत ही आसान है और आपको सही जवाब देना है ऑन 5499129 4 पर 5499 1294। सही जवाब फुल नेम एंड फुल एड्रेस के साथ, देन ओनली यू कैन बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द गेम। तो चलिए दोस्त, सुनाएंगे आपको एक डायलॉग जो काफी मशहूर है, आपको बस पहचानना है और मुझे बताना है ये कौन सी मूवी से लिया गया है।
1: मैं पापा को मेरा नाम ठीक से बोल, शिवानी शिवाजी रॉय, सीनियर इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच, यूनिट 3, बुखार।
0: बिल्कुल जी, पहचाना या नहीं? बिल्कुल, यू जस्ट हैव टू टेल मी, ये है रानी मुखर्जी की आवाज़। ये जी मैंने आपको एक हिंट दे दिया, आसान कर दिया आपके इस सवाल के जवाब को। तो चलिए, यू जस्ट हैव टू टेल मी कि ये जो डायलॉग है ना, फेमस सा डायलॉग है, इट्स टेकन फ्रॉम विच मूवी। आपने ध्यान से नहीं सुना, चलिए फिर से सुनाती आपको।
1: मैं पापा को मेरा नाम ठीक से बोल, शिवानी शिवाजी रॉय, सीनियर इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच, यूनिट 3, बुखार।
0: बिल्कुल 5499-1294 पर सेंड मी द राइट आंसर फुल नेम फुल एड्रेस के साथ, एंड हो सकता है कि आज अगर आप बन जाए लकी विनर इन योर फ्राइडे मैशअप, यू गोना विन वन टिकट टू वॉच द कॉन्सर्ट ऑफ अभिजीत लाइव इन मॉरिशस। देन इतना तो बनता है ना कि मैं आपको बोल दूं, बेस्ट ऑफ लक टू यू माय डियर।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग, आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।

0: just about the music, it's about the feeling.
1: Friday Mashup. Friday Mashup.
0: RM2, Radio Musty, in the mix.
2: Thank you so much, Isaac Denekili. On our RM2 Radio Masti, and I really hope that everyone is enjoying and having some good time. Hamari saath. Hum hai ki Nisha jo bade hi pyar se shiddat se aapka saath de rahe hai. Bahar barish ki boonde apni magic dikha rahe hai. Aur agar aap is waqt steering wheel ke peeche hai, to ek chota sa reminder aapke liye, driver sahab. So drive smart, drive safely. Road jo hai kafi slippery hai. To speed se zyada apni safety ko aap importance dijiye. Baki tension nahi lena. Radio Masti ke hawale bas kar lijiye. Hamare hawale. Hum hai na. आपका साथ देने के लिए, आपकी टेंशन को दूर भगाने के लिए. तो चलिए जी, जैसे कि आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पूछा था एक सवाल और सही जवाब सभी लोगों ने दिया है. सुनाया गया था एक डायलॉग जो काफी फेमस है और हमने पूछा था कि ये डायलॉग कौन सी मूवी से लिया गया है. वेल, जिसने नहीं सुना था अनफॉर्चुनेटली, दोबारा सुन लीजिए.
3: पापा का मेरा नाम ठीक से बोल, शिवानी शिवाजी रॉय, सीनियर इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच, यूनिट 3, बुखार.
2: बिल्कुल जी, अपने पापा को जरा नाम बता देना. RM2 रेडियो मस्ती पर किनिशा काम कर रही है, साथ दे रही है. बिल्कुल जी, दैट्स द फेमस डायलॉग शिवानी शिवाजी रॉय के, यानी कि इट्स टेकन फ्रॉम द मूवी मर्दानी. जी हाँ दोस्तों, थैंक यू सो मच टू ऑल दोस्त जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है. आपने अपना लक ट्राई किया है, लेकिन एज पर द रूल फॉर द गेम ओनली वन लकी विनर. और आज के लकी ड्रॉ में नाम निकल आया है हमारे लकी विनर का, जो है मिस्टर दिनेश चंद्र पांडे, और रहते हैं कैटरबॉन. सो कंग्रेचुलेशन टू यू मिस्टर दिनेश चंद्र पांडे. So congratulations to you, Mr.

दिनेश आज का लकी विनर आप ही हो एंड यू आर विनिंग अ टिकट टू वॉच द कॉन्सर्ट ऑफ अभिजीत भाटियाचार्य लाइव इन मॉरिशस एंड द कॉन्सर्ट इज गोइंग टू हैपन ऑन 25th ऑफ जुलाई 2026 शाम के 7:30 बजे शुरू हो जाएंगे एट SBICC पर। जी हाँ दोस्तों, और बाकी जिनको टिकट्स खरीदना है आपको याद दिला दिए, द टिकट्स स्टार्ट्स फ्रॉम 850 रुपीज ओनली, अवेलेबल एट moticket.mu एंड रेजो उतायू। सो रिजर्वेशन के लिए आप फोन कर सकते हैं ऑन 466-9999 पर 99 पर। और जो हमारा लकी विनर है मिस्टर दिनेश, देयर विल बी समवन कॉलिंग यू फ्रॉम द एमबीसी आपको बताने के लिए कि कैसे आप अपने टिकट को पिक कर सकते हैं। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, और बाकी जो नहीं जीते दिल चोता नहीं करते। 6:30 PM एग्जैक्टली विल बी हैविंग

0: Friday Mashup. 4 to 6 on Radio Musti.
1: RM2, Radio Musti, your number one Bollywood radio station.
2: वन जी खूबसूरत गानों का ये सिलसिला तो बस चलता ही रहेगा. सो व्हाट्सअप मॉरिशस, फ्राइडे की वाइब और बारिश का सरप्राइज, व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है ना. बट कोई बात नहीं, आप बस आराम से धीरे धीरे गाड़ी चला लेना. अगर आप रोड पे हैं तो सेफ ड्राइव कीजिए, क्योंकि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है बड़े प्यार से. और सफर को बोरिंग मत बनाइए, रेडियो मस्ती के साथ वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, क्योंकि अब शुरू तो हो चुकी है हमारी फ्राइडे मैशअप और गिनीस दे रही है. और थोड़ी देर में विल बी हैविंग योर स्पोर्ट्स न्यूज, स्पोर्ट्स गुरु आएंगे टू गिव यू लेटेस्ट sports news, non-stop party anthems, Bollywood bangers and of course crazy remixes. Weekend starts now. This is your Radio Musti. Feel the beat and leave the musti with me, Kinisha, on RM2 Radio Musti.

बिल्कुल जी, ये है आपका नंबर वन बॉलीवुड स्टेशन। जी हाँ, राइम टू रेडियो में इसमें तो कोई शक नहीं है। फिलहाल के लिए जस्ट चेक योर टाइम, 4:45 हो चुके हैं। माय डियर, आई नो यू आर ऑल वेटिंग फॉर योर स्पोर्ट्स न्यूज, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दे दैट ऑन संडे हियर ऑन द 19th of July जब होने वाला है हमारा स्पेशल प्लाटू ऑफ

0: वर्ल्ड कप जो शुरू हो जाएगा रात के 10 बजे, इट्स नॉट जस्ट गोइंग टू बी अ नॉर्मल प्लेटो. आप तो सुनेंगे हर न्यूज अबाउट द वर्ल्ड कप हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, बट स्टिल अगर आप चाहें तो आप बन सकते हैं लकी विनर्स. वी विल बी हैविंग सो मेनी गेम्स ड्यूरिंग द शो, एंड आपको क्या करना है, जस्ट पार्टिसिपेट, ट्राई योर लक. यू नेवर नो, अगर लक ने आपका साथ दे दिया सो यू कैन विन सो मेनी वाउचर्स. जैसे कि 10 बजे से शुरू हो जाएंगे एंड देयर विल बी सो मेनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग, हो सकते हैं आपके प्रेडिक्शंस, आपके प्रोनोस्टिक्स, हो सकते हैं कुछ ऐसे सवाल रिगार्डिंग वर्ल्ड कप, ये सारी चीजें. सो यू कैन विन सम वाउचर्स व्हिच वी विल बी गिविंग अवे टू यू फ्रॉम राजस्थान हैंडलूम्स जो है एट अबिद लका इक्योपिप एंड जेंसर लिटिल इंडिया ला सिटी मॉल होसबेल एंड त्रिबेका मॉल. सो यू कैन विन नॉट वन नॉट टू फाइव वाउचर्स वर्थ 500 रुपीज ऑफर टू यू बाय राजस्थान हैंडलूम्स एंड जेंस लिटिल इंडिया. ये और हमारे पास क्या है, अभिजीत कॉन्सर्ट का अगर आप देखना पसंद करोगे सो व्हाई नॉट, विल बी हैविंग गोल एंट्री टिकट्स टू गिव अवे टू यू. नॉट वन नॉट टू, विल बी हैविंग थ्री गोल्ड एंट्री टिकट्स टू गिव अवे टू यू ऑन संडे द 19 रात को ऑन आवर स्पेशल प्लेटो ऑफ वर्ल्ड कप. एंड यस, यू कैन प्ले विद आवर एम2 एंड स्टैंड अ चांस टू विन अ गोल्ड एंट्री टिकट टू अटेंड अभिजीत लाइव इन कॉन्सर्ट एट SVICC at Pai on Saturday 25th of July 2026 from 7:30 PM. And the Grand Bazaar of India is also offering you so many vouchers. 3 vouchers worth 500 rupees. The Grand Bazaar of India, Mahogany Shopping Promenade, Le Coudon Waterfront Pehe, and Mont Choisi, Le Mall, Eben and Cascavel Mall maybe. So what you can do, just participate on Sunday night. Jiha, on 19 tarikh ko raat ke 10 baje se shuru ho jayega on RN2 Radio Masti. Aur filhal ke liye, let's get back to the show, my dear, jahan pe hone wala hai aapka sports news.
1: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the floor expert.
2: RM2 listeners, the latest from the sports world.
3: World Cup 2026 ke final ke intezaar mein New York mein vayu pradushan, air quality health alert jari kiya gaya hai. Canada ke kai ilakon mein lagi aag se dhuan New York tak aa gaya hai aur logon ko ghar se bahar na jaane ki salah di ja rahi hai. स्पेन और अर्जेंटीना के बीच फाइनल न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में लगने वाला है. एक तो गर्मी बहुत है, अब धुआं, सांस लेना कठिन है. आज एयर क्वालिटी बेहतर होने की उम्मीद है और कल बारिश का अनुमान है. डर है कहीं फाइनल धुआं में न उड़ जाए. याद दिला दें, फाइनल परसों संडे रात्रि को 11 बजे लाइव MBC स्पोर्ट्स 11 पर. इंग्लैंड के लिए अर्जेंटीना से मिली हार सदमे से कम नहीं है, हजम नहीं हो रही है. इंग्लैंड का डिफेंसिव रिट्रीट चर्चा का विषय बन गया है. खबर है इंग्लैंड के कई खिलाड़ी भी कोच टोमास टुखेल के टैक्टिक से नाराज हैं. टोमास टुखेल ने जवाब दिया, इट्स मे बी नॉट इन आवर DNA टू कंट्रोल द गेम एंड बॉल, यानी बॉल कंट्रोल नहीं कर पाए, हार गए. वेन रूनी ने यहां तक कहा कि हार मैनेजर के फैसले से हुई, अब क्या करें, हमेशा की तरह इंग्लैंड इतने करीब आकर सस्ते में आउट. स्पेन और अर्जेंटीना वाले फाइनल मैच से पहले कई खिलाड़ियों पर लाइमलाइट हैं, कई फोटो सामने आ रहे हैं. इनमें से एक में पता चला कि मेसी लामिन यामाल को बहुत पहले से जानता है. 2007 में मेसी 20 साल का था, लामिन यामाल 5 महीने का. मेसी लामिन यामाल को बाफ टब में नहाते हुए नजर आया है. फोटोशूट बार्सिलोना के नू कैंप में हुआ था. लामिन यामाल के पेरेंट्स, उनके माँ बाप एक कॉम्पिटिशन जीतकर वहां आए थे अपने मुन्ने लामिन यामाल के साथ. कौन कहेगा कि 19 साल पहले जिस लामिन यामाल को मेसी ने गोद में लिया, उसे नहलाया था, वो लामाल उसके सामने होगा वर्ल्ड कप के फाइनल में. इंग्लैंड का खिलाड़ी जूड बेलिंगम सेमीफाइनल में नहीं स्कोर कर पाया, पर मैच पूरा होने पर गुस्से में आकर अर्जेंटीना के सब्स्टिट्यूट बाको को कान के पीछे मारा. फीफा इस मामले पर तहकीकात कर रही है. कल ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए बेलिंगम को सस्पेंड भी किया जा सकता है. और क्रिकेट, इंग्लैंड ने कल टीम इंडिया को 4 विकेट से हराया. ये दूसरा वनडे मैच था इन दोनों के बीच. जो रूट 99 नॉट आउट. इंडिया के लिए विराट कोहली 65 और श्रेयस अय्यर 66 रन बनाकर आउट हुए 65-66. टोटल केवल 233. इंग्लैंड ने सीरीज लेवल किया है 1-1. सो वर्ल्ड कप जारी है, थर्ड प्लेस और फाइनल का इंतजार.

0: लगातार है। इस बीच मॉरिशस में भी युवा एवं खेल मंत्रालय की ओर से वर्ल्ड कप के संदर्भ में जो फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित की गई थी अंडर 13, इसका फाइनल कल खेला जाएगा कुड्डो स्टेडियम में। तो हमारे यहाँ भी वर्ल्ड कप का फाइनल होगा ये कल कुड्डो में हमारे नवयुवकों के लिए। कौन जाने, इनमें से बहुत लोग बड़े होकर एक दिन असली वर्ल्ड कप में मॉरिशस के लिए खेले, देखते हैं। पर इंतजार है फॉर द बिग फाइनल जो न्यूयॉर्क में लगेगा, ये होगा अर्जेंटीना और स्पेन के बीच। कह रहे हैं वहां धुआं है, लेकिन मैच में आग ही आग होगा दो महारथियों के बीच। एक साथ देखेंगे एमबीसी 11 पर, डोंट मिस इट। हैव अ नाइस टाइम लिसनिंग रेडियो मस्ती, टेक केयर, बाय बाय।
1: This magazine was brought to you by Quality Decor, the floor expert.

0: RM2 Radio Mystique.
1: Traffic update.
2: बिल्कुल जी, यू आर लिसनिंग टू आर एम टू रेडियो मिस्टी और आप सुन रहे हैं हमारा ट्रैफिक अपडेट, ड्राइव सेफ एंड रीच सेफ। सो टू ऑल द ड्राइवर्स, अगर आप पोर्ट लुइस से नॉर्थ या साउथ की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो ध्यान दें कि बारिश काफ़ी जगहों पे हो रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है स्लो हो चुका है और रोड्स भी स्लिपरी हैं, इसीलिए एक्स्ट्रा केयरफुल होकर ड्राइव करें एंड अवॉइड कीजिए जहाँ पे वाटर पैचेस आपको अधिक जाता है। और

रूट को जो रूट्स के जो अपडेट्स होते हैं वो है पोर्ट लुइस से नॉर्थ और साउथ ट्रैफिक काफी स्लो है बट मूविंग ड्यू टू रेन एंड रेजुई से फिनिक्स आई कैन सी ट्रैफिक काफी स्लो है लेकिन व्हीकल्स मूव तो कर रहे हैं फिनिक्स से क्यूपे पर रेन की वजह से स्लो मूविंग ट्रैफिक वेडर रोड ऑफिस क्लोजिंग पीक आवर और बारिश के चलते हैवी स्लो ट्रैफिक शुरू हो चुकी है एंड रोजिल और कैट्रोबोन की अगर हम बात करें तो यहाँ भी सिमिलर सिचुएशन है ट्रैफिक स्लो बट मूविंग और कुछ सेफ्टी टिप्स आप लोगों के लिए हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे ड्राइवर्स स्पीड को कंट्रोल में रखें और सडन ब्रेकिंग अवॉइड करें दो गाड़ियों के बीच सेफ डिस्टेंस जो है हमेशा मेंटेन करें हेडलाइट्स ऑन रखें ताकि विजिबिलिटी बेटर रहे बारिश के मौसम में और मोबाइल फोन एज यूजुअल यूज ना करें जब तक कि गाड़ी सेफली पार्क ना हो अगर रोड्स पर पानी जमा हो तो धीरे और संभल कर जरूर क्रॉस करें सीट बेल्ट हमेशा पहने और सभी पैसेंजर्स को भी एंश्योर करें ये था आज का ट्रैफिक अपडेट बारिश के मौसम में थोड़ा पेशेंस रखें सेफली ड्राइव कीजिए और अपने डेस्टिनेशन पर सुरक्षित पहुंचे हैप्पी एंड सेफ ड्राइविंग हमारे पूरी टीम की तरफ से कलंग

0: थैंक यू सो मच जी साथ देने के लिए विद दिस ब्यूटीफुल एंड मेसमराइजिंग गाने ऑन RMT रेडियो मस्ती. फिलहाल के लिए जस्ट चेक योर टाइम, इट्स ऑलरेडी 5 PM.
1: वेलकम टू RMT
2: रेडियो मस्ती.
1: नॉर्थ, साउथ,
2: 103.5,
1: ईस्ट, वेस्ट,
2: 96.4,
1: सेंटर,
2: 99.4.
1: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
1: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti. Feel the Musti. The Musti.
0: Latest news updates in English review. Shreena, good afternoon.
3: Hello everyone and thanks for joining us for the News Flash. The future United States Embassy in Mauritius is steadily taking shape. At the construction site in Bagatelle, the project has reached a major milestone with the completion of its main structural work.

0: वेलकम टू रेडियो मस्ती। Welcome in the second hour of this beautiful show, and that's your Friday mashup happening right now on RMT Radio Masti ke Nisha ke saath. Ji haan, 5:11 ho chuke hain, Friday 17th of July 2026. Oye mere pyare pyare listeners, ki aala hai, Friday finally land kar gaya ji, aur iska matlab sirf ek hi hota hai, weekend mode is on. Bahar barish apna full performance to de hi rahi hai, aur agar aap steering wheel ke peeche ho to bhai accelerator se zyada jo brakes hai na us par bharosa rakho, road jo hai kaafi slip हैं बार बार, इसीलिए आपको याद दिला रहे हैं ताकि आप गाड़ी जो है अपनी ध्यान से चलाए, लेकिन मूड बिल्कुल स्लिपरी मत होने दो, ठीक है। ऑफिस से घर, घर से पार्टी या बस लॉन्ग ड्राइव पे जो भी प्लान हो, रेडियो मस्ती है ना आपका साथ देने के लिए। सब स्पीकर्स को थोड़ा और लाउड करो, विंडोज जो विंडोज हैं आपकी गाड़ी के शीशे हैं उसको बंद कर लीजिए, स्ट्रेस को साइड में रखो, क्योंकि आ गई है फ्राइडे मैशअप। बैक टू बैक बॉलीवुड के जो बहुत ही प्यारे गाने हैं, किलम रिमिक्सेस, डांस बीट्स और ऑन वो जो वीकेंड का जो फ्यूल अप है हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। वैसे आज ना जो स्लो सॉन्ग्स है ना बोरिंग टॉक्स है, और सिर्फ नॉन स्टॉप एनर्जी गाने लेकर आए हैं जो हैं आपके लिए स्पेशली ऑन आवर टू रेडियो मसी। एंड आपको तो पता है द नंबर 5499129459924, यस यू नीड टू सेंड मी योर डेडिकेशंस, डू लेट मी नो व्हाट्स योर प्लान फॉर द वीकेंड। एंड मैं हूं ना साथ देने के लिए, आज निशा ऑन द माइक टिल 7 PM।
1: It's not just about the music, it's about the feeling.
0: Friday Mashup. Friday Mashup.
1: RM2, Radio Musty, in the mix.

0: कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस,
1: डोंट मिस इट।
2: It's not just about the music, it's about the feeling.
3: Friday Mashup. Friday Mashup.
2: RM2, Radio Musty, in the mix.

क्योंकि डेस्टिनेशन से ज्यादा हमेशा जरूरी होता है सेफली पहुंचना अपने घर पे. और बाकी सब लोग जस्ट गेट रेडी क्योंकि आज का सीन सिंपल है मेरी जान. जीरो स्ट्रेस, फुल ऑन वॉल्यूम, नॉन स्टॉप मैशअप एंड प्योर वीकेंड एनर्जी स्पेशली इन योर फ्राइडे मैशअप विद मी RM2 गिनिशा. RM2 पर गिनिशा साथ दे रही है. तो चलिए जी, आई गॉट यू योर डेडिकेशंस ऑन 5491294 पर. और साथ में आपको याद दिला दे द शो इज लाइव ऑन टिकटॉक RM2 रेडियो मस्ती. सो नमस्ते आपको भी हमारे प्यारे राधा जी जो है कनाडा से एंजॉइंग द वंडरफुल शो. थैंक यू सो मच आपकी फैमिली जो कनाडा मॉरिशस में है RM2 लिसनर्स के लिए. एंड विशिंग यू हैप्पी फ्राइडे, हर हर महादेव टू यू एज वेल. हैंड एंड एंड तुम्हारी बात अलग है, तुम्हारी हर अदा खास है. आए हाय मेरी जान आपके लिए, अच्छा मेरे लिए आपने लिखा है. एंड दैट्स मिस्टर दीपक कुमार. दीपक कुमार जी बोल रहे हैं कि हमारी बात ही अलग है, हमारी हर अदा खास है. थैंक यू सो मच माय स्वीट हार्ट. सो द नेक्स्ट वन, किसी ने पूछा कैसे हो हम. एकदम ठीक है, एकदम फुल ऑन मूड में है. एंड वेरी स्वीट सॉन्ग हमेशा की तरह बजा रहे हो गिनिशा. एंड चलिए जी अगला गाना जो है आपके लिए, अनीता फ्रॉम फिकॉन्फ्लॉक जो बोलते हैं कि 12 बजे से इट्स रेनिंग एट फिकॉन्फ्लॉक, सो बी केयरफुल गाइस. तो चलिए ये अगला गाना जो है, किसी ने लिखा एवरी शो बिगिंस विद योर वार्म हेलो गिनी, योर एनर्जी मेक्स एवरी मोमेंट ग्लो. थैंक यू सो मच, आप इतने हैप्पीनेस लेकर आते हैं हर ट्यून में. एंड थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्यूटीफुल मैसेज. विशिंग ऑल योर स्टूडेंट ऑफ सेकेंडरी कॉलेज हैप्पी स्कूल हॉलीडेज. बिल्कुल जी, आज तो सारे बच्चे जो हैं ऑलरेडी हॉलीडेज पे हैं, तो सारे बच्चों को हमारी तरफ से भी हैप्पी हॉलीडेज ऑन RM2 रेडियो मस्ती. एंड फ्रॉम मिस्टर कुमार देवी चन फ्रॉम पेरेबिया, टीचर ऑफ डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी. तो चलिए जी, टू ऑल दोस हु आर वाचिंग अस लाइव, वी हैव प्रीता, वी हैव नैट, वी हैव नेहा एंड वी डू हैव रईफ. एंड यश सेज प्रणाम फ्रॉम लिवरपूल इंग्लैंड. एंड चलिए जी, वी हैव ज्वेल बुटीक, वी हैव प्रिंसेस. अरे प्रिंसेस इज ऑन माय लाइव, थैंक यू. रोमिता जुगा एंड गुजा, सॉरी, हाय हाउ आर यू रोमिता जी एंड सवीना. ये अगला गाना, यू आर एट रीयूनियन आइलैंड. हे आनी कैसे हो आप, सो द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू एज वेल. 5499124, कीप ऑन सेंडिंग मी योर डेडिकेशंस, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर देम.

0: Bollywood.
1: Radio Musti. वैसे देखा जाए तो टाइम बीटा चला जा रहा है, लेकिन लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर इस वक्त आपने अपना रेडियो ऑन किया ना, यू कैन रियली फील दैट द फ्राइडे वाइब्स, द वीकेंड वाइब्स इज ऑलरेडी हियर. वी हैव ऑलरेडी किक स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल वीकेंड आपके साथ. तो चलिए जी, इतने सारे मैसेजेस आप लोग भेज रहे हैं, हाउ कैन आई मिस दैट. अपना कीमती वक्त निकाल के आप अपनों के लिए गाना डेडिकेट कर रहे हो अपने नंबर वन रेडियो स्टेशन पर. तो चलिए जी, अगला गाना जो है शहनाज जोगी के लिए, शी इज फ्रॉम रिविया जोहान, एंजॉयिंग द वंडरफुल शो. सो नाइस सॉन्ग फॉर यू माई लवली, एंड प्लीज डू लेट मी नो जोगांपा में मौसम का क्या हाल है. नेक्स्ट वन फॉर यू जयदत्त, कमलेश, गीता, अनीता एंड यशवी. थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस एज योर रेडियो पार्टनर. वी हैव अवनी हस्बैंड रोशन एंड मनीषा के लिए एक्चुअली इन द किचन. ओहो, पूरे परिवार साथ में है, कितना मजा आता होएगा ना. आप बना रहे हैं डिनर, व्हाइट सॉस चिकन पास्ता, एंड खाएंगे यम्मी यम्मी खाना. दैट्स गुड. तो चलिए जो एंजॉयिंग रॉकिंग गाने, बिल्कुल अजय कुमार जी, सभी चीज जितने भी गाने हम लेकर आए ना, सभी रॉकिंग ही है. सो आप एंजॉय कर रहे हैं, गाना हो जाए आपके लिए. What a song selection every day, enjoying it a lot. Thank you so much. बस यूं ही साथ देते रहना. 24/7 आपकी खिदमत में R&T Radio मस्ती हाजिर है. ललिता जीतन, प्यारी बहना, happy school holiday to you. आपके students को भी और आपको भी. आप who from जो स्कूल में काम करते हैं पोर्ट्रीस में, तो स्कूल में जितने भी आपके कलीग्स हैं उनके लिए भी ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएं. तो चलिए जी, टू ऑल दोस हु आर वाचिंग अस लाइव ऑन टिकटॉक, हेलो जी, हियर वी गो, लेट्स हिट द नेक्स्ट वन माय वे ऑन R&T रेडियो मस्ती. जैसे कि हम कहते हैं फ्राइडे है, खुशियां लेकर आई हैं आप लोगों के लिए. सो स्टे हैप्पी, हैप्पी है, हैप्पी हैप्पी ऑन R&T रेडियो मस्ती.

0: Friday Mashup. 4 to 6 on Radio Musti.
1: RM2, Radio Musti, your number one Bollywood radio station.
2: जस्ट लाइक यू नो की ऑन आवर टू रेडियो मस्ती जब भी हम आते हैं हम अच्छी खबर ही लेकर आते हैं और फ्राइडे के लिए 19 तारीख को वी हैव द बेस्ट शो एवर विच इज गोइंग टू हैपन रात के 10 बजे विल बी हैविंग अ स्पेशल प्लेटो फॉर यू गाइज सो इट्स एन ओकेजन नॉट टू मिस अगर आप फुटबॉल लवर्स हैं यू आर फॉलोइंग द वर्ल्ड कप तो 19 तारीख को रात के 10 बजे विल बी हैविंग अ स्पेशल प्लेटो फॉर यू राइट हियर ऑन आवर टू रेडियो मस्ती वैसे सिर्फ इस स्पेशल प्लेटो ही नहीं कि आपको स्पोर्ट्स न्यूज दिया जाएगा हम आपको देंगे बहुत सारे गिफ्ट यानी कि आप बन सकते हैं लकी विनर जहां पे आप जीत पाएंगे बहुत सारे वाउचर्स एंड गिफ्ट यानी कि आपको क्या करना है पार्टिसिपेट करना है इट विल बी क्वेश्चंस रिगार्डिंग वर्ल्ड कप आपके जो प्रोनोस्टिक्स आपके प्रेडिक्शंस के बारे में अबाउट एवरीथिंग व्हाट यू हैव टू डू जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड ऑन संडे 19th ऑन आरएमटी रेडियो मस्ती रात के 10 बजे आपको क्या मिल सकते हैं फ्रॉम द ग्रैंड बाजार ऑफ इंडिया नॉट वन नॉट टू लेकिन हमारे पास तीन वाउचर्स हैं वर्थ 500 रुपीज टू गिव अवे टू यू और साथ में राजस्थान हैंडलूम्स जो है राजस्थान हैंडलूम हाउस जो है आता बिदला का इक्या पेपर एंड इवन जॉइंस अ लिटिल इंडिया दे आर ऑफरिंग यू 5 वाउचर्स वर्थ 500 रुपीस यस माय डियर एंड वी हैव थ्री टिकट्स नॉट नॉर्मल टिकट्स बट गोल्ड टिकट्स टू गिव अवे टू यू टू अटेंड द कॉन्सर्ट यस ऑफ अभिजीत एंड यू कैन प्ले विद आवर टू एंड स्टैंड द चांस कि आप जीत पाए गोल्ड एंट्री टिकट टू अटेंड अभिजीत लाइव इन कॉन्सर्ट इन मॉरिशस एट एसवीआईसीसी एट पाई ऑन सैटरडे 25th ऑफ जुलाई 2026 आवर्स फ्रॉम 7:30 PM यानी कि ये जो प्लेटो होने वाला है ऑन संडे रात को 10 बजे इट्स नॉट गोइंग जस्ट टू बी अ नॉर्मल प्लेटो इट्स गोइंग टू बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू विन सो मेनी गिफ्ट एंड सो मेनी कैडोज सो व्हाट यू हैव टू डू आपको तो पता है ना स्टे ट्यून ऑन योर नंबर वन रेडियो स्टेशन

0: on to Radio Masti.
1: तो चलिए जी, ये खूबसूरत सा गाना हम लेकर आए हैं ऑन योर नंबर वन रेडियो स्टेशन. जी हाँ, टू ऑल दोस हु आर ड्राइविंग, हु आर सिटिंग इन अ बस, आप मेट्रो में बैठे हो, कहीं से भी अगर आप हमारा साथ दे रहे हो, हियर वी गो, दिस वन गोज आउट टू यू.

0: It's not just about the music, it's about the feeling.
1: Friday Mashup. Friday Mashup.
0: RM2, Radio Musty, in the mix.
2: बिल्कुल जी, इट्स नॉट अबाउट द फीलिंग, इट इज एक्चुअली अ फीलिंग. यू आर लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन. अगले कुछ सेकंड में दोस्तों आपका मूड कंप्लीटली चेंज होने वाला है, क्योंकि वर्क मोड जो है ऑलरेडी ऑफ हो चुका है, वीकेंड मोड जो है ऑन हो चुके हैं, और स्ट्रेस डिलीट हो चुके हैं, और म्यूजिक ऑन रिपीटेड मोड आपके लिए. और रेडियो मस्ती का फ्राइडे मैशअप फुल ऑन वॉल्यूम विद मी किनिशा. थैंक यू सो मच जी. और अगला गाना जो है, किसी ने बोला है कि फ्राइड राइस बना रहे हैं, एंजॉयिंग विद द फैमिली. और अगला गाना फॉर यू सुया बिहारी ऑफ कुंगुमा. एंड अगला गाना प्रियंका एंड आदर्श के लिए. थैंक यू सो मच. वी डू हैव प्रिशनी फ्रॉम कॉम्फोको. थैंक यू सो मच साथ देने के लिए. अनुषा एंड शी इज फ्रॉम सेजिया मिल फॉरेस्ट साइड. हस्बैंड फीमेल के लिए बेटी परी, मौसी सरिता गुडलैंड से, और आपकी फ्रेंड पूनम, चाचा अनिल, डैडी मिला, मालिनी एंड बॉस ऋषि वर्किंग एट द सुपर मार्केट. यू गाइज आर एंजॉइंग द गुड म्यूजिक. द नेक्स्ट वन फॉर यू माई डियर फ्रॉम बेबी रेबिका की तरफ से, उनके प्यार के नाम. एंड चलिए जी, मान जो है बोलते हैं अगला गाना उनकी वाइफ हेमा के लिए, जो कैटरबोन के रहने वाले हैं. एंड राइट सॉन्ग एट द राइट टाइम. जिमी जिमी आजा आजा, नहीं आया. इतना बुलाने के बाद भी जिमी नहीं आया. आशा आके आपको जिमी दिखा. तो चलिए जी, आई हैव द नेक्स्ट वन शाम देवी डेन के लिए. आई एम जस्ट एंजॉयिंग आपके शो को. हमारे दोस्तों के नाम राजू, विकास, लालदेव, सुखदेव, और फुल वॉल्यूम लगा के रेडियो मस्ती को सुन रहे हैं. आई है मेरी जान, और क्या चाहिए. सो जॉन विश इज वॉचिंग अस लाइव ऑन टिकटॉक. वी हैव रेडियो लविनिया, वी हैव मेसी ग्रेस, शलिंदर गिर जी. ग्रीटिंग्स टू यू माय डियर. एंड द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू एंड योर फैमिली. याले शाम. द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू एंड रुकैया सुगन. एंड वी हैव सोनम एंड विमी लक्ष्मण. ऑल दीज लवली पीपल, दे आर वॉचिंग अस लाइव ऑन टिकटॉक. आर एंड टू रेडियो मस्ती. सो कैन यू फील द मस्ती? यस, आई कैन फील इट.

0: तो चलिए जी अभी फिलहाल के लिए टाइम हो चला कि मैं आपको थोड़ा सा टिप्स दे दूं। जैसे कि आपको बताया कि आजकल तो ठंड का मौसम है और बारिश का भी मौसम है, तो फैशन टिप्स के ऊपर हम लेकर आए हैं एक ऐसा टिप जो सारे लेडीज बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे जो शॉल को और ना पसंद करते हैं। यस, कुछ भी पहनो, अगर आप जीन्स भी पहन रहे हो, आप वेस्टर्न, आप यूरोपियन, आप इंडियन क्लोज भी पहन रहे हो, तो एक शॉल अगर आप उसके ऊपर ओढ़ेंगे विद अ मैचिंग कलर, सो इट्स गोइंग टू एनहेंस योर विंटर लुक।
1: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments.

0: à Goodlands, cœur de ville.
1: Ah, Menos.
2: RM2 Radio Musti.
3: Thank you so much for joining us on Radio Musti. Check your time. It's a sharp 6 p.m.
2: RM2 Radio Musti.
4: The time is brought to you by
5: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
4: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
2: Radio Musti.
6: North, South,
2: 103.5.
6: East, West,
2: 96.4.
6: Center,
2: 99.4.
7: RM2 Radio Musti.
2: Radio Musti.
7: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: सबसे पहले आज की बड़ी खबरें मॉरिशस में अमेरिकी दूतावास आहिस्ता आहिस्ता बंद रहा है बागातर में मुख्य ढांचे स्थापित किए जा चुके हैं इस परियोजना की लागत 300 मिलियन डॉलर यानी 14 बिलियन रुपए की है गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और अमेरिका की डेप्यूटी सब सेक्रेटरी सारा ट्राउटमैन ने आज सुबह स्थल का दौरा किया मॉरिशस सातवां अफ्रीकी देश बन गया है जो ऑटोमिस

0: समझौते का हिस्सा है। आज दोपहर बाद एबेन में अफ्रीकन अफेयर्स की अमेरिकी डेप्यूटी सब सचिव सारा ट्राउटमैन की मौजूदगी में मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल में दस्तखत किए गए ऑटोनॉमस समझौते में राष्ट्रों के दरमियान अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग के लिए नियम मौजूद। मॉरिशस के लिए इस हफ्ते प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट से देश के सामने खड़ी चुनौतियों पर बहस शुरू, इनमें सार्वजनिक कर्ज, पेंशन सुधार और वृद्धि की संभावनाएं शामिल। और विदेश में एंडी बर्नम ग्रेट ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। नमस्कार, रादाब, समाचार विस्तार से सुनिए। मॉरिशस में अमेरिकी दूतावास आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है। बागातेल में मुख्य ढांचे स्थापित किए जा चुके हैं। इस परियोजना की कीमत $300 मिलियन यानी $14 बिलियन है। गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और अमेरिका की डेप्यूटी सब सेक्रेटरी सारा ट्राउटमैन ने आज सुबह स्थल का दौरा किया ताकि कार्यों के विकास का जायजा लिया जा सके। उन्होंने मॉरिशस और अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने की दोबारा पुष्टि की है। क्लोदा जेफ्रा गादीबादू, आस्था गोबिंदामन।
1: एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर के साथ मॉरिशस एक नए सहयोग नेटवर्क का हिस्सा बन गया है। देश का 2.3 वर्ग किलोमीटर का विशेष आर्थिक क्षेत्र है। अब मॉरिशस अफ्रीका के उन 31 देशों में शामिल हैं जो पहले से ही अमेरिका के साथ इस व्यवस्था को लागू कर रही हैं। ये समझौता संयुक्त गतिविधियों के दौरान लॉजिस्टिक सहायता, सामान और सेवाओं के आदान प्रदान के लिए कानूनी आधार देता है। इसका उपयोग सैन्य अभ्यासों, प्राकृतिक आपदा के बाद राहत कार्यों और मानवीय अभियानों में किया जा सकेगा। जब हम साझा अभ्यास चलाते हैं, विशेषकर आपदा प्रबंधन के लिए, तो इस दिशा में ये समझौता दोनों देशों के बीच सेवाओं का समन्वय करेगा, चाहे वो ईंधन आपूर्ति हो, पानी सप्लाई हो या स्पेयर पार्ट्स हो। अमेरिका के साथ ये समझौता सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करेगा, खासकर पश्चिमी हिंद महासागर और आसपास के सेक्टरों में। इसका इस्तेमाल कटलास एक्सप्रेस जैसे सैन्य अभ्यासों में किया जा सकेगा। किसी वास्तविक आपात स्थिति में भी इसे लागू किया जा सकेगा जहां तुरंत कार्रवाई की जरूरत है। ये समझौता सरकारी खरीद की सामान्य प्रक्रिया में लगने वाला समय भी कम करेगा। इससे दोनों देश जरूरत पड़ने पर अधिक तेजी और बेहतर तरीके से मिलकर काम कर सकेंगे।
0: मॉरिशस के लिए इस हफ्ते प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट से देश के सामने खड़ी कई चुनौतियों पर बहस शुरू हो गई है। इनमें सार्वजनिक कर्ज, पेंशन सुधार और वृद्धि की संभावनाएं शामिल हैं। IMF की सिफारिशों को बेहतर तरीके से समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पुराने उच्चाधिकारी डॉक्टर विमल ठाकुर ने स्पष्टीकरण दिए। सार्वजनिक वित्त, पेंशन सुधार और मौसम परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर महारत हासिल इस विशेषज्ञ ने आज हमारे सहयोगी शहजाद जुमन से बात की।
2: IMF ने मॉरिशस की इकोनॉमी पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है और इस पर काफ़ी चर्चा हो रही है जब से ये रिपोर्ट आम की गई है। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या इस रिपोर्ट को तैयार करते वक्त इन टिप्पणियों पर गौर किया जाता है?
3: Mission Milan gouvernement c'est secteur privé c'est ban ori NGOs log sangé ori l'université que lecturer sangé sab ko ise milanja taki ulog ke jab rapport wa likian sata sab information rahi sab ko ke point de vue sab comme ça d'aller unme
2: IMF ne Mauritius mein jab fiscal consolidation ka acha swagat kiya hai, dusri taraf kai sudharon ki sifarish bhi ki hai jinme pension sudhar bhi shamil hai aur is par abhi zyada tipni ho rahi hai.
3: Dugo chij hiya rahal ki fiscal consolidation debt aur humni ke desh ke debt dher augmente ho gaya rahal aur abhi jo je forhol ba ho detwa ke empêcher hota monte hoi ke हमने के ये भी देखे के चाहेला कि हमने के देश में बुढ़ापा उगमाते हुआ था, हमने के हाई के प्रिपारे करे के चाहेला और प्रिपारे कैसे करब सा, हमने के चाहेला कि ला सांते के सिस्टम हमने के बुढ़ान लोग के सा उन लोग के स्वयं ले कैसे के चाहेला। हमने के ये भी चाहेला कि हमने के बड़ा लोग जो हवन सा उन लोग के सकब सा सोसाइटी में, इकोनॉमी में इंक्लूड करे, जब उन लोग भी पार्टिसिपेट हो जाए सा

0: जब बूढ़ा हुआ था उनसे पेंशन है में एगो एक पार्टी हा है सॉल्यूशन वाके है जो रिफॉर्म करता अभी है रिफॉर्म वा अस्सुरे करी कि सब सकब सब पेंशन वा दे के आने वाले सालों में मॉरिस अफ्रीका से डिफरेंट हा हमने के पॉपुलेशन वीई हुआ था अफ्रीका के पॉपुलेशन अभी ज़ंबा मैं जब देख बाद एगो पेई जब जैसे बोला जापान जैसे बुल्गारी बा हाउ देश वन में भी vieillissement bahut jaldi se accéléré hoata population bi réduire hoata aur un des chom bi réforme karatwan sa pension ke jame hau système wa sa ki payer kare ane wale salon mein
1: मुर्शिद टेलीकॉम की रीब्रांडिंग की जा रही है आज ऑल माइटी समिट का दूसरा दिन रहा मुर्शिद टेलीकॉम की सीईओ विमल गंगादी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटलाइजेशन के आधार पर एक नई रणनीति की बुनियाद का ऐलान किया हुआवे पालो आल्टो नेटवर्क्स और अमेजोन जैसी बड़ी कंपनियों ने अपनी नवीनताएं पेश की और भविष्य की एआई पर अपना विजन भी आम किया दासा पालासोमी आस्था गोविंद तमन
2: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एप्लीकेशन का विकास बिना कठिन आईटी मूल ढांचे के करना यही आज आयोजित एआई शिखर सम्मेलन का प्रमुख आकर्षण रहा अमेज़न वेब सर्विसेज और अमेज़न बेडरॉक ने इसका प्रदर्शन किया इससे डेवलपर्स को आसानी से एआई तक प्रवेश मिलेगा हुआवे ने सभी क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मौजूदा और संभावित उपयोगों को प्रस्तुत किया सभी प्रस्तुतियां अमल में लाई जा सकती हैं ये मात्र कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि समाधान है मूल ढांचा से भाषा तक हर क्षेत्र में उचित समाधान प्रस्तावित किए जा सकते हैं नेटवर्क सुरक्षा विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि एआई के क्षेत्र में तेजी से हो रहे नवाचार के साथ साथ मजबूत सुरक्षा उपाय भी उतने ही आवश्यक हैं। हमें संभल कर आगे बढ़ना चाहिए मेरा मानना है कि 2-3 सालों में एआई हर जगह होगा हमारे दैनिक जीवन में और कंपनियों में भी इससे हम बच नहीं सकते बेहतर है इसे अपना लें लेकिन सुरक्षित तरीके से मॉरिशस की वे कंपनियां और ठेकेदार जो पहले से ही एआई का उपयोग कर रहे हैं उनके लिए ये सम्मेलन अनुभव साझा करने नई तकनीकों को समझने और डिजिटल परिवर्तन को गति देने का महत्वपूर्ण अवसर रहा हम कई पहल के साथ आगे आ रहे हैं होटल्स में रिजर्वेशन ग्राहकों को पर्सनलाइज्ड सेवाएं देने के लिए आदि यदि हम एआई के इस सफर में साथ नहीं चले तो बहुत पीछे रह जाएंगे 20 साल पहले जिस प्रकार मॉरिशस में साइबर सिटी विकसित किया गया उसी प्रकार अब ये तीसरी लहर समझी जा सकती है इस विषय पर गौर करना जरूरी है अमेरिका और चीन अपने खुद के एआई विकसित कर रहे हैं और हमारे लिए जरूरी है कि हम स्थानीय एआई को बढ़ावा दें जिसमें सभी मॉरिशन प्रवेश कर पाएंगे तकनीकी प्रदर्शनों से परे इस समिट का उद्देश्य मॉरिशस में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देना विशेषज्ञों के बीच सहयोग मजबूत करना और भविष्य के लिए आवश्यक डिजिटल कौशल विकसित करने की दिशा में एक प्रभावी मंच उपलब्ध कराना है
1: मुर्शिद सातवां अफ्रीकी देश बन गया है जो ऑटमी समझौते का हिस्सा है आज दोपहर बाद बैन में अफ्रीकन अफेयर्स की अमेरिकी डिप्टी सब सचिव सारा ट्राउटमैन की मौजूदगी में मुर्शिद रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल में दस्तखत किए गए ऑटमी समझौते में राष्ट्रों के दरमियान अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग के लिए नियम हैं इसका हिस्सा बनकर मॉरिशस विकसित अंतरिक्ष और सैटेलाइट संबंधी टेक्नोलॉजियों में अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से लंबी अवधि के लिए जुड़ गया तथा इन संसाधनों से देश का आर्थिक विकास होगा और आपको बता रही थी कि मॉरिशस में अमेरिकी दूतावास आहिस्ता आहिस्ता एक हकीकत बन रहा है और इस परियोजना के लिए 14 बिलियन रुपए निवेश किए गए हैं
3: दौरे की शुरुआत परियोजना की जानकारी से हुई निर्माण स्थल के जिम्मेदार और युवा मॉरिशन इंजीनियरों ने नए दूतावास की योजना के बारे में बताया इस दौरान अब तक पूरे हुए काम आगे के निर्माण चरण और इमारत की विशेषताओं की जानकारी दी गई ये इमारत सुरक्षा टिकाऊ निर्माण और पर्यावरण संबंधी कड़े मानकों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है
4: La nouvelle ambassade

0: américaine. Nous pouvons construire lui pour qu'il dure pendant les prochains 100 ans qui peut venir. Donc, en termes de matériaux qui peut mettre.
1: नई इमारत का निर्माण इस तरीके से किया जा रहा है ताकि उसका ढांचा 100 सालों तक मजबूत रहे. निर्माण सामग्री फिनिशिंग सभी कुछ उच्च किस्म की है और टिकाऊ भी.
2: Mené une exposition internationale avec plusieurs employés qui sont sortis depuis plusieurs pays. Donc c'est vraiment un échange de connaissances.
1: अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों के साथ हमने अनुभव साझा किया और नई विशेषज्ञता हासिल की.
3: Il y en a beaucoup de solar panels qui sont installés devant les rooftops qui pour offset le boil load consumption de 20%. Et aussi, ce générateur qui est là, il est équipé avec un sound attenuator qui pour réduire le sound level.
1: इमारत की छत पर सोलर पैनल्स बिठाए गए हैं. इससे बिजली की बचत होगी. आधुनिक जनरेटर भी है. लीकेज को रोकने के लिए मजबूत ढांचे भी हैं. ये इमारत अन्य इमारतों से अलग है. अब तक परियोजना का 62% काम पूरा हो चुका है. निर्माण स्थल पर 20 देशों के करीब 550 कर्मचारी काम कर रहे हैं. मुख्य ढांचे का निर्माण पूरा हो गया है. अब काम अंदरूनी निर्माण और तकनीकी सुविधाएं लगाने के चरण में पहुंच गया है. ये नया दूतावास सिर्फ एक इमारत नहीं, ये मॉरिशस और अमेरिका के बीच मजबूत होते संबंधों का भी प्रतीक है. दोनों देश पहले से कई क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं. सारा ट्रॉटमन ने बताया, मेरे दौरे का मकसद है मॉरिशस और अमेरिका के बीच कारोबार बढ़ाना. ये यात्रा इस दिशा में सफल हुई है. मॉरिशस की कंपनियां अमेरिकी साझेदारी के लिए तैयार हैं.
4: Ça bâtiment là, le projet qui peut réaliser par l'Amérique, cette ambassade, qui pour un an une vision de plus de 100 ans. Ça, lui démontrer que nos relations avec l'Amérique, les stables et les sustainable. Donc, un symbole de confiance.
1: गणराज्य के राष्ट्रपति धरम गोकुल ने बताया, अमेरिकी दूतावास के इस नए भवन को 100 वर्ष के विजन के साथ खड़ा किया जा रहा है. इस पहल से मॉरिशस और अमेरिका के बीच मौजूद मजबूत और स्थिर संबंध झलकते हैं. ये इमारत विश्वास का प्रतीक है. परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर एक अमेरिकी है. उन्होंने इस बात की प्रशंसा की है कि हमारे युवा इंजीनियर बहुत काबिल है. इस दूतावास के जनवरी 2028 में खुलने की उम्मीद है. इसके होने से मॉरिशस और वॉशिंगटन के बीच कूटनीतिक सहयोग को नई मजबूती मिलेगी. साथ ही दोनों देशों की साझेदारी भी और प्रगाढ़ होगी.
5: सन 2016 से हेमराज मनोहर ने कम से कम 120 मिलियन रुपए हड़प लिए. जून की शुरुआत में 64 वर्षीय इस पुरुष को गिरफ्तार किया गया था, जिन्होंने करीब 40 लोगों को अपनी जाल में फंसाया. ज्यादातर बुजुर्ग विधवाएं रही हैं, जिन्होंने उन्हें पैसे की बड़ी बड़ी रकम दी. हेमराज मनोहर और उसके तीन साथियों की गिरफ्तारी के डेढ़ महीने बाद फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने 18 शिकार लोगों के बयान दिए हैं. महाजीवा रिजॉर्ट्स के सीईओ संजीव रामदानी अपने होटल के कारोबार और गतिविधियों के लिए विदेश जाना चाहते हैं. वो दुबई, इटली, इंग्लैंड और मोरक्को जाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन एतराज जता रहा है. कल पोटलुई अदालत में संजीव रामदानी ने जमानत पर अपनी रिहाई की शर्तों में बदलाव की मांग की है, लेकिन इस मामले में अगले 25 अगस्त को मैजिस्ट्रेट दोगयाऊ अपना फैसला सुनाएंगी. एनवायरनमेंट एंड लैंड यूज अपील ट्राइब्यूनल के सामने गैर सरकारी संगठन एकोसुड द्वारा लुबुशों डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की स्मार्ट सिटी परियोजना के परमिट के खिलाफ मुकदमा जारी है. 15 जुलाई को स्थलों का दौरा किया गया ताकि इस परियोजना की असल चुनौतियां जाना जा सके. इस 17 जुलाई को लुबुशों ग्राम परिषद के अध्यक्ष कैद्रिस वालाइडू की सुनवाई रही. आवासीय संकट न सिर्फ विकासशील देशों के लिए एक मसला है, बल्कि ये 21वीं सदी में सबसे बड़ी इंसानी हकीकतों में से एक है. भूमि और आवास मंत्री ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में एक उच्च सतह वाली बैठक के दौरान इस मुद्दे पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि छोटे विकासशील टापू देशों के लिए नया अर्बन एजेंडा न सिर्फ एक दस्तावेज है बल्कि जीवन है. मंत्री शकील मोहम्मद ने याद दिलाया कि मॉरिशस ने अपने साहिली इलाकों की हिफाजत करने के लिए एक राष्ट्रीय विकास नीति अपनाई ताकि पर्यावरण का भी संरक्षण हो. उन्होंने दोबारा पुष्टि की कि इस सरकार की प्राथमिकता आवास है. और अब विदेश की खबरें. लगातार छठी रात के दौरान अमेरिका ने ईरान पर हवाई हमले किए. आप नए हुरमुज पर नियंत्रण पाने के लिए जंग की दोबारा शुरुआत हुई है. अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने कहा कि हमलों ने ईरान के सैन्य

0: की सैन्य ताकतों को कमजोर कर लिया है। ग्रेट ब्रिटेन में एंडी बर्नाम लेबर पार्टी के नए सरपरस्त बने हैं। सोमवार को वो प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने लगेंगे। एंडी बर्नाम ने कहा कि वो लोगों को नई उम्मीद देंगे और नई राजनीति की बुनियाद भी डालेंगे। पूरी भारत में जगन्नाथ रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। वहां जोरदार बारिश हो रही है जिससे दो लोग जान से गए हैं और 100 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं। खराब मौसम के बावजूद श्री जगन्नाथ, श्री बालाभद्र और देवी सुभद्रा के रथ गुंडीचा मंदिर तक ले जाए जा रहे हैं। युगांडा के पूर्व में एक शैक्षिक यात्रा के दौरान एक बस दुर्घटना हुई। कम से कम 20 छात्रों की मौत हुई, दूसरे दर्जन बच्चे जख्मी हुए हैं। उधर वेनेजुएला में मरने वालों की संख्या 4,800 के पार है और 17,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अभी पुनर्निर्माण कार्य शुरू किए जा चुके हैं, राहत कार्य भी किए जा रहे हैं।
1: वेनेजुएला के तटीय राज्य में भीषण भूकंप के बाद पुनर्निर्माण का काम शुरू हो गया है, लेकिन हालात अब भी मुश्किल बने हुए हैं। इस भूकंप में 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। तारो लेयाल पेशे से मैकेनिक है। उनका परिवार तो बच गया, लेकिन उन्होंने अपने कई दोस्तों को खो दिया। अब वे बचे हुए सामान की मदद से अपना घर फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे जैसे परिवारों के सामने सिर्फ घर दोबारा बनाने का सवाल नहीं है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे घर वापस रहने के लिए सुरक्षित है। ये व्यक्ति सिविल इंजीनियर हैं जो आपात अभियान में शामिल हैं। इस अभियान में वेनेजुएला का आवास मंत्रालय, यूनिवर्सिटियों के विशेषज्ञ और तकनीकी टीमें मिलकर क्षतिग्रस्त इमारतों का निरीक्षण कर रही है। उनका उद्देश्य ये तय करना है कि लोग अपने घरों में सुरक्षित लौट सकते हैं या नहीं। भूकंप में 60,000 से अधिक इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जबकि लगभग 20,000 लोग बेघर हो गए हैं। हम हर इमारत का निरीक्षण करते हैं और उसे रंगों के आधार पर श्रेणी में रखते हैं। ढांचे की जांच के बाद उसकी स्थिति तय की जाती है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है। इंजीनियरों का कहना है कि अब अगले चरण में भूवैज्ञानिक अध्ययन किए जाएंगे। इसके बाद तय किया जाएगा कि इन तटीय इलाकों में किस तरह की इमारतें बनाई जानी चाहिए। उनका कहना है कि सिर्फ जल्दी निर्माण करना ही काफी नहीं है, बल्कि सुरक्षित निर्माण करना सबसे जरूरी है।
0: और बुलेटिन के आखिर में करते हैं मौसम की बात। आम हालत, पश्चिम से आ रहे कुछ बादल स्थानीय मौसम पर असर करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए मौसम की पेशगोई, आज रात के दौरान बादल घेराएंगे पश्चिम, दक्षिण और सेंट्रल प्लाटो में खास तौर पर बारिश होगी और बाद में रात के दौरान ही मौसम में सुधार आएगा। कल सुबह मौसम सुहाना होगा, दोपहर बाद पश्चिम और दक्षिण में बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश होगी, खासतौर पर दक्षिण और ऊंचे इलाकों में, और दूसरे इलाकों में घने बादल होंगे। हवा पश्चिम की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। लगूनों के उस पार समुद्र चंचल रहेगा, 2 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी दक्षिण वाले लगूनों में। तापमान, सेंट्रल प्लाटो में न्यूनतम तापमान 15 से 17, अधिकतम 24 से 26, साहिल इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 7:45 बजे सूरज उगेगा और शाम को 5:47 पर सूरज ढल जाएगा।

0: तो ये थी अब तक की स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें अब तक के बुलेटिन पहुंचाने में हमें समाचार और फ्रेंच में भाग और हमारे तकनीकी साथियों शिवनागिया और लुडोविक जुआंगिया की मदद मिली है. आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. नमस्कार और आदाब. एमबीसी के साथ जुड़े रहिए. थोड़ी देर में शोक समाचार सुनिए.
1: NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

एवेन्यू ओलिये कैथरोबोन में 58 साल के 58 इज ओल्ड श्री अमृत प्रभु, श्री अमृत प्रभु जो अजीत के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थ ही कल 11 बजे इनके भाई साजन प्रभु के घर एवेन्यू ओलिये कैथरोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। रोयल रोड रोश्तेया में 87 साल के 87 ईयर्स ओल्ड श्री चुनुलाल

हरदान, श्री चुनूलाल हरदान जो रामदत्त के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल 11 बजे इनकी पत्नी ज्ञानती हरदान के घर रॉयल रोड ओस्टिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गौगोब की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। सिवन चिनिया रोड गुडलैंड में 82 साल की 82 years old कुमारी फुलमत मकुन

0: जो बिदवंती के नाम से ज्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं और थी कल साढ़े दस बजे के घर सिवेंचिनिया रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआकूश गुडलैंड की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रोमेशन टमोरो एट हाफ पास्ट 10 AM क्लियर फोन नंबर एक वाकवा में 87 साल की 87 years old श्रीमती गौरी भगवान पैराशी नाम जीता जो श्रीमती के नाम से ज्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं और थी कल एक बजे इनके बेटे राजेन भगवान के घर क्लेफोन नंबर एक वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM जिलबिया जूसन स्ट्रीट कॉलिव्यू ओकुले में 79 साल के 79 years old श्री मुनुसामी मारीमुतू जो मामे गौसों के नाम से ज्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं और थे कल ढाई बजे इनके घर जिलबिया जूसन स्ट्रीट कॉलिव्यू ओकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बीगागा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट हाफ पास 2 PM शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है
1: News on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

Welcome to Check Your Time at 6:28 minutes. Check your welcome in the third hour of your Friday mashup with me here again on the mic. जी हां, on RM2 Radio Masti. Wishing all of you जिन्होंने अभी-अभी अपना रेडियो ऑन किया है, a very good evening. नमस्कार और गणेशा का प्रणाम. So my dear lovely listeners, स्वागत है आपका सब हम आप सभी लोगों का काम ने स्वागत कर लिया है. तो चलिए जी, जस्ट एंजॉय द शो एंड एंजॉय द गुड म्यूजिक जो लेकर आए हैं टू किक स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल वीकेंड ऑन दिस फ्राइडे इवनिंग. और साथ में स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड, विल बी हैविंग अ गेम जहां पे आप ट्राई कर सकते हैं टू विन अ टिकट टू वॉच द कॉन्सर्ट ऑफ अभिजीत भट्टाचार्य लाइव इन मॉरिशस.

कुल जी ऑलवेज बाय योर साइड आरएम टू रेडियो मस्ती 6:33 हो चुके हैं एंड आज पवारे के मुताबिक फिर से लेकर आए हैं वन कैरियर फॉर यू यानी देखिए आई हैव वन टिकट टू गिव अवे टू यू राइट नाउ राइट अवे हियर टू वॉच द कॉन्सर्ट ऑफ अभिजीत लाइव इन मॉरिशस सो प्ले विद एमबीसी एंड विन यस यू कैन स्टैंड अ चांस टू विन वन टिकट टू द गोल्डन 90s एरा जी हाँ जहां पे टू फीचरिंग अभिजीत भट्टाचार्य हैं ही इज गोइंग टू बी लाइव इन कॉन्सर्ट मॉरिशस में ऑन सैटरडे 25 जुलाई 2026 शाम के 7:30 बजे आट SVICC आट पाई आप एक ऐसी दुनिया में जा सकते हैं जहां पे नॉस्टैल्जिया है और यू कैन रिलीव दोबारा द अनफॉरगेटेबल वॉइस जो डिफाइन करते हैं बॉलीवुड की गोल्डन एरा को एंजॉय कीजिए एक ऐसे इवनिंग ऑफ टाइमलेस मेलोडीज लेजेंडरी हिट्स प्योर म्यूजिकल मैजिक टिकट जो है शुरू बिकना शुरू हो चुका है इट्स एट 850 स्टार्टिंग प्राइस एंड दे आर अवेलेबल एट motika.mu एंड रेजो उतायु एंड हम तो कहेंगे ऐसा मौका मिस नहीं करना चाहिए आपको अगर आप अभिजीत के डाई हार्ट फैन हैं रिजर्वेशंस के लिए वी डू हैव अ हॉटलाइन व्हिच इज 4669999 466 99 99 और अभी के लिए मुफ्त में यस मुफ्त में यू कैन विन अ टिकट राइट नाउ राइट अवे ऑन रेडियो मस्ती पूछेंगे एक सवाल जो बहुत ही आसान है यू जस्ट हैव टू गिव मी द राइट आंसर विद योर फुल नेम एंड फुल एड्रेस के साथ ऑन दिस नंबर 5499121294 राइट आंसर फुल नेम एंड फुल एड्रेस के साथ ये जो गाना आप सुन रहे हो ऑन रेडियो मस्ती यू जस्ट हैव टू टेल मी दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग इट्स टेकन फ्रॉम विच मूवी बिल्कुल जी ये खूबसूरत सा गाना जो है अभिजीत और श्रेया घोषल की आवाजों में आपको बस मुझे बताना है ये गाना कौन सी मूवी से लिया गया है बेस्ट ऑफ लक टू यू माय डियर जल्दी से पार्टिसिपेट कीजिए मोबाइल उठाइए टैप करना शुरू कर दीजिए द राइट आंसर विद योर फुल नेम एंड फुल एड्रेस एंड सेंड इट टू मी राइट नाउ ऑन 5499 1294

0: कभी सोचा है
1: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
0: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
1: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
0: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
1: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
0: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
1: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
0: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू

0: या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July, तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस,
1: डोंट मिस इट।
2: It's not just about the music, it's about the feeling.
3: Friday Mashup. Friday Mashup.
2: RM2, Radio Musty, in the mix.

हमने पूछा था कि ये गाना कौन सी मूवी से लिया गया है. सो बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है. हमने सुनाया था द सॉन्ग तुम्हें जो मैंने देखा, एंड यस इट इज एक्चुअली फ्रॉम द मूवी मैं हूं ना द राइट आंसर. बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है. थैंक यू सो मच जी टू पार्टिसिपेट. लेकिन आज यू नो ओनली वन लकी विनर. और आज लकी ड्रॉ निकालने के बाद आज का लकी विनर है इन योर

0: फिल्मी जैम
1: रेडियो मस्ती।
2: देखिए जी, फ्राइडे इवनिंग को हमेशा हम ऐसे ऐसे पर्सनालिटीज को बुला ही लेते हैं जहां पर वो लोग आते हैं और चले भी जाते हैं, लेकिन दिव्या का साथ अभी तक, अभी से लेकर 9 बजे के साथ तक है। सो आई जस्ट होप दैट यू विल बी हैविंग अ रॉकिंग फ्राइडे इवनिंग हमारे साथ, ऑफ कोर्स ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती। चलिए, यहाँ पर 7:04 हो चुके हैं। व्हाट्स हैपनिंग ऑन योर साइड, जरूर हमें बताइएगा। और हमने प्रॉमिस किया था कल कि हम एक अलग ही मूड के साथ हाजिर होंगे, तो लो जी, हम कुछ ब्यूटिफुल धमाकेदार गाने लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, टू गेट यू इन द फ्राइडे मूड। और हम जरूर जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके से अपने इस फ्राइडे इवनिंग को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ, बोलने में थोड़ा अजीब लगता है सेलिब्रेट, क्योंकि कुछ लोग बस फ्राइडे इवनिंग को स्पेंड करते हैं और कुछ लोग इस मोमेंट को सेलिब्रेट करते हैं। और लाइफ को सेलिब्रेट करना हर एक इंसान का फर्ज होता है, एंड यू हैव सम कमिटमेंट टुवर्ड्स योरसेल्फ। और दिस इज द डे जहाँ पर आपको मौका भी मिल रहा है, दस्तूर भी मिल रहा है, और साथ में आपको वजह भी मिल रही है। यस, वजह है हमारे गाने और साथ में आपके मैसेजेस। बहाने बनकर अगर ड्रॉप इन आप कर पाए तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। यस यस, वी आर वेटिंग फॉर योर मैसेजेस ऑन द मैजिकल नंबर व्हिच इज 5499-1294। तो चलिए, फटाफट भेजिए अपने टेक्स्ट मैसेजेस और हमें बताइए कि किस तरीके से आप इस फ्राइडे इवनिंग को स्पेंड कर रहे हैं। एंड चलिए, हमारा और आपका साथ है टिल 9 PM, सो स्टे राइट कनेक्टेड।
0: फिल्मी जैम
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: फिल्मी जाम
1: OMG रेडियो मस्ती।
0: ऑलराइट ऑलराइट, 7:16 हो चुके हैं। ऑफ कोर्स यहां पर

0: We have some good news for you और good news है it's related with the football. आपको तो पता है ही कि संडे को फाइनल है और ऐसे में बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं और बहुत सारे लोग अपने जो ऑलरेडी प्रेडिक्शन दे रहे हैं कौन जीतने वाला है और ऐसे में अगर आप लोग जुड़े रहेंगे हमारे साथ रात के 10 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक तो यू विल स्टैंड many many chances to win many gifts yes 10 से लेकर रात के 11 बजे तक और आपको मौका मिल सकता है to win 3 gold tickets from the Abhijit concert and don't forget it's related with the World Cup और साथ में आपको हम बता देते हैं कि आपको मिल सकता है ग्रैंड बाजार ऑफ इंडिया की तरफ से 3 गिफ्ट वाउचर्स वर्थ 500 रुपीज़ और साथ में राजस्थान प्लस यहाँ पर जेंट्स लिटिल इंडिया एंड राजस्थान हैंडलूम हाउस की तरफ से भी आपको मौका मिल सकता है टू विन गिफ्ट वाउचर्स और साथ में आपको मिल सकता है बहुत बहुत कुछ इंटरेस्टिंग तो चलिए यहाँ पर आपको हम न्योता दे रहे हैं इनविटेशन दे रहे हैं और साथ में आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं टू प्लीज़ जॉइन द प्लेटफॉर्म ऑन संडे आज फ्रॉम 10 PM टिल 11 PM जहाँ पर आपको मौका मिल सकता है टू विन मेनी मेनी गिफ्ट्स एंड मेनी इंटरेस्टिंग वाउचर्स टिकट्स शायद आप का लक है एंड अगर आप लक को ट्राई करना चाहती है तो ऑफकोर्स वी आर गिविंग यू अ प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म पे ऑफकोर्स विल बी टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड कप और फाइनल भी है तो इट्स गोना बी लोड्स एंड लोड्स ऑफ एक्साइटमेंट तो चलिए आप को हम रेंडेवू दे रहे हैं Once again, don't forget, 10 से लेकर रात के 11 बजे के बीच तो चलिए अभी के लिए हम कंटिन्यू करते हैं विद द फिल्मी जाम जहां पर दिव्या का साथ है टिल 9 PM सम ऑफ योर मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं कुछ और आपके मैसेजेस भेजते रहिएगा और हम थोड़ी देर में लेकर आ रहे हैं ऑफ कोर्स योर स्पेशल डेडिकेशन योर स्पेशल मैसेजेस जो आपने बहुत ही प्यार से हमें भेजे हैं ऑन 5499-1294
1: Filmy Jam.
2: RM2 Radio Musti.

0: आशीष आप है ओपन यूनिवर्सिटी से एंड गीत की फरमाइश करना चाहते हैं सारे दोस्तों के लिए विराज अश्विन किशन विकी नायको सन नीलेश और आपके दो पैसेंजर्स हैं वैभवी और रंजीता के लिए दैट्स रियली स्वीट गीत है चेहरा क्या देखते हो एक 90s वाला गाना आपको चाहिए एंड आप कहते हैं अगर पॉसिबल हुआ तो चला देना आज के लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल है क्योंकि अभी के लिए तो हम एक अलग ही शो और अलग ही मूड के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं क्योंकि आज है फ्राइडे इवनिंग तो चलिए हम अगर मंडे को आते हैं तो ऑफकोर्स विल ट्राई टू प्ले दिस सॉन्ग फॉर यू एंड ये गाना आपके लिए हम ज़रूर चलाएँगे एंड मंडे को हम बहुत ही एक रिलैक्सिंग वाला शो लेकर आते हैं जहां पर ऐसे ऐसे गाने एकदम फिट होते हैं हमारे शो में तो डेफिनेटली आई ट्राई टू इंक्लूड दिस वन इन द प्लेलिस्ट एंड चलिए यहां पर आप कहती हैं हेलो दी अमृता रामलोल लखानू से आज मेरे बेटे गिरीश का जन्मदिन है एंड वो 27 यानी 27 ईयर्स के हो गए हैं उनके लिए एक बहुत ही प्यारा सा गाना आप डेडिकेट करना चाहते हैं और उनको विश कर रहे हैं उनके पापा किशन पत्नी समीक्षा बेटा अयांश और उनकी बहन की तरफ से भी एंड आई थिंक यहाँ पर आपका मैसेज इनकम्प्लीट आया है अगर आप अपना मैसेज कंप्लीट पसंद करते हैं कि हम इसको पढ़े तो आप एक बार फिर से आपने अपना मैसेज भेज सकते हैं ऑन व्हाट्सएप नंबर वही है 5499-1294 एंड यहाँ पर आप कहती हैं हाय ललिता कलावे से आज मेरी छोटी परी आरोही का बर्थडे है 7th में है और उनके लिए ज़रूर एक गाना चला दीजिए एंड नेक्स्ट गाना गुज आउट स्पेशली फॉर नाना जागलू मामा विद्या श्वेता सभी रंगीलाल फैमिली की तरफ से उनको बहुत बहुत सारा प्यार जितने भी सारे लोग आज अपना स्पेशल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारी तरफ से भी आपको लोड्स एंड लोड्स ऑफ गुड विशेज
1: फिल्मी जान RM2 रेडियो मस्ती

0: भाई देखिए जिस तरीके से आप इस गाने को सुन रहे हैं, लाइफ में भी ट्विस्ट एंड टर्न्स आ भी जाते हैं, बट अगर आप अपनी परेशानियों को लेकर बैठे रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए ट्राई टू डांस टू ईच एंड एवरी रिदम। कभी ऐसा होता है ना कि हम डांस करना पसंद करते हैं लेकिन हम इस बात से डरते हैं कि कहीं हम डांस करेंगे तो लोग हमें जज करने में लगे रहेंगे और आप क्या करते हैं और ऐसे ही बैठ जाते हैं। लेकिन आपको मौका बिल्कुल नहीं गंवाना है, मौके पे आपको चौका लगाना है एंड इसको ज़िंदगी कहते हैं। एंड वी जस्ट वांट यू टू कीप ऑन डांसिंग इन ईच एंड एवरी रिदम और हर डांस पर आप ऐसे ही कमर थिरकाते रहे। एंड हम तो जानबूझकर ऐसे गाने चला रहे हैं क्योंकि आज फ्राइडे है और हम चाहते हैं कि आप उठकर थोड़ा बहुत डांस करें, बहाने भी हैं और साथ में आपको मौके भी मिल रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर फ्राइडे है और इस फ्राइडे इवनिंग को बहुत सारे लोग ऑलरेडी एक्साइटेड हैं टू वेलकम द वीकेंड और सैटरडे संडे के प्लान्स बन रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि कभी कभी वीकेंड में प्लान्स बनाना बिल्कुल सही बात नहीं होती है, वी आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो, ये सबसे बेस्ट चीज़ है। तो चलिए आप भी फ्लो में बहते चले जाएं। और अगर आप सोच रहे हैं कि वेयर इज द पार्टी टुनाइट, तो आपको जवाब पता है।
1: Your music partner, Santera.

0: फिल्मी जाम रेडियो मस्ती।
1: लेकिन फिलहाल के लिए हम आलिशा शिनॉय की बात ना मानकर सोनू निगम की बात को जरूर मानेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इश्क दी गली विच कर एंट्री। तो बिल्कुल, अगर आप सोच रहे हैं इट्स अ नो एंट्री, बिल्कुल आप एंट्री कीजिए, क्योंकि हम तो चाहते हैं ही हमेशा बार बार आप लोग आते रहे ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, एंड रेडियो मस्ती की गली में हमेशा आपका स्वागत है। वेल बातें करते करते और आपको गाने सुनाते सुनाते ये टाइम कैसे निकल गया मुझे खुद पता नहीं चला और समझ में भी नहीं आया। ऑलरेडी 8:08 एंड अ वंडरफुल फ्राइडे इवनिंग जहां पर दिव्या का साथ है टिल 9 PM। सो जहां से भी साथ दे रहे होंगे, थैंक यू सो मच। एंड अब्रॉड में भी बहुत सारे लोग हैं जो जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हेलो हाई टू ऑल ऑफ यू। एंड आप भी बताइएगा कि किस तरीके से आप इस फ्राइडे इवनिंग को स्पेंड कर रहे हैं। एंड चलिए यहाँ पर आपका मैसेज आया है, थैंक्स फॉर रीडिंग माय मैसेज दिव्या जी, बेस्ट ऑफ लक एट वर्क फ्रॉम ऑल माय कलीग्स, थैंक यू सो मच, इट मींस अ लॉट आशीष। एंड चलिए हम ट्राई करते हैं मंडे को आपका ये गाना चलाने के लिए, इन केस हम भूल गए तो आपका मैसेज एक बार फिर से आना चाहिए हमें रिमाइंड करने के लिए। सो चलिए हैव अ ग्रेट टाइम लिसनिंग टू रेडियो मस्ती, एंड वी ऑल्सो वुड लाइक टू डेडिकेट द नेक्स्ट गाना फॉर सीता गीता भलूराम फ्रॉम शातुबनागा साज यूजुअल कनेक्टेड हैं हमारे साथ। और चलिए यहाँ पर अंशिका लियाना सभी रामलोल परिवार के लिए भी अगला गाना, तो चलिए इसी के साथ कुछ और खूबसूरत गीतों की ओर हम बढ़ेंगे। एंड वैसे आपको याद होगा मैंने शुरुआत में कहा था कि बड़ी बड़ी हस्तियों को हम बुलाते हैं और वो आकर चले भी जाते हैं, और वो बड़ी हस्तियां हैं कभी शीला आ जाती हैं, कभी मुन्नी आ जाती हैं, कभी बिल्लो रानी आ जाती हैं, तो कभी शकीरा आ जाती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, वो लोग आते हैं चले जाते हैं, बट हमारा और आपका साथ है टिल 9 PM और इसके बाद तो नॉन स्टॉप आपके लिए गाने तो चलेंगे ही। बट फिलहाल के लिए जितना हो सके हम खूबसूरत धमाकेदार गीतों को समेटने की कोशिश करेंगे टिल 9 PM, ताकि आप लोग इस फ्राइडे इवनिंग के मूड में एकदम से ढल जाए।
0: फिल्मी जाम RM2 रेडियो मस्ती।

सबको तरसाने, मोहल्ले में आग लगाने, अपना मैजिक बरसाने, आ गई है कोल्हापुर की बिजली।

0: फिल्मी जाम
1: रेडियो मस्ती।
2: हाय क्या बात है। अगर हमारी डांस और हमारे जो गाने हैं एक्चुअली आपको करंट दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि वी ऑन द राइट ट्रैक, क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि यू कीप ऑन डांसिंग एज इफ नोबडी इज़ वाचिंग। ये ज़िंदगी का हमेशा मोटो होना चाहिए। अगर आप डांस करना चाहते हैं लेकिन आप हेजिटेट करते हैं और दाएं बाएं मुड़कर देखते हैं और चारों तरफ लोग ही दिखाई देते हैं और ऐसे में आप क्या करते हैं, इमेजिनेशन में डांस करने लग जाते हैं, लेकिन हकीकत में कब डांस करेंगे भाई। इसीलिए तो जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो, अगर आप घर पर भी हैं आप घर पर भी डांस कीजिए। एंड जितनी भी सारे हमारे लेडीज़ अभी तक किचन में हैं, शायद आपका डिनर हो गया है, मे बी अभी आप लोग डिशेस की ओर बढ़ रहे हैं, बर्तन मांजना है, ओहो इतने सारे काम पेंडिंग है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे गाने आपको एनर्जी देंगे और बूस्टर की तरह काम तो करेगा ही और साथ में आपको मोटिवेशन भी देगा। चलिए 8:21 हो चुके हैं एंड एक बार फिर से आपको याद दिलाते हैं दैट यू आर कनेक्टेड With Radio Masti, जहां पर दिव्या का साथ है till 9 PM और चल रहा है आपका फिल्मी जाम। एकदम ट्रैफिक जाम तो बिल्कुल नहीं है गीतों का और बहुत ही स्मूथली आपके लिए हम गाने चला रहे हैं और हम चाहते हैं कि आपके दिमाग में जितना भी सारा ट्रैफिक जाम है ना, हाँ हाँ मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। क्या है ना कि कभी कभी हम काम का जो प्रेशर होता है, काम का लोड है, वो घर पर लेकर आते हैं और इसकी वजह से हमारा

हमारा मूड खराब होता है और मूड खराब होने से हम ना ही फैमिली मेंबर से बात करते हैं। अरे भाई ये सब आप एक मिनट के लिए भुला दो, क्योंकि काम तो होता रहेगा। हाँ मुझे पता है कि आप मेहनत से काम करते हैं, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थोड़ा बहुत टाइम अपने फैमिली मेंबर्स के लिए निकाले। कभी ऐसा भी होता है कि शायद आपकी वाइफ या फिर आपके हस्बैंड कहते हैं कि भाई देखो तुम जब भी आते हो काम के बारे में ही सोचते हो या फिर काम के बारे में ही बात करते रहते हो, तो यू शुड

0: का जो प्रेशर है उसको साइड में रख दीजिए और थोड़ा बहुत जितना भी टाइम है आपके पास आप कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए फैमिली के साथ. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये जो क्वालिटी टाइम है ना आगे चलकर यही ब्यूटीफुल मेमोरीज बनता है. तो चलिए यहाँ पर आपको हम अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं और वैसे अपॉर्चुनिटीज़ दी नहीं जाती हैं, क्रिएट की जाती हैं. बट मेक श्योर कि आप इसको अच्छी तरीके से स्पेंड कर रहे हैं. 24 घंटों में हम कितना कुछ करते हैं और एक मिनट या फिर 30 मिनट खुद के लिए और फैमिली के लिए ना निकाले ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. तो टू ऑल दोस जो अभी ड्राइव के लिए निकल चुके हैं आपको हम कहेंगे हैव अ सेफ एंड अ वंडरफुल ड्राइव विद रेडियो मस्ती. एंड अगर आप लोग काम पर हैं येस ऑन अ फ्राइडे इवनिंग आपको हम विश करेंगे बोंको आज ऐसे ही हमारा साथ देते रहिए बिकॉज इट्स योर फिल्मी जैम और दिव्या का साथ रहेगा टिल 9 PM.
1: Filmy Jam. RM2 Radio Musti.

0: थोड़ी देर पहले आपसे कहा ना कि आपके माइंड में बस पार्टी होनी चाहिए एंड गुड मोमेंट्स होने चाहिए एंड थिंक ऑफ स्पेंडिंग सम ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मोमेंट्स एंड टाइम विद योर फैमिली विद योर नियर एंड डियर वंस. वेल 8:35 होने को है. कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे नॉन स्टॉप आप लोगों के साथ, ऐसे ही गाने चलाते रहेंगे टिल 9 PM. तो चलिए कुछ और खूबसूरत बोम्बास्टिक ब्यूटीफुल सॉन्ग्स के साथ वी विल बी गेटिंग द फ्राइडे वाइब.
1: Filmy Jam.
2: RM2 Radio Musti.

यश नर्वेगर की आवाजों में ब्यूटीफुल सा ये गाना है एंड आई जस्ट होप कि आप लोग एक अच्छा टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं विद द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक. चलिए यहाँ पर आप कहती हैं हेलो गुड इवनिंग आयुषी हियर. हाय आयुषी, हाउ आर यू? और आपने बनाया है फ्राइड फिश, ग्राटें, सलाद, बुलेट. ओ माय गॉड, इतना सारा कुछ ऑन अ फ्राइडे इवनिंग तो बनता ही बनता है. सो चलिए आपको बना पिची एंड बेस्ट विशेज फ्रॉम अजू एंड अंजू फ्रॉम क्यूपिप. अनुज एंड आयुषी भी साथ रहे हैं. थैंक यू सो मच. एंड एज यूजुअल वी विल डेफिनेटली लाइक टू डेडिकेट द नेक्स्ट गाना फॉर श्वेता हुकुम अबोना कोई फ्रॉम हबी रोशन जोस. वांट टू टेल हर दैट आई लव हर सो सो मच. चलिए जी, ये मैसेज उन तक ज़रूर पहुँच गया होगा और ये मैसेज पाकर शायद आपकी प्यारी सी पत्नी मुस्कुरा रही होंगी और शर्मा भी गई होंगी. तो चलिए, कीप अप द गुड मूड एंड द गुड वाइब्स ऑन दिस फ्राइडे इवनिंग. एंड दिस वन गोज आउट स्पेशली टू ऑल दोज जो बहुत ही प्यार से हमें सुन रहे हैं.

0: फिल्मी जान
1: RM2 रेडियो मस्ती.
0: Well, we have this beautiful gana taken up from the movie Shaadi Mein Zaroor Aana. To all those jo weekend ke dauran shaadi ke bandhan mein bandhe ja rahe hain ya fir ban chuke hain, aapko happy married life. Aur chaliye aise hi saath dete rahiyega RM2 ka, kyunki non-stop aise hi aap logon ke liye gaane chalte rahenge. Bhale hi abhi ke liye to hamare jaane ka waqt aa chuka hai, lekin hum ja rahe hain ek baar fir se pyar se wapas aane ke liye. Aur saath mein hum ja rahe hain, lekin gaane non-stop aap logon ke liye chalte rahenge. To chaliye कल रेंडेवू दे रहे हैं एज फ्रॉम 4 till 7 PM. यस, हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल सैटरडे आफ्टरनून को. एंड तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग, हैव अ ब्लास्ट, हैव अ ग्रेट ग्रेट फ्राइडे इवनिंग. अगर आप पार्टी कर रहे हैं तो प्लीज बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव. सो चलिए, हैव फन एंड मिलते हैं कल. तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग, शुभ रात्रि, शब्बा खैर.

नमस्कार एंड वेलकम टू रेडियो मस्ती. यस, लेट नाइट ग्रुप्स के सभी हमारे दोस्तों का मैं विनीता वेलकम करती हूँ. आप सुन रहे हैं हमारा लेट नाइट ग्रुप. भाई रात अभी कितनी भी हो गई हो, एनर्जी हमारा तो ऐसा है कि हम अभी बिल्कुल मूड में आ गए हैं. वॉल्यूम बढ़ाने का टाइम हो गया है और ऐसे धमाकेदार बॉलीवुड बीट पे डांस करने का टाइम हो गया है, जो बजता है सिर्फ और सिर्फ आपकी रेडियो मस्ती पर.

गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, ड्राइव कर रहे हैं, काम पर हैं, चिल कर रहे हैं, जहां से भी साथ दे रहे हैं, अभी बैठने का टाइम नहीं है, अभी बस झूमने का टाइम है। ठीक है, तो चलिए हमारे बॉलीवुड के इन धमाकेदार गीतों के साथ मैं विनीता आपका स्वागत करती हूँ। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है।

हमेशा मैं कहती हूँ, एक बार फिर कहती हूँ कि लाइफ में ना टेंशन लेने का ना देने का, ऐसा है कि हम यही मानते हैं कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका सोल्यूशन नहीं है। हाँ, लेकिन अगर म्यूजिक के साथ ढूंढे तो ज़्यादा जल्दी मिल जाता है। तो स्माइल कीजिए, फील बेटर कीजिए, डांस कीजिए और लाइफ में बस खुशी आने का परमिशन मत लीजिए। जब भी दिल करे खुश हो जाइए, हमारे साथ झूम जाइए।

रेडियो मस्ती के साथ आपका ये म्यूजिकल सफर चल रहा है नॉनस्टॉप विनीता के इन खूबसूरत गीतों का साथ है। रात भी साइलेंट होती जा रही है लेकिन वही भी हमारी प्लेलिस्ट जो है ना वो उतनी लाउड होती जा रही है। एंटरटेन करना

चले दोस्तों गेट रेडी, क्योंकि नेक्स्ट हमारे गाने जो हैं अभी आपको सीट से उठाएंगे और आपको डांस करवाएंगे। यस, यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती विनीता के साथ प्रोग्राम चल रहा है आपका लेट नाइट क्रूज।

this message, eh?

दोस्तों, कभी कभी आपका कोई फेवरेट गाना कम्प्लीटली आपका मूड चेंज कर देता है ना। ये मैजिक होता है गीतों का, और जहाँ पर ऐसे ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड हिट हो, मूड

समय हो सकता है कि आप किसी की पार्टी में हो सकता है आप घर पे हो। जो लोग पार्टी कर रहे हैं पार्टी करो, और जो लोग घर पे बैठे हैं घर पे पार्टी करो। हमारे पास गाने कमाल के हैं।

भाई आज है फ्राइडे नाइट और फ्राइडे नाइट में हम मस्ती करना पसंद करते हैं क्योंकि वीकेंड आ जाता है ना, फिर वीकेंड में बहुत सारा काम होता है करने के लिए। बस ये फ्राइडे और सैटरडे के बीच का जो टाइम होता है ना, ये जो इवनिंग होती है ना, बहुत कमाल की होती है, बहुत रिलैक्सिंग होती है और ऐसे में मस्ती नहीं।

जी हाँ दोस्तों, म्यूजिक तो एक के बाद एक बेटर होता चला जा रहा है और होगा ही क्यों नहीं। हमारा आप साथ में जो है तो रात की इस तन्हाई में भले आप अकेले बैठे हैं, आपको हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। आपके साथ हूँ मैं वेदिता, साथ दूंगी आपकी रात की।

खुश हो गया, मैं तो कहती हूँ मुगैम्बो खुश हो गया होगा। चलो भाई, आपके दिल को खुश करने के लिए, आपको मूड में लाने के लिए ऐसे ऐसे गाने पता नहीं कहाँ कहाँ से लेकर आते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं। तो चलिए, यहाँ पर हमारा जो स्टाइल है थोड़ा सा अलग हो गया है, थोड़ा सा मूड बदल गया है, तो आप क्या वेट कर रहे हैं? अभी भी बैठ के सोच रहे हो कि क्या करना है? सोचो मत।

ऑलराइट, तो जाने का टाइम हो गया है. थैंक यू सो मच, आपने हमारा साथ दिया. उम्मीद करती हूँ कि आपकी फ्राइडे इवनिंग काफ़ी कमाल की रही है, और फिर मिलूंगी कल रात को ऐसे ही प्रोग्राम के साथ. बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना.

0: होता है राहुल तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।